FM 102 और 103.6 MHz, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ।

0: सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: वैष्णवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवा गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवा गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट

0: फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102 और 103.6 MHz, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। सुबह के 6:05 हो रहे हैं और ये समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना का।

सभी सुनने वालों को प्रातः वंदन और अभिनंदन। आइए आरंभ करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ऐसी कृपा करो सांवरे, ये जीवन चंदन हो जाए, तन से चाहे जहां रहूं पर मन वृंदावन हो जाए।

ये है आपका अपना चंबल चैनल और इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ईश्वर पर भरोसा हमारे मन और भावनाओं को पवित्र करता है। इस भरोसे पर ही तो हम जीवन श्री हरि के चरणों में सौंप देते हैं और फिर निश्चिंत हो जाते हैं।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। ब्रज का रस जो चखे चखे न दूसरा स्वाद, एक बार जो राधा कहे तो रहे न कुछ और याद।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। राम नाम की महिमा से कौन अनजाना है, जिसके हृदय में बसते हैं राम उनके बनते जाते हैं बिगड़े काम, इसीलिए सदा राम नाम का जप करते रहें।

ये था हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। प्रमुख स्वर थे लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, हरिओम शरण, हरिहरन, वाणी जयराम और साथियों के। इसी के साथ भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्चना को यहीं देते हैं विराम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। सुबह के 6:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम विवाह मंडप में विराजमान हैं। शुभ मुहूर्त विचार कर वशिष्ठ जी ने राजपुरोहित शतानंद से राजकुमारी को मंडप में लिवा लाने का अनुरोध किया। सुंदर मंगल साज सजी रनिवास की स्त्रियां और सखी सहेलियां आदर सहित सीता को मंगल गीत गाती लिवा चली। कुलाचार के पश्चात कुलगुरु ने गौरी गणेश तथा ब्राह्मणों की पूजा कराई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। प्रमुख कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। प्रस्तुत है चिंतन।
1: आज फिर क्षितिज के पार से सूर्य झांक रहा है, ठीक कल की तरह। हर दिन उसका यही क्रम। वृक्षों की हरी हरी पत्तियों से भरी शाखाओं पर सूर्य ने लाल गुलाल सा बिखेरा है। कल रात अंधेरा था, इसका मलाल तक उसे नहीं है। हर सुबह हर शाम इस साथी को देखते हैं हम, पर क्यों बीते हुए कल की चिंता में अपने हर आज की आहुति चढ़ा देते हैं। कल के अपराधों का दंड भोगता ये आज, कल की चिंता में घुलता हुआ ये आज, आने वाले कल के सपनों में खोया ये आज, एक एक क्षण कर मिटता हुआ ये आज, कौन इसकी सुध लेगा। अतीत की गरिमा और भविष्य की योजना आज की कीमत पर चुकाते हैं हम। सागरों में ज्वार चढ़ते हैं उतर जाते हैं, रात कैसी भी हो ढल जाती है, वक्त सभी घाव भर देता है, लेकिन दाग तो रह ही जाते हैं और वे जीवन भर ये याद दिलाते हैं कि ये घाव किसने और कब हमें दिए थे, क्यों दिए थे।

0: क्यों दिए थे का प्रश्न तो सदैव अनुत्तरित ही रहता है। इसी जीवन में इसी धरती पर अनेक अनेक ऐसी विभूतियां हुई हैं जिन्होंने इतना काम किया है कि उसे देखकर आश्चर्य होता है। कैसे कोई एक जीवन में इतना अधिक काम कर सकता है। ये काम लेखन का हो, समाज सेवा का हो, अनुसंधान का हो या कोई और काम, कैसे कर पाए होंगे वे लोग। आइए एक क्षण रुके और सोचें। उनके भी वर्षों में इतने ही दिन थे, दिनों में इतने घंटे थे, फिर कैसे कर सकी वो सब इतना, कैसे कर सके इतना कार्य। आजीविका की चिंता में या उसको ही पूरा करने में उन्होंने भी हमारी तरह प्राणपण से प्रयास किया होगा। जीवन के दायित्व भी निभाए। फिर ये एक ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर न हो। उत्तर है, हमारे पास है। आवश्यकता केवल उसे तलाश करने की है। सृजन का ये अंकुर किस पाषाण के पीछे छुपा है। दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी चिंताओं की राइयों के बीच घिरे होने वाला एक पर्वत, इसी की किसी खोह में छिपा है वो गुलाब जिसमें एक महक है, एक ताजगी है, जीवन का सौंदर्य है और मानवीय कोमलता है। कुछ न होने के विशाल रेगिस्तानों के बीच अपने अस्तित्व का एक नखलिस्तान है, सुंदर मनोहारी। मौसम की शिराओं में हरापन खोल देने का संकल्प है। ये गुलाब देवा चरणों पर चढ़े तो भक्ति में ढले, केश पाश में जगह पाए तो श्रृंगार प्रेम की धारा बहा दे, नन्हे मुन्ने के हाथ लगे तो जिज्ञासा और हर्ष का केंद्र बन जाए। ये गुलाब कहीं आसपास ही है, अपने पूरे प्रयास से इसे खोज लेने की आवश्यकता है। भरे पूरे वृक्ष का विस्तार एक बीज में समाया रहता है। हर बीज में ताकत है कि सच्चाई की माटी का संपर्क मिले, अनुभव की धूप और प्रोत्साहन का अवसर, हवा पानी के मिलने पर भी वो भी एक वृक्ष बन सकता है। बीज को मखमली डिबिया में सजा दो तो वृक्ष नहीं बन सकता। कूड़े के ढेर में भी यह अवसर उपलब्ध नहीं होगा। इसके लिए जीवन की सच्चाई से सीधा साक्षात्कार होने की जरूरत है। पत्थरों के नीचे अंकुर पानी के स्रोत छिपे रहते हैं। बिना प्रयास और लगन उसको पहचान पाने की दृष्टि के उसको पाया नहीं जा सकता, जबकि वो वही है। नाभि में कस्तूरी लिए अपनी ही गंध के मोह में भागने वाले क्या रुककर तलाश करेंगे कि सुगंध का ये भंडार उनके अपने अंदर है। अपनी क्षमता को पहचानना और उसे सही दिशा में मोड़ देना, यही तो है सफलता का मूल मंत्र।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, वाचन स्वर था यतीन्द्र चतुर्वेदी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। सुबह के 6:50 हो रहे हैं और ये समय है आज प्रसारित किए जाने वाले खास कार्यक्रमों की जानकारी आपको देने का, यानी समय है कार्यक्रम विवरण का। इस सभा में सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। विषय होगा आंखों की चोट, बचाव और उपचार, और हमारी मेहमान विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर विदुषी पांडे। नमस्कार कोटा कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 7:00। इसमें चर्चा का विषय होगा अपनी समृद्ध विरासत। इसके अलावा आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता डॉक्टर अतुल कुमार शर्मा से। विषय होगा स्वस्थ सर्जन की भूमिका देश के लिए। महिला जगत कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 9:30। इसमें चर्चा का विषय होगा प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए जुड़े प्रकृति से। इसके अलावा आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता प्रीति अग्रवाल से। विषय होगा छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें बच्चे, और आपको जानकारी देंगे कि निजी जानकारी को साझा करते समय सतर्क रहें। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और इसमें आज आप सुनेंगे

0: पुरानी फिल्मों के कुछ तराने। फिल्म संगीत एक बार पुनः आपकी नजर करेंगे सुबह 9:10 पर। सुबह 10 बजे से श्रोता सुनेंगे वो विद भारती मुंबई के कार्यक्रम। शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज का संवाद होगा, योग्यता पर गर्व हो पर घमंड ना हो। इसके अलावा आप सुनेंगे वार्ता ड्रीम्स वर्सेस प्रेशर। वार्ताकार होंगी सना खान। इसके अलावा आप सुनेंगे रोजगार सूचनाएं, गीत संगीत, साप्ताहिक करंट अफेयर्स और खेल गतिविधियां। शाम 7 बजे किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। इसमें चर्चा का विषय होगा जल संरक्षण और महिलाओं के लिए योग और स्वास्थ्य। इसके अलावा सेगमेंट आकाशवाणी गांव में, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे बख्तरी के किसानों और ग्रामवासियों से बातचीत पर आधारित क्षेत्र संकलित कार्यक्रम, और आपको जानकारी देंगे पीएम कृषक मानधन योजना के बारे में। इसके अलावा आपको जानकारी मिलेगी मौसम की और कल के कार्यक्रमों की। फिल्म संगीत होगा शाम 6:05 पर। इसके अलावा चित्रपट संगीत होगा रात्रि 8 बजे, और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम, माफ कीजिएगा रिकॉर्डेड कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। रात्रि 11:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला में कड़ी संख्या 13। आज की थीम होगी अष्टलक्ष्मी। ये तो थी जानकारी आज प्रसारित किए जाने वाले खास कार्यक्रमों की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब संस्कृत समाचार दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः स्लोवाक गणराज्यं प्रति प्रस्थास्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्यां यात्रायां स्लोवाक देशस्य प्रधानमंत्रिणा फिको इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति, तथा च सहकारस्य नूतनान् मार्गान् अन्वेषयिष्यति। प्रवासावधौ प्रधानमंत्री राष्ट्रपतिना पेलेग्रिनी इत्यनेन सहापि मेलनं करिष्यति। द्वैपाक्षिक व्यापारे निरंतर वृद्धेः दृष्ट्या प्रधानमन्त्रिणः यात्रायाः महत्त्वं वर्धते। यच्चतुर्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे 1 बिलियन US डॉलर परिमितम् अतिक्रम्य गतवर्षे 8.1 बिलियन US डॉलर परिमितम् आसीत्। अनया यात्रया यूरोपीय संघस्य सदस्य राष्ट्रैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं भारतस्य प्रतिबद्धताम् अपि सुदृढं भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य देहरादून नगरस्य भारतीय सैन्य अकादम्यां पासिंग आउट परेड इत्यस्य समीक्षां करिष्यति। अस्मिन् वर्षे पासिंग आउट परेड इतीदं ऐतिहासिकं भविष्यति, यस्मिन् प्रथमवारं महिलाः पुरुषैः सह पथसञ्चलनं करिष्यन्ति। अस्मिन् भव्य समारोहे 500+ पुरुषाः महिलाः च अन्तिमं पदं स्वीकृत्य भारतीय सेनायां अधिकारित्वेन नियुक्ताः भविष्यन्ति। भारतीय सैन्य अकादम्याः पासिंग आउट परेड न केवलं सैन्य परंपरा अस्ति, अपितु राष्ट्र सेवायां समर्पितानां युवाधिकारिणां कृते नूतन यात्रायाः आरम्भोऽपि अस्ति। केन्द्रीय गुरु उद्योग इस्पात मन्त्रिणा HD कुमारस्वामिना उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विनिर्माण आधारित वृद्धेः वृत्त्यावसर निर्माणस्य च विषये अभूतपूर्वं महत्त्वं प्रदत्तं, येन औद्योगिक वृद्धिः त्वरिता अभवत्, बृहद् वृत्त्यावसराश्च कल्पिताः। विदेशमन्त्रिणा

हेलो, वेलकम एंड नमस्कार। स्वागत, वंदन और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका नाम है नमस्कार कोटा। सुपर सैटरडे मॉर्निंग है, 7 बजे का समय है और अपने फेवरेट चैनल चंबल चैनल पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम नमस्कार कोटा, अपनी रेडियो होस्ट अलका के साथ। एक और नया दिन है, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, बीते हुए कल की कमियों को भुलाकर आगे बढ़ना सिखाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो मुस्कुराइए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपकी मुस्कान किसी के चेहरे की खुशी बन जाती है। और सूरज की हर एक किरण भी तो यही कह रही है कि हर एक पल में छुपी है खुशियों की सौगात। तो कीजिए अपने बेहतरीन से दिन की बेहतरीन शुरुआत। तो देर किस बात की है, उठिए नई ऊर्जा और पूरे उत्साह के साथ कीजिए शुरुआत। हम भी बढ़ेंगे आगे और साझा करेंगे आपके साथ आज का विचार। आज का विचार कहता है, साहसी बनिए। साहसी का अर्थ ये नहीं होता कि आप डरते नहीं हैं, बल्कि साहसी का अर्थ ये होता है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं हैं। इस एनर्जेटिक विचार के बाद बढ़ते हैं आगे और बड़ी सी स्माइल के साथ इस खुशनुमा सुबह को और भी बनाएंगे खूबसूरत इस प्यारे से

कार्यक्रम है नमस्कार कोटा और सुन रहे हैं आप अपने चंबल चैनल पर। आइए बढ़ते हैं आगे और साझा करते हैं आपके साथ कुछ सूचनाएं। सबसे पहले हम मौसम की बात करेंगे तो आपको बता दें कि कल का कोटा शहर का अधिकतम तापमान रहा 40.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 30.8 डिग्री सेल्सियस। और मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार

मान कुछ बढ़ने की संभावना है। अगली सूचना आप तक पहुंचाते हैं जो इम्पोर्टेंट भी है, और वो है नीट के री एग्जाम के बारे में। इस बार 15 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे और रफ वर्क करने के लिए 4 पेज भी एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा के लिए कई बदलाव किए हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। कुल परीक्षा विंडो 195 मिनट की होगी, जो पहले से 15 मिनट ज्यादा है। एनटीए ने कहा है कि अतिरिक्त समय हस्ताक्षर व निगरानी संबंधी औपचारिकता में लगने वाले समय की भरपाई के लिए दिया गया है। एजेंसी ने प्रश्न पुस्तिका में रफ वर्क के लिए 2 से बढ़कर 4 पेज दे दिए हैं। लेफ्ट हैंडेड छात्रों की सुविधा के लिए 2 रफ वर्क पेज पुस्तिका की शुरुआत में और 2 अंत में दिए जाएंगे। तो इस बार जो एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए हम जो भी अभ्यर्थी हैं उसमें बैठने जा रहे हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम है नमस्कार कोटा और सुन रहे हैं आप अपने चंबल चैनल पर। आइए कुछ और सूचनाएं आप तक पहुंचाते हैं। राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया जारी है और इसके तहत स्नातक BSc बायोलॉजी और मैथ्स और BCA सेमेस्टर 1 की मुख्य व वेटिंग लिस्ट में चयनित विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन और ऑनलाइन फीस जमा कराने की अंतिम तिथि आज यानी 13 जून है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवेश के इच्छुक चयनित विद्यार्थी समय रहते अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर फीस जमा करवाएं, अन्यथा इसके बाद उन्हें अवसर नहीं मिलेगा। और जो लोग यात्रा करने जा रहे हैं पुणे की तरफ या जयपुर से पुणे की तरफ या पुणे से जयपुर की तरफ, उनके लिए ये खबर है कि जयपुर पुणे एक्सप्रेस अब पुणे की बजाय खड़की स्टेशन तक चलेगी। जी हां, पुणे यार्ड में प्रस्तावित रखरखाव कार्य के कारण रेल प्रशासन की ओर से कोटा मंडल से होकर गुजरने वाली जयपुर पुणे एक्सप्रेस के रूट में अस्थायी बदलाव किया गया है। 13 जून यानी आज से जयपुर से प्रस्थान करने वाली ये गाड़ी संख्या 12940 जयपुर पुणे एक्सप्रेस पुणे स्टेशन की बजाय खड़की स्टेशन पर समाप्त होगी। इसी प्रकार कल यानी 14 जून को चलने वाली गाड़ी संख्या 12939 पुणे जयपुर एक्सप्रेस पुणे की स्थान पर खड़की स्टेशन से निर्धारित समय पर रवाना होगी।

0: श्रोताओं, इन दिनों हम मना रहे हैं सर्जन सप्ताह। तो इस सप्ताह के तहत हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सर्जन डॉक्टर अतुल कुमार शर्मा से। आपसे बातचीत कर रहे हैं राजेश महावर और बातचीत का विषय है स्वस्थ सर्जन की भूमिका देश के लिए। आइए सुनते हैं।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, सर्जन दिवस हम मनाएंगे 15 जून को, लेकिन उसके पहले ये सप्ताह चल रहा है और आज 13 जून की सुबह है। आइए हम बात करें इसी विषय पर हमारे शहर के जाने माने सर्जन डॉक्टर अतुल शर्मा जी से। नमस्कार साहब, बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार जी। और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को हार्दिक आभार
1: जी। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आपसे बातचीत हम शुरू करें, हम आपके दिवस पर पूर्व में ही आपको बहुत बहुत बधाई दे दें, जबकि हम ये पूरा सप्ताह मना रहे हैं।
2: जी जी, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।

0: जी, और वैसे जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य में जब कोई समस्या आती है तब सर्जन ही होते हैं जो उनके जीवन की रक्षा कर पाते हैं। ऐसे में भी हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और आभार यूं भी कि आकाशवाणी के चंबल चैनल पर आपने समय दिया कि हम इस दिवस के बारे में और इस सप्ताह के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचा पाए। तो साहब, आप ही के माध्यम से हम अपने श्रोताओं को आपका परिचय दिलवाना चाहेंगे।
1: जी, मैं डॉक्टर अतुल कुमार शर्मा, प्रोफेसर एंड यूनिट हेड सर्जरी विभाग में हूँ
0: जी,
1: और वर्तमान में न्यू मेडिकल कॉलेज में कोटा में मैं कार्यरत हूँ
0: जी। डॉक्टर साहब, आप जब सर्जरी करते हैं तब किस किस तरह की समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ता है? उसके पहले खास बात तो यह है कि सर्जरी करने के पहले आपको प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: और अब और वो प्रसन्नता हमारे जो श्रोता हैं और जो मरीज आते हैं वो भी आपको प्रसन्न रख सकते हैं कि आप उनके जीवन को बढ़ाने का काम करते हैं।
1: जी जी साहब। तो सर्जन दिवस के मौके पर मैं आपके माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि सर्जन का जीवन बहुत आसान नहीं है। हमें मरीजों का ऑपरेशन से लेके ऑपरेशन के पहले ऑपरेशन के बाद में काफी समय तक ध्यान रखना पड़ता है, और कई बार मरीज 5-6 साल बाद भी आते हैं, साहब आप 6 साल पहले मेरे को ऑपरेशन किया था, अब मेरे को ये नई समस्या हुई है। तो ओवरऑल डॉक्टर समुदाय में भी सर्जन का काम जो है थोड़ा सा कठिन है और दुष्कर है
0: जी।
1: अब जो जिस चीज के लिए हम यहाँ बातें कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी पृष्ठभूमि मैं आपके माध्यम से अपने श्रोताओं को बताऊं।
0: अवश्य।
1: पिछले वर्ष से पहले सर्जन दिवस या सर्जन वीक का आयोजन कहीं भी भारतवर्ष में नहीं होता था। लास्ट ईयर से ही सर्जरी समुदाय के जो कुछ लोग हैं उन्होंने ये प्रारंभ किया है
0: जी।
1: और हम यूजुअली जून के महीने में और दूसरे सप्ताह में, तो इस वर्ष हम 9 जून से लेके और 15 जून तक के बीच में सर्जन वीक का आयोजन कर रहे हैं
0: जी।
1: इस वीक के दौरान विभिन्न एक्टिविटीज के माध्यम से जन चेतना, सर्जन के स्वास्थ्य के प्रति सर्जन को जागरूक करना एवं लोगों के स्वास्थ्य के प्रति भी लोगों को जागरूक करना इस वीक का प्रमुख उद्देश्य है
0: जी। तो किस किस तरह के आयोजन इस सप्ताह भर में आपने किए और अभी कुछ और दिन बाकी हैं?
1: जी जी, इस पूरे सप्ताह के दौरान जो हमारी नेशनल बॉडी है एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया, उन्होंने विभिन्न प्रोग्राम देश भर में आयोजित किए हैं। इसी श्रृंखला में कोटा में भी हम लोगों ने फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स कोटा में लगाए हैं
0: जी।
1: फ्री सर्जिकल कैंप्स भी हम लोगों ने आयोजित किए हैं, और हमारा उद्देश्य ये है कि एटलीस्ट कोटा में एक फ्री सर्जरी पर डे एक सर्जन के द्वारा करी जाए, इसके लिए भी हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और हम ये करना। इसमें ब्लड डोनेशन कैंप्स भी हम लोग आयोजित कर रहे हैं और ट्री प्लांटेशन, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है फिर भी हम चाह रहे हैं कि ट्री प्लांटेशन का ड्राइव अपन इस दौरान करें। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी इसी वीक में आने वाला।
0: बिल्कुल।
1: गेस्ट लेक्चर, सीएमईज और विभिन्न लेक्चर्स के माध्यम से लोगों को सर्जरी की बीमारियों के प्रति जागरूक करना और जल्दी अपने सर्जन को कॉन्टेक्ट करना, इसके लिए भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत सारी सर्जरी की बीमारियां ऐसी हैं जिनमें हम अगर सही समय पर पहुंच जाते हैं तो उनका बहुत समुचित उपचार सही समय पर कर दिया जाता है, जो डिले करने पर काफी कॉम्प्लिकेशन आते हैं।
0: बिल्कुल। ये आपने आज भी ये जो बातचीत चल रही है उस समय भी आप जो मरीज हैं उनकी तरफ चिंतित हैं, लेकिन ये सप्ताह और ये दिवस जो आ रहा है ये आपके लिए है, आप सर्जन के लिए है। ऐसे में जो मरीज होते हैं, मरीज के जो परिजन होते हैं, वो आपके आप सर्जन के साथ में किस तरह का व्यवहार करें? क्योंकि एक सर्जन होता है वो अपने हाथों में कुछ ऐसे औजार लेकर के और ऑपरेशन करता है जो कि मरीज के लिए प्राणदायी सिद्ध होते हैं। ऐसे में जो सर्जन है उन्हें पूरी तरह स्वस्थ रहने की भी जरूरत होती है। ये बहुत जरूरी है कि जो सर्जन है वो भी भरपूर नींद ले और स्वस्थ माहौल में ऑपरेशन करे।
1: अच्छी बात कही आपने
0: जी।
1: और इस बार का जो हमारा स्लोगन है वो है हेल्दी सर्जन हेल्दी नेशन।
0: क्या बात है।
1: तो आपके माध्यम से ही मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि सर्जन जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, ऐसा डिफरेंट स्टडीज में मिला।
0: ये बिल्कुल वैसी ही बात है साहब कि जिस तरह से घर पर जो महिलाएं होती हैं वो अपने घर के लिए अपना समग्र त्याग करती रहती हैं, अपनी

0: चिंता नहीं
1: जी
0: करती।
1: जी जी जी जी
0: जी
1: तो उसी को अपन को सर्जन्स को जागरूक करने के लिए कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहें। अगर सर्जन स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो आप अपने आप को भी स्वस्थ रखें जिससे अपन समाज को भी स्वस्थ रख सकें। तो ये जो ड्राइविंग इस दौरान है कि हम साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉकाथॉन कर रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए सर्जन्स को अपन स्टिमुलेट कर रहे हैं, डिफरेंट हेल्थ चेकअप फॉर द पेशेंट्स ऑल्सो और फॉर द डॉक्टर्स ऑल्सो, ये भी हम इस दौरान करेंगे। और ये यहाँ केवल कोटा में नहीं, केवल राजस्थान में नहीं, पूरे देश भर में इस दौरान ये आयोजन होंगे।
0: जी, तो क्या ये भारत के लिए चल रहा है ड्राइव?
1: जी, ये पूर्ण संपूर्ण भारत वर्ष में इस अवधि के दौरान में ये विभिन्न गतिविधियां हम संचालित करेंगे।
0: जी, और ऐसे में क्या आप ये बता सकेंगे कि अभी भी आप मरीजों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो सर्जन है वो अपने लिए किस तरह से ख्याल रखने का शुरुआत करेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो स्वस्थ रहना जरूरी है।
1: जी जी, इस दौरान हम जो है सर्जन के लिए विभिन्न एक्टिविटीज कर रहे हैं, विभिन्न सोशल मीडिया ऐप और आजकल वर्चुअल एप्स हैं जिनके माध्यम से उनको इंकरेज कर रहे हैं कि 40 मिनट्स वॉक कर रहे हैं सुबह और शाम।
0: जी।
1: जो लोग साइकिलिंग करते हैं वो मैक्सिमम साइकिल चलाएं। इस दौरान पूरे भारतवर्ष में जो सबसे ज्यादा साइकिलिंग एक्सरसाइज करेंगे उनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी हम इस बार करेंगे। और विभिन्न ब्लड डोनेशन कैंप्स अपन कर और मेडिटेशन और तनाव सर्जन्स के मध्य में कम करने के लिए विभिन्न वर्चुअल सेशन भी हम आयोजित कर रहे हैं जिससे कि सर्जन्स शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें।
0: जी, उनमें किस तरह की जानकारी आप प्रसारित कर रहे हैं साहब कि वो स्वस्थ रहें मानसिक रूप से, क्योंकि उनके ऊपर भी कार्य का तो बहुत भार होता है।
1: जी जी जी, आजकल क्या है कि यंग सर्जन्स की बहुत सारी नई जनरेशन आ रही हैं।
0: जी,
1: उनके लिए सामाजिक रूप से भी और पेशेंट को ध्यान रखने के रूप से भी विभिन्न तरह के तनाव में स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो उन स्थितियों से अपने को कैसे कोपअप करना है, मरीजों के परिजन से कैसे संवाद करना है, अपने मरीज की बीमारियों के बारे में उन्हें कैसे बताना है, इस बारे में भी सीनियर सर्जन विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संदेश प्रसारित करेंगे जो उन नए बडिंग सर्जन जो हैं उनके लिए भी अच्छे और प्रेरणादायी रहेंगे।
0: बिल्कुल। राष्ट्रीय सर्जन सप्ताह जो कि 9 तारीख से शुरू हुआ और 15 जून तक चलेगा, ऐसे में ये सप्ताह के दौरान होने वाले जो कार्य हैं उसके बारे में आप बता रहे हैं हमें, लेकिन इस बातचीत के दौरान जैसा कि हमने बताया कि आप मरीजों के प्रति ही चिंतित हैं, एक बात हम आपसे पूछें, आप एक सर्जन हैं, जब आप किसी की सर्जरी करते हैं और वो जो मरीज होता है वो स्वास्थ्य लाभ ले रहा होता है लेकिन यकायक उन्हें किसी तरह की तकलीफ आती है, तब उनके परिजन या फिर जो अटेंडेंट डॉक्टर होते हैं वो आपको कॉल करते हैं, चाहे रात के 12, 1, 2, 3 बजे का वक्त हो, जबकि आप संभवतः कुछ ही समय पहले आप नींद के आगोश में गए हों, ऐसे में आपको बड़ी परेशानी आती होगी, किस तरह से मैनेज करते हैं आप
1: इसको? मैं तो परेशानी नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि वो कॉल समय पे आने से हमें तुरंत मरीज के पास पहुंचना होता है। ऐसी परिस्थितियां डे बाय डे प्रतिदिन हमारे और हमारे जूनियर रेजिडेंट्स, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारे काम कर रहे हैं उनके साथ वो रूबरू होते रहते हैं।
0: जी।
1: और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस समय हमारी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि हम इस सबके लिए तैयार रहते हैं। तो रात को जब भी हमें कॉल आती है हम तुरंत वहां पहुंचते हैं और पहुंच के यथा स्थिति मरीज का समुचित उपचार करते हैं, क्योंकि सर्जरी ब्रांच ऐसी है, ये इमरजेंसी ब्रांच है।
0: जी।
1: में आपने थोड़ा सा भी समय दे दिया तो अपन मरीज के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, तो तुरंत पहुंचना होता है और तुरंत निर्णय लेना होता है।
0: जी, आज 13 जून है साहब, और आज के दिन आपका ये जो सप्ताह का जो कार्यक्रम है उसमें किस तरह का आयोजन आज के दिन किया जा रहा है?
1: देखिए, आज हमने सुबह एक साइकिल रैली का आयोजन किया और अभी शाम के समय हम सारे सर्जन समुदाय मिलकर के ट्री प्लांटेशन ड्राइव हम करेंगे आज।
0: जी, डॉक्टर रतुल कुमार शर्मा जी, आप सर्जरी करते समय जिन खास बातों का ख्याल रखते हैं वो हमारे श्रोताओं को आप बताएंगे जिससे कि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके कि किन किन परिस्थितियों में जो सर्जन होते हैं उनके जीवन के लिए प्राण रक्षक के तौर पर सामने आते हैं।
1: देखिए, सर्जन बनने के बाद दो तीन चीजें जो प्रमुख हैं जो लोगों को भी पता होनी चाहिए कि एक सर्जन के पास में एक दिन में कई सर्जरी होती हैं, परंतु हम ये सोचकर ऑपरेशन करते हैं कि मरीज का तो प्रथम और अंतिम ऑपरेशन ही है।
0: जी, जी।
1: तो हर मरीज को जितना ध्यान देना होता है, जितना समय देना होता है उतना हम देते हैं। कई बार हमें ऐसा होता है कि जटिल

0: परिस्थितियां होती हैं, उसके लिए हमें पढ़ाई भी करनी पड़ती है, उसके विभिन्न जो जांचें हैं उनका अध्ययन करना पड़ता है, और किस विधि से ऑपरेशन किया जाना इस मरीज के लिए बेस्ट है
1: जी,
0: वो विधि हम ऑपरेशन करते हैं। इन सभी परिस्थितियों को जान करके भी, ये सारा तनाव झेलते हुए भी, मरीज और मरीज के रिश्तेदारों को प्रसन्नतापूर्वक ये बताना होता है कि हम आपका ऑपरेशन करने जा रहे हैं और ईश्वर की कृपा रही तो हम आपका सफल ऑपरेशन करेंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है। आपके शब्द ही जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं, संभवतः उन्हें सर्जरी की आवश्यकता हो, लेकिन आपके शब्द उन्हें पहले से ही बहुत नियंत्रित कर देंगे। डॉक्टर साहब, आज आपका ये सप्ताह चल रहा है पूरा और 15 तारीख को सर्जन का दिवस होगा, ऐसे में सर्जन के महत्व पर ये जो बात चल रही है, हमारे श्रोता इस बात को भली प्रकार से जान सकेंगे कि जीवन रक्षा और गंभीर जो बीमारियां होती हैं उसके निवारण में सर्वोपरि भूमिका अदा करते हैं जो सर्जन होते हैं। ऐसे में आपने आकाशवाणी के माध्यम से तमाम श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाई, आपकी सप्ताह भर की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत आभार, धन्यवाद
1: जी। श्रोताओं, टेलीफोन के माध्यम से बातचीत आप तक पहुंचाई गई, ऐसे में आवाज जरा स्पष्ट नहीं मिली, लेकिन हम आशा करते हैं कि बातचीत का सार आप भली भांति समझ गए होंगे और ये भाव आप तक अवश्य पहुंचे होंगे कि सर्जन हमारे जीवन को संवारने के लिए कितने जागरूक होते हैं। आइए इस अवसर पर एक बार फिर हम अपनी ओर से भी सर्जन दिवस पर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करें। नमस्कार कोटा कार्यक्रम चंबल चैनल पर आप सुन रहे हैं।

कार्यक्रम है नमस्कार कोटा और सुन रहे हैं आप अपने चंबल चैनल पर। श्रोताओं, हमारे भारत की विरासत समृद्ध विरासत है। हमारी विरासत केवल प्राचीन इमारतों और कलाकृतियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हमारी संस्कृति, परंपराएं, भाषाएं, कलाएं, साहित्य और जीवन मूल्य भी शामिल हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही हमारी भारतीय सभ्यता ने विश्व को ज्ञान, विज्ञान, योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिक चिंतन का मार्ग दिखाया है। हमारे देश में अनेक धर्म हैं, अनेक भाषाएं हैं और अनेक संस्कृतियां हैं और इनका सुंदर समागम हमें देखने को मिलता है। ताजमहल, अजंता एलोरा की गुफाएं जैसे ऐतिहासिक स्थल हमारी कला और स्थापत्य की महानता को दर्शाते हैं।

दर्शाते हैं। भारतीय संगीत, नृत्य, चित्रकला और हस्तशिल्प भी हमारी सांस्कृतिक संपदा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी विरासत हमें अपने पूर्वजों के ज्ञान, उनके त्याग, समर्पण और उपलब्धियों से जोड़ती है। ये हमें अपनी पहचान पर गर्व करना सिखाती है, आने वाली पीढ़ियों को अच्छे संस्कार देती है। आज जब हाईटेक युग है, तो इस युग में हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए और उसे सुरक्षित रखने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। समृद्ध विरासत किसी भी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होती है। हमें उसे संजोकर रखना चाहिए और विश्व के सामने इसकी महानता को प्रस्तुत करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं। हमारी विरासत हमारी शक्ति है, हमारी पहचान है, हमारा गौरव है। हमें इसका सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम नमस्कार कोटा आप सुन रहे हैं अपने चंबल चैनल पर। और अब एक और सूचना आप तक पहुंचाएंगे और वो ये है कि पीटीईटी परीक्षा कल होगी। केंद्रों पर एआई और बायोमेट्रिक से होगी निगरानी। जी हाँ, प्रदेश के बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित पीटीईटी 2026 परीक्षा कल यानी 14 जून को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा प्रदेश के 41 जिलों के 300 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को केंद्र पर सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच प्रवेश दिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा के लिए कुल 1,26,600 आवेदन मिले हैं। इसमें 48,138 छात्र और 78,462 छात्राएं शामिल हैं। परीक्षा में सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड और प्रश्न पत्र दोनों पर क्यूआर कोड अंकित रहेगा। एआई सॉफ्टवेयर से सतर्कता बढ़ती जाएगी और संवेदनशील केंद्रों की निगरानी जयपुर के हाईटेक कमांड सेंटर और कोटा मुख्यालय से की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक जाँच के बाद ही प्रवेश मिलेगा। संदिग्धों पर नजर रखने के लिए कई स्तरों पर उड़न दस्ते तैनात रहेंगे। तो परीक्षा में जाइए, पूरी सतर्कता से जाइए और अच्छे से इस परीक्षा को दीजिए। इसके लिए आपको देते हैं हम अग्रिम शुभकामनाएं। और श्रोताओं, बातें करते करते, सूचनाएं देते पहुंचाते कार्यक्रम का समय आ पहुंचा है समापन की ओर। चलते चलते आपसे यही कहेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसके लिए योग प्राणायाम का सहारा लीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए, कृतज्ञता का भाव रखिए, दूसरों की मदद कीजिए और हमेशा खुश रहिए। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संयोजन किया तेजराम मीना ने और प्रस्तुति थी राजेश महावर की। ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया अलका दीक्षित ने। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार कोटा।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार कोटा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे।

हाजिर हैं हम लेकर के फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आज आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों के कुछ बेहतरीन तराने। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म पाकीज़ा से ये गाना। आवाज है लता मंगेशकर की, गीत रचना कमाल अमरोही की और संगीत गुलाम मोहम्मद का।

और आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ पुरानी फिल्मों के गाने। आइए सुनवाते हैं आपको अगला गाना। फिल्म का नाम है CID, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और गीता दत्त की, गीत रचना जहां निसार अख्तर की और संगीत OP नैयर का।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं अपने चंबल चैनल पर।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं अपने चंबल चैनल पर। और इससे पहले कि आप सुने अगला गाना, हम आपको देंगे कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, सुबह 8:15 आपको सुनना है सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। इस कार्यक्रम में आज विषय होगा आंखों की चोट, बचाव और उपचार। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ होंगी विशेषज्ञ डॉक्टर विदुषी पांडे। तो श्रोताओं, विषय से संबंधित आपकी कोई समस्या है, कोई सवाल है आपका, तो आप कार्यक्रम के दौरान हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 2941142 और कोटा का एसटीडी कोड है 0744। तो सुनना न भूलें सुबह 8:15 से 9:00 तक सजीव फोन इन कार्यक्रम।

आपकी सेहत। तो ये तो थी कार्यक्रम संबंधी सूचना, और आइए अब बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं आपको अगला गाना। फिल्म का नाम है चोरी चोरी। गीत को अपनी आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। गीत रचना हसरत जयपुरी की और संगीत शंकर जयकिशन का।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके।

0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
1: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपके अपने चंबल चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों के तराने। आइए सुनवाते हैं आपको अगला गाना, फिल्म का नाम है नया दौर। इस गीत को अपनी आवाजें दी हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। साहिर का गीत है और ओपी नैयर का संगीत।

ये है आपका अपना चंबल चैनल और इस समय आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों के तराने। इससे पहले कि आप सुने अगला गाना, हम आपको देंगे कार्यक्रम संबंधी सूचना। आज सुबह 8:15 बजे सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत प्रसारित होगा। विषय होगा आंखों की चोट, बचाव और उपचार, और इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर विदुषी पांडे। श्रोताओं, विषय से संबंधित आपका कोई सवाल है या आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप कार्यक्रम के दौरान हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 2941142 और कोटा का एसटीडी कोड है 0744। तो सुनना न भूलें आज सुबह 8:15 बजे सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। आइए सुनवाते हैं आपको अगला गाना। फिल्म का नाम है किस्मत। आवाजें हैं आशा भोसले और शमशाद बेगम की। गीत रचना SH बिहारी की और संगीत OP नैयर का।

फिल्म किस्मत के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से FM 102 और 103.6 MHz पर। सुबह के 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात का आज का अंक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: लाइट बिल के?
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे।

0: यात्रा के दौरान रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड लेक्चरर तालित मिजेन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए

0: सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
2: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से

0: भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं। अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द। तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा। हम जानते हैं खेल क्या है। यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102 और 103.6 MHz, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे सजी फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर तलवंडी कोटा। फोन नंबर 9351412449।
4: अब लेसिक लेजर से पाए चश्मे से आजादी। विश्व की सबसे आधुनिकतम अमेरिकन सिग्नेचर फेको मशीन द्वारा बिना इंजेक्शन, बिना टांके और बिना पट्टी बांधे मोतियाबिंद ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण।
3: आंख के पर्दे की सभी बीमारियों की जांच एवं ऑपरेशन सुविधा उपलब्ध। लेसिक लेजर सर्जरी, फेकिंग लेंस इम्प्लांटेशन, डिजिटल फंडस कैमरा से आंखों के पर्दों की जांच एवं एंजियोग्राफी, जापान पानी ग्रिल लेजर मशीन से मधुमेह रोगियों के पर्दे की सिकाई,
4: जटिल भेंगापन एवं काला पानी जांच और ऑपरेशन सुविधा।
3: सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेजिक लेजर सेंटर तलवंडी कोटा।
2: सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कहते हैं ना आंखें हैं तो ये जहान सुंदर लगता है, पर आंखों में जरा सी भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई चोट लग जाए तो कितनी मुश्किल होती है और हमारी रोशनी चली जाती है, कई तरह की समस्याएं आती हैं। तो आज इसी विषय को लेकर इस प्रोग्राम में हम हाजिर हैं। तो आज के इस कार्यक्रम का विषय है आंखों की चोट, बचाव और उपचार। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर विदुषी पांडे। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार।
5: थैंक यू, धन्यवाद आप मुझे बुलाने के लिए।
2: तो जैसा कि आप जानते हैं हमने कार्यक्रम का विषय आपको बताया आंखों की चोट, बचाव और उपचार। तो श्रोताओं, विषय से संबंधित आपकी कोई समस्या है तो आप कार्यक्रम के दौरान हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 2941142 और कोटा का एसटीडी कोड है 0744। तो अब से लेकर 9 बजे तक डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। कोई समस्या है आपकी तो आप हमें जरूर कॉल करें। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि कार्यक्रम का विषय है आंखों की चोट, बचाव और उपचार, तो आम तौर पर किस तरह की चोट आंखों में हो सकती है?
5: देखिए, चोट एक बहुत ही वाइड टॉपिक है और हर तरह की चोट आप जैसे सोच सकते हैं वो होती है और कई बार बहुत अनएक्सपेक्टेड भी होती है। मोटे तौर पे अगर मैं डिवाइड करूं तो लगभग आधी चोटें आपको रोजमर्रा की जिंदगी में, रोज के काम करते हुए, घर परिवार के आसपास के माहौल में ही हो जाती हैं।
2: जी।
5: इसके अलावा कुछ लोगों को चोटें अपने काम में आती हैं, उनकी प्रोफेशनल उसमें, जैसे जो लोग कारपेंटरी का काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं या लोहे मेटेलिक कुछ काम करते हैं, उन लोगों को चोट लग सकती है।

0: जी
1: खेती में भी चोट लग सकती है, जैसे कि आपको कोई खेती के टूल से या जब फसल काटने का सीजन होता है तो जो तिनके हैं या कोई डंडी है उसका कुछ नुकीला अंश है वो भी आपकी आंख में चोट लगा सकते हैं।
0: जी
1: और हमारे देश में जैसा माहौल है तो हमारे यहाँ पिक्यूलियरली जो इंडिया में खासतौर से फेस्टिवल रिलेटेड चोटें होती है जैसे होली दिवाली दिवाली पे चोटें बहुत ही आम है आंख में पटाखों की वजह से। इसके अलावा दशहरा पे बच्चे तीर कमान से खेलते हैं या जैसे हाड़ौती के बारे में बात करें तो यहाँ अलग अलग मेले लगते हैं ढोल मेला और इस तरह के मेले जिसमें लोग करतब दिखाते हैं
0: जी।
1: तो उससे भी मैंने कई चोटें देखी हैं जैसे किसी ने ट्यूबलाइट घुमाई और वो ट्यूबलाइट फूट गई किसी की आंख में लग गई तो इस तरह की चोटें लगती हैं। बहुत प्रकार की चोटें हैं पर मोटे तौर पर ये डिविजन है
0: जी। तो आपने जिक्र किया कि सबसे ज्यादा चोटें घर के डेली कामकाज को करते हुए लगती हैं तो इनका हम जिक्र करेंगे। जैसे आपने जिक्र किया कोई नुकीला चीज चली गई या सफाई करते हुए कहीं जहरीला कीड़ा आंखों में चला गया तो क्या इससे समस्या हो सकती है?
1: जब हम कहते हैं घर में काम करते टाइम ज्यादातर चोटें लगती है मतलब रोजमर्रा के काम घर में घर के बाहर जैसे भी तो इसमें जो ज्यादा कॉमन है वो है जिससे आप कोई आप साफ सफाई कर रहे हैं आपका सफाई का केमिकल आंख में गिर गया या आप इवन नॉर्मल जो रोजमर्रा की चीजें जैसे बहुत सारे लोगों को फेविक्विक या ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं वो आंख में चिपक गई
0: जी।
1: और साथ ही साथ नुकीली चीजों का तो हमेशा खतरा रहता है जैसे अगर आप कोई कैंची या सुई या इस तरह की कोई भी चीज कर रहे हैं तो उससे कहीं भी चोट लग सकती है
0: जी।
1: पर ऑब्वियसली आंख की चोट बहुत ज्यादा सीरियस है क्योंकि एक तो हम सब जानते हैं कि आंख में एक पलक का बाल भी गिर जाए तो कितनी तकलीफ होती है
0: जी।
1: और दूसरा उससे ऑब्वियसली आपकी रोशनी जाने का खतरा रहता है तो आपको तुरंत उपचार चाहिए
0: जी।
1: तो बहुत तरह की चोटें लगी हैं मेरे एक्सपीरियंस में तो मैंने लगभग हर चीज देखी है
0: जी, जी।
1: पेन के ढक्कन से चोट देखी है बड़ी कैंची छोटी कैंची चम्मच मतलब आप कोई बहुत सारी चीजें हैं आप किसी से भी चोट लग सकती है कभी
0: जी, जी।
1: और एक और जो घर में चोट लगने का कारण है वो है गिर पड़ना खासतौर से बुजुर्ग लोगों में अगर आप किसी भी वजह से गिर गए तो आपको अपने घर के फर्नीचर से चोट लग जाती है किसी को बेड का कोना लग गया किसी को कोई कांच लग गया या बुजुर्ग गिर गए और अगर फेस पे गिरे तो उनको उसके कारण भी चोट लग जाती है
0: जी। तो जैसा कि आपने बताया बुजुर्ग गिरे और कोई नुकीली चीज चली गई तो क्या इससे तुरंत ब्लड निकलने लगता है आंख से या स्वेलिंग आ जाती है?
1: आंख एक है बहुत छोटी सी ऑर्गन लेकिन आंख में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं छोटे छोटे तो आपको कहाँ कितनी चोट लगी है उसके ऊपर आपके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं
0: जी।
1: अगर आपको ज्यादा चोट लगी है तो आपकी आंख में जिसको कहते हैं एक पेनिट्रेटिंग इंजरी मतलब आंख कट गई ऐसी चोट है तो वो तो बहुत ही सीरियस है आपको खून भी आएगा दिखना बंद भी हो जाएगा
0: और दर्द भी होगा।
1: हाँ दर्द भी होगा
0: जी।
1: और अगर छोटी मोटी चोट है जैसे आपके कट नहीं लगा है लेकिन आपका जो आगे वाला हिस्सा है उसमें कुछ टुकड़ा चला गया या कुछ फॉरेन बॉडी जैसे हम बोलते हैं वो आंख में चली गई तो फिर आपको बहुत ज्यादा पानी आएगा चुभ
0: जोड़ रहे हैं
1: जी जरूर।
0: हेलो
2: नमस्ते मैडम
0: जी। नमस्ते कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं जय नारायण विश्वकर्मा बोल रहा हूँ कोटा से यहीं से केशवपुरा से
0: जी। जय नारायण जी क्या समस्या है आपकी?
2: सर मेरे क्या है कि आंखों में थोड़ा धुंधला धुंधला दिखने लग गया मेरे को
0: जी।
2: तो मैंने अभी चेकअप भी कराया था तो वो कह रहे हैं कि मोतियाबिंद आ गया आपके तो
0: जी।
2: तो मैं चाहता हूँ कि बिना ऑपरेशन के अगर कोई ऐसा वो कोई इलाज तो बता दो मेरे को। ये मैडम देखी हुई है डॉक्टर साहब
0: जी
2: निवेदन कर रहा हूँ मैं इनका
0: जी। डॉक्टर साहब
1: देखिए जय नारायण जी मोतियाबिंद तो एक बहुत ही आम बीमारी है इलाज के तौर पे अगर मैं कहूँ तो इलाज तो उसका ऑपरेशन ही है लेकिन बस ये है मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ऑपरेशन कोई इमरजेंसी नहीं है मोतियाबिंद का। ज्यादातर लोगों को धुंधला दिखना शुरू होता है तो कुछ टाइम चश्मा वगैरह का नंबर बदल के या इस तरह से दोनों आंखें खोल के क्योंकि एक आंख में ज्यादा होता है एक में कम होता है आपका काम चल जाता है लेकिन जब आपको इतना ज्यादा धुंधला दिखे कि काम नहीं चल रहा तो अभी आज की डेट में तो उसका इलाज ऑपरेशन से ही होता है। कोशिश जारी है साइंटिफिक वर्ल्ड में कि कोई ड्रॉप्स वगैरह से मोतियाबिंद घुल जाए पर अभी ऐसा संभव नहीं है। अगर ज्यादा मोतियाबिंद होगा तो ऑपरेशन ही कराना पड़ता है
0: जी। जय नारायण जी और कोई समस्या आपकी?
2: नहीं सर मैडम मेरे तो यही समस्या थी अभी ये क्या कि एकदम से कोई मच्छर चला गया था एक दिन तो उस वजह से और ज्यादा और डैमेज हो गया मेरे को दिखना अब थोड़ा साफ होता जा रहा है थोड़ा
0: जी जी। डॉक्टर साहब की बात पर ध्यान दीजिए
1: अगर मत, अगर मत, मैं ये भी कह दूं, अगर मच्छर गिरने से कुछ आंख के कॉर्निया में चोट लग गई थी और उसके कारण आपको धुंधला

0: दिख गया था, तो वो कुछ हद तक धीरे धीरे करके, जैसे जैसे वो चोट का निशान थोड़ा साफ होगा हीलिंग प्रोसेस में, वो आपको काफी हद तक रोशनी वापस आ जाएगी, लेकिन जो मोतियाबिंद के कारण कम है वो वापस नहीं आएगी। तो अगर मच्छर गिरने से कुछ इंजरी थी तो उसमें संभव है कि आपको सुधार हो जाए।
1: जी धन्यवाद, आपने कॉल किया।
2: धन्यवाद
1: जी डॉक्टर साहब। हम बात कर रहे थे कि कोई नुकीला पदार्थ चला जाए, कोई चीज चली जाए तो आंखें इस तरह से डैमेज हो जाती है कि परमानेंट इंजरी हो जाती है।
0: जी बिल्कुल
1: जी, ये बता रहे थे आप।
0: तो इसमें क्या है कि अगर आपको काफी कट लग जाए आंख में या कुछ, तो उसमें और डीप कट है आंख के स्ट्रक्चर्स में, तो फिर उसमें ऑपरेशन करके उसको कट को जोड़ना होता है
1: जी।
0: और उसके बाद भी थोड़ा बहुत निशान रह सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कितनी बड़ी चोट लगी है
1: जी।
0: बाकी सिम्टम्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं
1: जी। हेलो हेलो
3: हेलो
1: जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: जी राकेश जी, क्या सवाल है आपका?
3: जी सबसे पहले तो मेरा डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
3: जी मेरा एक प्रश्न है, जो मोतियाबिंद होते हैं आंखों में, क्या ये सिर्फ एज के मुताबिक होगी या ये बच्चों में भी पाई जाती है?
0: देखिए ज्यादातर मेजोरिटी बहुत सबसे ज्यादा तो मोतियाबिंद एज के कारण ही होता है, लेकिन काफी कम बच्चों में, वो मच रेयरर है। जन्मजात मोतियाबिंद भी हो सकता है, और फिर बच्चों में कभी कभी चोट से, आज हम चोट की बात कर रहे हैं, चोट के कारण भी मोतियाबिंद बन सकता है, और कुछ ड्रॉप से, दवाइयों से मोतियाबिंद बन सकता है। तो ये कम उम्र में भी हो सकता है, लेकिन कम उम्र में कम होता है।
3: अच्छा, मतलब कम उम्र में कम होता है
0: जी।
3: लेकिन जिस वो मतलब आँख में बिना वजह आँख आते हैं और लोग सोचते हैं कि ये क्यों रो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब कारण हो सकता है? कई बार ऐसी आँख आ जाती है।
0: मुझे आपका क्वेश्चन ये समझ में आया कि आंख में आंसू आते
1: जी,
0: हैं
1: बिना वजह?
0: बिना वजह
1: जी,
0: बिना वजह तो नहीं आते होंगे, लेकिन अगर देखिए, अगर दोनों आंखों में आंसू आते हैं, साथ में कुछ खुजली वुजली है, तो वो एलर्जी के कारण हो सकता है, जो ज्यादा कॉमन कारण है। इसके अलावा अगर एक ही आंख में आंसू आते हैं, तो आंसू की नली होती है सब लोगों के, जिससे आंसू आंख से नाक में, नाक से गले में जाते हैं, वो नली बंद होने के कारण आंसू आ सकते हैं। बचपन में छोटे बेबीज में ये काफी कॉमन कारण है कि आंसू की नली बंद होने के कारण आंसू आते हैं, और वो फिर उपचार के माध्यम से, या तो मालिश से या सलाई डालने से, वो नली खुल सकती है, और बड़े बूढ़ों में वो नली अगर बंद होती है तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। ये दो कॉमन कारण है आंसू आने के।
3: जी जी जी, धन्यवाद जानकारी।
1: धन्यवाद राकेश जी, आपने कॉल किया जी। अपने श्रोताओं को मैं यहाँ बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम का विषय है आंखों की चोट, बचाव और उपचार। तो आंखों की चोट से संबंधित आप सवाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 2941142। तो डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि इमरजेंसी हो जाती है और ऑपरेशन करना पड़ता है, क्या आंखों की चोट में भी कोई ऐसा समय है कि शुरुआती 2-3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या थोड़ा सा एक आध दिन इसको डिले किया जा सकता है?
0: देखिए जैसे मैंने बताया कि आंख में ना बहुत तमाम तरह की चोटें होती हैं
1: जी,
0: तो जो चोट, जो सबसे अर्जेंट सीवियर चोट, और यहाँ पे एक चोट का जिक्र करना बहुत जरूरी है, वो है हमारे माहौल में, इंडियन माहौल में, चूना से लोगों को चोट लग जाती है
1: जी जी।
0: और चूना क्योंकि हम पान में मिलाते हैं, और अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर से कई लोग घरों में चूना की एक छोटी सी ट्यूब रखते हैं
1: जी जी,
0: और इससे इतनी मतलब इतनी सीवियर इंजरी होती है, क्योंकि ये आंख के लिए बहुत ही हानिकारक चीज है
1: जी जी।
0: जैसे आप, हम सब जानते हैं चूना पानी में डालते ही कैसे एकदम से रिएक्शन होता है, तो अगर ये चूना, और कई बच्चों के क्या होता है कि बच्चे खेल खेल में वो चूना की ट्यूब को से खेलते हैं, और वो पिचकारी की तरह से आंख में जाती है, और इससे इतना सिवियर डैमेज होता है उनकी आंख में। तो ये जो इंजरी है, इसमें शुरुआती टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तुरंत तुरंत जैसे ही चूना गया है, बिना एक मिनट गवाए उसको धोना है, और अच्छी तरह से, ये चीज सब लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में काफी कॉमन है और बहुत सिवियर है। तो जैसे ही कोई चूना गया, वैसे तो ये हर एक केमिकल या कोई भी इस तरह की इंजरी के लिए है, कोई केमिकल गया, साबुन गया, तेल चला गया, लोगों को, गृहिणियों को खाना पकाना जाते तो चूना अगर जाता है तो आपको आंख खोल के कम से कम 20 मिनट तक लगातार उसको पानी से धोना है और साफ हाथों से पलकों को खोल के रखना है, जिससे कि अच्छी तरह से जो आपकी आंख है धुल जाए, चूना जहां जहां से हो सकता है खासतौर से पलक के नीचे छुपा हुआ है तो वो साफ हो जाए। तो इसमें शुरुआती टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है
1: जी।
0: आप कहीं भी जाने से पहले उसको धो लें और फिर आप हॉस्पिटल जाएं तो वहां पे वो और अच्छे से उसकी सफाई करेंगे। बाकी जो चोट

0: होती हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई नुकीली चीज गई है या
1: हाँ
0: ब्लंट ट्रॉमा जिसको बोलते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में इंजरी होती है,
1: जी
0: गेंद से हो गई, टक्कर से हो गई, उसमें ऐसा नहीं है कि शुरुआती के 1-2 घंटे में ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में जाएं, जिससे आपको पता चले कि कितने एक्सटेंट तक इंजरी है।
1: जी
0: सबसे ज्यादा जो शुरुआती जरूरत है वो है इस तरह के केमिकल इंजरीज में, जिसमें आपको खुद घर पे प्राथमिक उपचार करना चाहिए।
1: जी इसके अलावा जहरीला कीड़ा कहें, साफ सफाई करते हुए कोई मकड़ी चली गई या कोई और ड्राइव करते हुए कोई जहरीला कीड़ा चला गया, वो कितना नुकसानदायक होता है?
0: देखिए वो भी काफी नुकसानदायक होता है, और खास तौर से प्रॉब्लम ये आती है कि इवन कोई छोटा मोटा मच्छर या ऐसा कुछ छोटा कीड़ा भी गया तो हमारी टेंडेंसी होती है
1: एक कॉलर है।
0: जी जरूर।
1: हेलो
2: नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
2: जितेंद्र बात कर रहा हूँ।
1: जी जितेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: डॉक्टर साहब से पूछना था मैम, अभी 8 दिन पहले की बात है मैम।
1: जी
2: 8 दिन पहले हमारे पिताजी को क्या है, आंख में लग गई थी मैम, बम्बूल की जांच की लग गई थी मैम।
1: किसकी लगी?
0: बम्बूल की।
1: जी
2: उनकी वो बेस्ट फ्रेंड गई थी, वहाँ से लग गई थी मैम।
1: जी
2: तो उनको डॉक्टर साहब को भी दिखाया, वहाँ पे दवाएं दी थी मैम।
1: जी
2: दी थी, दवाई भी दी थी और गोलियां भी दी थी, पर 3-4 दिन के लिए वो दी थी, वो 4 दिन बाद में तो बलवाई था।
1: अब क्या समस्या है?
2: मैं समस्या तो कुछ भी नहीं, पर मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ भाई, बाद में समस्या हो सकती है क्या?
1: जी
0: जी बिल्कुल हो सकती है, अगर बबूल की चोट लगी है और उन्होंने डॉक्टर ने देख के आपको दवाइयां ही दी हैं, तो अच्छी बात तो यह है कि उनको कट नहीं लगाया, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से आँख कट गई और उसके ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी हो। तो अब अगर बबूल की चोट लगी है तो या तो आपका जो आगे वाला सतह होता है आँख का, कॉर्निया जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ खरोंच आई होगी या कोई जख्म बना होगा, इस तरह के चोट लगते हैं। हाँ
2: थोड़ा घाव
0: बताइए। हाँ घाव, तो वो धीरे धीरे करके ड्रॉप से भरेगा। अब अगर इस घाव में कोई इन्फेक्शन नहीं होता तो अमूमन ये घाव भर जाता है, और किसी भी घाव के बाद थोड़ा बहुत निशान तो आता है लेकिन वो धीरे धीरे समय के साथ कम होता है। तो मोटे तौर पे बिना उसको पेशेंट को देखे मैं इतना कह सकती हूँ कि आपको सुधार, जो भी रोशनी कम हुई है वो डेफिनेटली सुधार होगा। अब इसमें 100% होगा या नहीं ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं भी चोट लगती है तो थोड़ा निशान तो पड़ता है, लेकिन आप इसका ड्रॉप्स को बिल्कुल बताए अनुसार डालें और समय समय पर दिखाते रहें, क्योंकि घाव है, घाव को भरने में टाइम लगता है, जब तक घाव रहता है इन्फेक्शन का रिस्क भी रहता है, तो आपको दवाइयाँ भी डालनी है और दिखाना भी है कि घाव ठीक तरह से भर रहा है या नहीं भर रहा है, है ना? और ज्यादातर लोगों में काफी हद तक सुधार हो जाता है।
1: जी और कोई समस्या? जी धन्यवाद, आपने कॉल किया। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, एक कॉलर और जुड़ रहा है।
0: जी जरूर।
1: हेलो
3: जी नमस्ते, मैं नीतीश मिश्रा, मैं नरसिंहपुर से कर रहा हूँ।
1: जी जी
3: मैम, मेरा सवाल ये है कि जो ग्लूकोमा के शुरुआत लक्षण क्या होते हैं, अगर ग्लूकोमा से कोई व्यक्ति ग्रस्त हो चुका है तो उसका इलाज किस प्रकार से संभव है?
1: ये तो हम विषय से बिल्कुल हट गए।
3: अरे मैम, ग्लूकोमा भी हमारे दादाजी को हुआ है, जिस कारण से मैंने पूछा आपसे।
0: ठीक है, मैं आपको बहुत ब्रीफली बता दूं, ग्लूकोमा में ऐसा है कि आपके दादाजी को ऑलरेडी डायग्नोज हो चुका है, तो उसका शुरुआत में इलाज यही है कि आप डॉक्टर से आंख का प्रेशर चेक कराते रहें और उसको कंट्रोल में रखने के लिए ड्रॉप्स को नियमित डालते रहें बिना नागा के, ये सबसे जरूरी है, जिससे कि उनको ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। तो ड्रॉप्स डालना है और प्रेशर कंट्रोल कराना है।
1: जी धन्यवाद, आपने कॉल किया। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक ब्रेक की बारी है और उसके बाद हम अपनी बातचीत को कंटिन्यू रखेंगे।
0: जी।
4: नजर धुंधली हो या नंबर हाई, चश्मा हटाना हो या मोतियाबिंद, सुई आई हॉस्पिटल पर आपको मिलेगा आंखों की समस्या का हर इलाज।
5: अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आए ट्रेन डॉक्टर्स आप कोटा में एडवांस मशीन्स के साथ आंखों की हर समस्या की जांच और उपचार, लेसिक लेजर से पाए चश्मे से आजादी और फेकिक लेंस प्रत्यारोपण से मोटे चश्मे से छुटकारा,
4: विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा कैटरिक सर्जरी, रेटिना केयर और कॉर्निया उपचार,
5: सुवी आई हॉस्पिटल एवं लेसिक लेजर सेंटर तलवंडी कोटा।
4: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर तलवंडी कोटा।
5: फोन नंबर 9351412449।

0: QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत आप सुन रहे हैं और आज का विषय है आंखों की चोट बचाव और उपचार और इस विषय पर जानकारी देने के लिए डॉक्टर विदुषी पांडे हमारे साथ हैं और कॉल करने के लिए आपको हम नंबर बताते हैं 2941142 यानी 2941142 और कोटा का एसटीडी कोड है 0744। एक कॉलर जुड़े हैं हमसे। हेलो जी नमस्कार।
3: जी नमस्कार, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ।
2: जी अर्जुन जी,
3: ये मेरे पापा की उम्र 77 है
2: जी।
3: तो जैसे वो अखबार पढ़ते हैं तो आंख में आंसू आते हैं
2: जी।
3: तो ये क्या हो जैसे वो रहे?

0: जी नमस्कार, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ।
1: जी अर्जुन जी,
0: ये मेरे पापा की उम्र 77 है
1: जी।
0: तो जैसे वो अखबार पढ़ते हैं तो आंख में आंसू आते हैं
1: जी।
0: तो ये क्या हो जैसे वो
1: जी डॉक्टर साहब,
2: अगर आंख अखबार पढ़ते टाइम आँख में आंसू आते हैं तो हो सकता है उनको कुछ आँखों पे पढ़ते टाइम जोर लगता हो, और अगर दर्द भी होता है खासतौर से आँख पे, ऐसा लगता है कि दबाव महसूस हो रहा है, तो उनकी आप जांच कराएं। चश्मे वगैरह का नंबर हो सकता है, क्योंकि उम्र के साथ चश्मा लगाना ज़रूरी है। और आंसू आने के और तो कारण जैसे मैंने पहले बताया था, एलर्जी वगैरह के कारण आ सकता है, कुछ आंसू की नली बंद होने के कारण हो सकता है, पर अगर सिर्फ अखबार पढ़ते टाइम ही आते हैं तो आप एक बार चश्मे का जाँच कराएँ और उनकी पूरी आंख की जांच में पता चल जाएगा कि खाली अखबार पढ़ते टाइम में ऐसा क्यों होता है। तो कारण तो यही है कि कुछ नंबर वंबर की ज़रूरत हो, एलर्जी हो, कुछ नली बंद हो, तो वो ड्रॉप्स वगैरह से फ़ायदा हो जाएगा या चश्मे से।
0: हाँ बस वही है बाद में।
1: जी
2: जी जी,
1: धन्यवाद आपने कॉल किया।
0: धन्यवाद
1: जी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे जहरीला कीड़ा यदि चला जाए, तो आप बता रहे थे कि किस तरह से हमें करना होगा।
2: तो कोई भी कीड़ा, मच्छर, छोटा सा इंसेक्ट कुछ भी जाए, तो नॉर्मली टेंडेंसी हमारी ये होती है कि हम आँख को रब करते हैं
1: जी,
2: तो वो और ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि आप एक तरह से उस छोटे से कीड़े को या जिसको भी थोड़ा मसल देते हैं, तो उसका जो एक कुछ जहरीला अंश है या कुछ लिक्विड है, वो आँख में बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है
1: जी जी।
2: तो कभी भी ऐसा हो तो उसको मसले नहीं, अगर आपको लगता है कि आँख में कुछ भी गिरा है तो आप उसको आँख को धो सकते हैं, लेकिन रगड़े मसले नहीं बिल्कुल भी
1: जी।
2: और अगर धोने से निकल जाता है तो अच्छी बात है, आपको खुद महसूस हो जाएगा। अगर नहीं निकलता है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाके उसको इस तरह से निकलवाएं कि वो आपकी आँख में कम से कम नुकसान करे। लेकिन फिर भी जब ये जाते हैं तो सबसे ज्यादा होते हैं कि एकदम से उसका जो भी उसका लिक्विड था या जो उसका कुछ जहर या जैसा भी बोले नॉर्मल भाषा में, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा रिएक्शन होता है, एलर्जी होती है
1: जी जी।
2: तो उसके लिए फिर आपको कुछ दिन दवाइयां वगैरह लेनी पड़ेंगी जिससे कि वो कंट्रोल में आ सके और आंख को रगड़े मसले नहीं उसको। और साथ ही इस तरह की चीजें जैसे होती हैं, जैसे आपने बात की थी नुकीली चीज है या कोई कीड़ा भी गया है, तो हम उसको फिशिंग नहीं करें निकालने के लिए। जैसे कई बार क्या होता है, अगर कोई नुकीली चीज चली गई है, अगर आसानी से कुछ निकल आए तो ठीक है, लेकिन उसको आप जोर लगा के निकालेंगे तो और ज्यादा डैमेज करेंगे। इसी तरह से अगर आप आंख में उंगली डाल के कुछ कीड़ा वीड़ा निकालने की कोशिश करेंगे तो और डैमेज हो सकता है। तो ये ना करें,
1: सीधे डॉक्टर के पास जाएं।
2: हाँ, बस आंख धो लें, नहीं निकलता तो डॉक्टर के पास जाएं।
1: बार बार जो सवाल आ रहे हैं कि आंसू बहुत निकलते हैं, तो अक्सर मैंने देखा है ड्राइव करते समय भी आंखों से आंसू आते हैं
2: जी,
1: उसकी क्या वजह है?
2: ड्राइव करते टाइम आंसू का एक बड़ा कारण ड्राई आईज होता है, क्योंकि आंखों में ड्राई आईज बहुत ही कॉमन समस्या है आजकल के माहौल में, खासतौर से जब पोल्यूशन है और हम सारा दिन स्क्रीन पे काम करते हैं, और जब आप ड्राइव करते हैं तो हवा लगती है, उसके कारण ड्राइनेस और बढ़ती है जिसके कारण आंसू आ सकते हैं
1: जी जी।
2: तो उसके लिए कुछ ड्रॉप्स आती हैं जिससे कि आपकी आंखों की नमी बरकरार रहती है, वो डालने से फायदा मिलता है। साथ ही साथ आप जब भी ड्राइव करें तो सिर्फ आंसू के लिए नहीं, अपने वैसे प्रोटेक्शन के लिए भी आप गॉगल्स लगाएं। और जैसा आपने बात की थी ड्राइव करते टाइम कभी कभी कीड़ा चला जाता है, तो अगर आप गॉगल्स लगाएंगे या हेलमेट, टू व्हीलर चला रहे हैं, हेलमेट का कांच लगाएंगे, तो उससे भी आपको कीड़ा वीड़ा भी नहीं जाएगा, आंसू भी कम आएंगे, तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे जरूरी।
1: एक कॉलर है। हेलो
0: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, आपको भी नमस्कार।
2: नमस्कार जी,
1: अपना शुभ नाम बताएं।
0: मेरा नाम पप्पू जी सुमन है
1: जी,
0: कोटा से बोल रहा हूँ मैं
1: जी। पप्पू जी,
0: मेरा ये है कि 2 साल पहले मैंने ऑपरेशन कराया था आँख का, तो उससे तो बढ़िया दिख रहा है, लेकिन क्या है कि जो दूसरी आँख में है ना, पानी वानी आ रहा है, उसका ऑपरेशन कराने के चक्कर में रहता हूँ मैं, तो मेरे को कैसे भी करके टाल देते हैं डॉक्टर, क्या बात है? वो कहते हैं कि तुम्हारा शुगर बढ़ रहा है, तो शुगर की वजह से नहीं कर रहे, क्या इसका क्या उपाय करें
1: जी? सुनिए डॉक्टर साहब की बात।
2: देखिए, शुगर अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि शुगर कंट्रोल करने के बाद ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो। और शुगर कंट्रोल तो आपके लिए वैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि वो सिर्फ आँख पे नहीं, आपके पूरे शरीर पे असर करता है। तो पहली कोशिश तो आपकी यही होनी चाहिए कि अगर शुगर बढ़ी हुई है तो आप उसको कंट्रोल करें, सिर्फ आँख का ऑपरेशन कराने के लिए नहीं, आपको वैसे भी शुगर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फिर भी अगर अगर ऐसा मान भी लें कि कुछ लोगों की शुगर मान लीजिए नहीं कंट्रोल हो पा रही है, बहुत ज़्यादा मोतियाबिंद है, पक गया है और ऑपरेशन कराना ज़रूरी ही है, तो अगर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है शुगर, थोड़ी

0: बहुत बड़ी हुई है, तो ऐसे में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके एंटीबायोटिक वगैरह लेके किया जा सकता है। लेकिन पहले आप कोशिश करें कि शुगर कंट्रोल कराएं। अब अगर उस आँख में आंसू भी आते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोतियाबिंद के साथ साथ आपकी आंसू की नली बंद है, तो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप पहले आंसू की नली बंद जो है, या खासतौर से अगर पानी के साथ गीजड़ भी आ रही है, तो पहले उसका इलाज करा लें, क्योंकि अगर आँख में गीजड़ आती है तो फिर मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो ये दो तीन कारण मेरी समझ में आते हैं।
1: शुगर कितना होना चाहिए, मतलब वो कैसे कराते टाइम?
0: आप वैसे तो फुली कंट्रोल्ड हो और वही 100-110 के से नीचे हो तो बढ़िया है, लेकिन अगर मान लीजिए 150 है, 200 से नीचे है, और उससे ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मोतियाबिंद आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो लोग ऑपरेशन कर देते हैं। आजकल जो फेको पद्धति होती है उसमें कट वगैरह बहुत छोटा होता है, जल्दी हील हो जाता है, तो इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है। तो अगर नहीं कंट्रोल हो पा रहा तो करीब 150-200 के नीचे नीचे रहता है तो लोग कर देते हैं, पर कोशिश तो अपनी हमेशा यही होनी चाहिए कि शुगर कंट्रोल हो सके।
2: जी धन्यवाद, आपने कॉल किया। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया था शुरू में कि जानवरों से भी आंखों में चोट लग सकती है, किस तरह की चोट और किस तरह के जानवर से ये लग सकती है?
0: देखिए, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा चोटें देखी हैं, इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा सिवियर ट्रैजिक चोटें देखी हैं वो गाय के सींग से देखी हैं, गाय या भैंस के सींग से। और कई बार अपने पालतू गाय हैं, इनफैक्ट ज़्यादातर अपने पालतू ही होते हैं, लेकिन किसी भी कारण से अगर उनको कुछ मतलब गाय को डर लगा या किसी भी कारण से वो अटैक करती है, तो उसके सींग से बहुत गंभीर चोट लगती है। आप समझ ही सकते हैं कि सींग और आंख, एक तरफ सींग और एक तरफ आंख जैसा डेलिकेट स्ट्रक्चर, तो उसमें तो आंख एक तरह से पूरी तरह से रप्चर टाइप हो जाती है, और इसमें आंख को बचा पाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। तो ये सबसे कॉमन कारण है। तो आप हमेशा जब भी आप, और जानवरों से चोट लगती ही है, और क्योंकि हमारे परिवेश में सबसे ज्यादा क्लोज हम गाय से रहते हैं, इसलिए शायद ये कॉमन ज्यादा है। तो आप जब भी, जो भी लोग खेती वगैरह का काम करते हैं, गाय भैंस पालते हैं, तो वो थोड़ा
2: कॉलर है।
0: ऑब्वियसली
2: हेलो हेलो हेलो जी हेलो जी। इसके अलावा जानवरों में जैसे आपने सींग बताया, इसके अलावा ये बिल्ली और कुत्ते, इनका भी जो है नाखून बहुत तीखे होते हैं, क्या इनसे भी चोट लग सकती है?
0: हाँ, लगने को तो किसी भी जानवर से लग सकती है, और कभी कभी ऐसा होता भी है कि किसी से स्क्रैच हो गया। बल्कि अगर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बताऊं, तो एक बार तो मैंने एक किसान के आंख में कॉर्निया में स्क्रैच देखा था, और एक सांप ने बाइट किया था उसको।
2: अच्छा।
0: पानी में वो काम कर रहे थे, और पानी का सांप था, जहरीला नहीं था, तो सिर्फ एब्रेशन था, बिल्कुल दांत के निशान दिख रहे थे। पर ये तो खैर एक बहुत उस तरह की बात है जो बहुत
2: अनकॉमन आया कि सांप ने उन्हें काटा है।
0: हाँ हाँ हाँ, और उन्होंने पहले वो सांप वाले डॉक्टर के पास ही गए थे, फिर हमारे पास आए। पर एनीवे, तो वो तो खैर एक वैसी बात है जो अपने लाइफ टाइम में कोई एक केस देखा होता है। पर इसके अलावा जैसा आप पूछ रहे थे, किसी भी जानवर से, उसके पंजों से और नाखूनों से चोट लग सकती है, लेकिन वो नाखून से चोट लगती है तो नॉर्मली स्क्रैच वगैरह आते हैं, और उसमें जरूर हमें बाकी चीजें देखनी पड़ती हैं कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। लेकिन जो गाय के सींग से चोट लगती है वो बहुत ज्यादा सिवियर होती है
2: जी।
0: तो बाकी किसी भी जानवर के साथ अगर आपका इंटरेक्शन है, तो आपको जो एक बेसिक सावधानी है वो बरतने की जरूरत है, और कभी भी जानवरों को प्रवोक तो करना ही नहीं चाहिए, और कई बार फिर भी बिना कारण के ऐसे इस तरह की चोट लग जाती है, तो वो अनफॉर्चुनेट है, काम तो जानवरों के साथ करना ही पड़ेगा।
2: जी
0: तो सावधानी
2: जी। आपने जिक्र किया त्योहारों पर भी हमारे यहाँ चोट लगती है, होली और दिवाली, तो सबसे पहले हम दिवाली पर लगने वाली चोटों का थोड़ा जिक्र करेंगे, जैसे पटाखों से जो चोट लगती है, क्या सीधे पटाखे आंख में आ जाते हैं या उसके बारूद से भी नुकसान होता है?
0: नॉर्मली तो कुछ जिसको कहते हैं ना फायर क्रैकर, स्प्लिंटर्स टाइप होते हैं जिनसे नुकसान होता है, और जैसे आप फुलझड़ी चला रहे हैं तो कुछ एक छोटा सा उसका बारूद टाइप आ गया, कई बार बम फट गया, कुछ लोग क्या है कि कोई पटाखा चला रहे हैं लेकिन वो नहीं फूटा या नहीं चला, तो फिर उसके बहुत पास जाके उसको देखते हैं तो फिर वो एकदम से फट गया, तो वो आंखों में बारूद घुस जाता है। तो वो मोस्टली तो उस एक्सप्लोजन से या फटने से, बारूद से चोट लगती है, पर कभी कभी उसका कोई नुकीला पार्ट भी जा सकता है, वो जैसे कोई रॉकेट है या इस तरह का कुछ हुआ, पर ज्यादातर तो फटने से लगती है, बारूद एकदम से जाता है, वो गर्म भी होता है, वो चुभता भी है, वो नुकीला भी होता है, तो वो डैमेज करता है
2: जी। ऐसे में क्या करना चाहिए?

0: सबसे पहले तो यही है कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ थोड़ा मतलब कुछ, सबसे पहले तो दिवाली के टाइम सब जगह से प्रमोशंस होते हैं कि आप पटाखे चलाते टाइम बेसिक सावधानियां
1: जी,
0: बरतें,
1: जी.
0: दूर रहें, हाथ बच्चों के को अनसुपरवाइज ना छोड़ें, और जो पटाखे हम चलाते हैं जैसे कई बार हम किसी मटके में या ऐसे बॉटल में रख के चलाते हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि उसमें क्या होता है खाली पटाखे से नहीं, अगर बॉटल फूट जाती है तो बॉटल के कांच से भी चोट लगती है.
1: हाँ हाँ
0: और अगर मान लीजिए कोई पटाखा नहीं चलता है तो उसको जाके छेड़े नहीं, उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब आप उनको पानी में डाल दें या ऐसा करें जिससे कि वो फटे नहीं. तो ये सारी सावधानियां रखना बहुत जरूरी है. और फिर भी अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आपको ऐसे केसेस में, क्योंकि आपको पता नहीं होता, हो सकता है कि खाली बारूद के पार्टिकल्स हो सकता है कि कट लग गया हो, तो अपने आप इलाज करने के बजाय आपको इन चीजों में डॉक्टर
1: तो
0: की
1: क्या
0: सलाह
1: इसमें
0: लेनी
1: आँख को धोना जरूरी है घर पे या सीधे डॉक्टर के पास जाएं?
0: अगर आपको लगता है कि ज्यादा चोट नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ गया है, तो आप धोना ट्राई कर सकते हैं, पर क्योंकि ये रिस्क रहता है कि वो आँख कटी हुई भी हो सकती है, तो इसलिए इसमें ज्यादा छेड़खानी ना करें तो अच्छा,
1: और सीधे डॉक्टर के पास
0: जी, सीधे डॉक्टर के पास.
1: इसके अलावा होली पर किस तरह की रिस्क हो सकती है आंखों को कलर से? या
0: होली पे कलर्स जो है वो एक तरह से केमिकल टाइप है, और इसके वजह से आंख में एलर्जी हो सकती है. आंख में अगर कलर्स गिरते हैं तो आंख में रिएक्शन होता है. पर पिचकारी से भी चोट लगती है कई बार, बच्चे जो पिचकारियां चलाते हैं उससे कुछ मतलब नुकीली चीज है, और पिचकारी से आंख में कट लगे हुए भी मैंने कई सारे केसेस देखे हैं. तो कलर्स से भी चोट लगती है और आंख की पिचकारी से भी चोट लगती है, और पिचकारी से जब बहुत जोर से कुछ लगाते हैं तो उससे भी चोट लगती है. तो वही बात है कि कलर्स आंख के आसपास नहीं जाने चाहिए, हमें अच्छी क्वालिटी के कलर्स लेने चाहिए, हो सके तो नेचुरल कलर्स से यूज करें. पिचकारी अगर बच्चे खेल रहे हैं तो उसका हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि पिचकारी लगने से चोट लग जाती है. कई बार ऐसे में लोग गुलेल वुलेल भी यूज करते हैं ऐसे
1: जी,
0: में, उससे भी चोट लग जाती है. तो इन सब चीजों से चोट लग सकती है.
1: और यदि कलर जाता है तो क्या उसे पहले थोड़ा धो लें?
0: जी बिल्कुल, कलर अगर जाता है तो उसको अच्छी तरह से आप वॉश करें. जब भी हमें कोई इस तरह का कुछ आंख में गिरता है और हमें ये पता है कि आंख में कट टाइप की चोट नहीं लगी है
1: जी,
0: तो हमें आंख को बिल्कुल धो लेना चाहिए. और कलर जाता है तो भी आंख को अच्छे से धोना चाहिए, 15 से 20 मिनट आंख को साफ हाथों से पलकों को खोल के अच्छे से धोना चाहिए जिससे कलर निकल जाए और उसका कम से कम रिएक्शन हो, कम से कम एलर्जी हो आंख में.
1: जी, और फिर जैसा हो डॉक्टर से संपर्क करें.
0: जी बिल्कुल
1: जी. अपने श्रोताओं को यहाँ एक बार फिर से बता दूं, स्वजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत आप सुन रहे हैं, और इस कार्यक्रम में आज विषय है आंखों की चोट, बचाव और उपचार, और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर विदुषी पांडे. हेलो.
2: हेलो, नमस्कार मैडम.
1: नमस्कार,
2: मैं ये पूछना चाहता हूँ कि
1: पहले अपना नाम बताइए.
2: मैं राजूलाल मेहर, गांव बिलवाड़ा, जिला झालावाड़.
1: जी.
2: मेरे आंखों में सूजन है और आंखें जलन करती है.
1: जी.
2: क्या कारण है?
1: जी डॉक्टर साहब,
0: आंखों में सूजन कितनी है ये तो देख के पता चलेगा, पर आंखों में जलन तो कई चीजों से हो सकती है. ड्राइनेस एक बहुत कॉमन कारण है, आंख में कुछ एलर्जी हो रही है क्रॉनिक, उसके कारण भी आपको जलन लग सकती है. और अगर साथ में सूजन भी है हल्की फुल्की है तो वो भी एलर्जी के कारण हो सकती है, पर अगर ज्यादा ही सूजन है तो फिर आपको कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है. और ये चीज तो खैर देख के ही पता चलेगा, कॉमन कारण मैंने आपको बताया है ड्राइनेस, एलर्जी,
2: सूजन है मामूली,
0: तो वो एलर्जी के कारण भी होती है. अगर आप मान लीजिए कुछ बाहर आपका आउटडोर ज्यादा काम है घर से बाहर, और आप धूल मट्टी हवा में ज्यादा घूमने का काम है, तो लगातार एलर्जी बने रहने के कारण भी आंखों में खुजली होती है, जलन होती है, पानी आता है, सूजन होती है. तो आप थोड़ा बहुत तो बचाव रखें, आंख को चश्मे से या गॉगल्स से सनग्लासेस से कवर करके रखें, और अगर हल्की फुल्की प्रॉब्लम है थोड़ा बर्फ का सिकाई करके भी देख सकते हैं और फिर डॉक्टर को दिखा लें.
2: ठीक है
1: जी, धन्यवाद कॉल किया आपने. जी डॉक्टर साहब, स्वेलिंग सिर्फ एक ये नहीं, अन्य जैसे प्रॉब्लम यदि शरीर में हो तब भी स्वेलिंग आ सकती है आंखों में कई
0: जी,
1: बार.
0: हाँ, जैसे किडनी वगैरह के प्रॉब्लम्स होती हैं,
1: ब्लड प्रेशर
0: की,
1: है.
0: हाँ, जब भी जैसे कई सारी ऐसी बीमारियां किडनी की, या अगर ब्लड प्रेशर जब बहुत हाई होता है तो फिर इस तरह के डायरेक्टली ब्लड प्रेशर से सूजन नहीं, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई है उसका किडनी पे असर पड़ रहा है, हार्ट पे असर पड़ रहा है, और जैसे लोगों के पैरों में सूजन आती है ऐसे प्रॉब्लम्स में, ऐसे ही वो सूजन आंख में भी आ सकती है, क्योंकि आंख के टिश्यूज बहुत लूज हैं. आप सुबह सो के उठते हैं तो थोड़ी सूजी लगती है,
1: सुबह अक्सर आंखें सूजी हुई लगती है तो कॉमन है.
0: हाँ, लेकिन हाँ, अगर ज्यादा सूजन होती है, जो नॉर्मल है वो तो थोड़ा हल्का सा आपको लगती है सो रहे थे और फिर वो उठने के आधे घंटे में ठीक भी हो जाती है, लेकिन अगर ज्यादा रहती है तो वो शरीर की बीमारियों के कारण भी हो सकता है.
1: जी, जी.
0: और अगर बहुत ज्यादा है तो
1: जी.
0: और ऐसे में आपको हो सकता है कि पैरों में भी सूजन आती हो.

0: क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो पैरों में भी सूजन आएगी साथ
1: जी जी। आपने जिक्र किया था खेती में काम करते दौरान भी आंख में इंजरी हो सकती है, तो क्या केमिकल ही एक वजह है या और भी कोई कारण होता है खेती के दौरान इंजरी का?
0: नहीं, केमिकल हो सकता है, जैसे अगर मान लीजिए आप पेस्टिसाइड्स छिड़क रहे हैं वो कभी कभी जा सकता है, लेकिन जो ज्यादा कॉमन कारण है वो है ये टहनी तिनका, कोई पत्ते का एकदम से किनारा लग गया
1: जी।
0: हमारे परिवेश में आंकड़े का रस एक ऐसी चीज है जो बहुत एकदम से चोट, मतलब आंकड़े का रस बहुत जहरीला एक तरह से आंख के लिए, बहुत रिएक्शन करता है
1: जी जी।
0: तो अगर आप आंकड़े का फूल काट रहे हैं, स्टेम काट रहे हैं, उसका जो रस निकलता है उससे आपने आंख चूली, तो उससे रिएक्शन हो सकता है। और जैसा मैंने बताया क्योंकि खेती में गाय वगैरह का इस्तेमाल होता है, गाय बैल का, तो उनके कारण चोट लग सकती है। और खेती के माहौल में और भी जानवर होते हैं, जैसे आपने जानवरों की चोट का जिक्र किया था, और इसमें मैं एक बात और बोलूं, अगर आपको कुत्ते से बिल्ली से कभी चोट लगती है तो आपको रेबीज के टीके की भी जरूरत पड़ सकती है, कुत्ते वगैरह के चोट
1: जी,
0: या जो भी है जानवरों से, तो वो आपको, ये खेती में ये मेन कारण है। ज्यादातर जो खेती में चोट लगती है वो या तो गाय के सींग के कारण या तिनके और इस तरह के प्लांट मटेरियल के कारण
1: जी। डॉक्टर, अभी आपने जिक्र किया था जैसे यदि चूने से चोट आती है तो इमीडिएटली उसे धोना है और डॉक्टर के पास जाना है
0: जी।
1: तो जो आप ये आंकड़े के रस का जिक्र कर रहे हैं, क्या सेम सिचुएशन इसमें है?
0: जी, आंकड़े के रस को भी आपको धो लेना चाहिए, क्योंकि इससे मेनली एलर्जी होती है आंख में, तो आप अच्छी तरह से उसको धो लें और 15 से 20 मिनट तक धोते रहे बहते लगातार पानी से, और आंख को अच्छे से खोल के धोएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वो निकल जाए और आंख के कॉन्टेक्ट में कम रहे, और उसके बाद फिर डॉक्टर को दिखा लें
1: जी। इसके अलावा और किस तरह की चोटें हैं जो रेयर होती हैं? होती तो हैं पर रेयर हैं, जिनके बारे में आप ज्यादा जानती हैं वो बताइए।
0: जैसे हमारे उसमें अगर आप देखें तो एक चोट होती है जो छोटे बेबीज में मैं अक्सर देखती हूँ, क्योंकि मैं ओक्युलोप्लास्टी मैंने किया हुआ है, तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है और ब्लाउज के हुक से छोटे बेबी को चोट लग जाती है। ये इंडिया में पेक्यूलरली कॉमन है, बाकी कंट्रीज में नहीं देखा जाता। और उसमें पलक कटती है नॉर्मली, क्योंकि जिस जो बहुत कमजोर एरिया होता है वहां पे कट जाती है, और उसमें अक्सर आंसू की नली भी कट जाती है बच्चे
1: जी जी।
0: तो वो एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम भी है और आगे चल के उसमें पानी भी आ सकता है। ये एक इंजरी है जो इंडिया में कॉमन है, हम लोग इसको नहीं समझते, एक नॉर्मल डेली सी एक्टिविटी है कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है और ब्लाउज हुक से इंजरी हो गई। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि चोट हमारे माहौल में कई तरह से, जैसे फेस्टिवल से रिलेटेड काफी सारी चोटें होती हैं, तो उसमें ट्यूबलाइट वगैरह फूट गई, इस तरह की चोट लग गई। और बाकी देखने को तो मैंने जैसे बताया था हर तरह की चोट देखी है, कोई चम्मच से चोट लगी, एक बार मैंने देखा किसी को जो रेनॉल्ड्स पेन का ढक्कन होता है जो थोड़ा सा बाहर निकला होता है, वो पलक और आंख के बीच में बिल्कुल फंसा हुआ था
1: जी।
0: कई बार, अब एक आध बार ऐसे भी आए कि छोटा बच्चा है उसको कैंची चली गई और वो कैंची साथ में लेके आए हैं, तो ये सब चीजें सुनने में बहुत विभत्स लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर तरह की चोट लग सकती है, तो ये चोटें हैं
1: जी। अब हमारा जैसा विषय है आंखों की चोट, बचाव और उपचार, उपचार का आपने बताया ही, बचाव किस तरह से किया जाए यदि इस तरह की कोई समस्या आती है? तो कुछ में तो आपने बताया कि पानी से धोना है अच्छे से, और कुछ में ऐसा है कि उसे नहीं छेड़ना है, सीधे डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा हमारी आंख स्वस्थ बनी रहे, किसी तरह की कोई इंजरी ही नहीं हो, इसके लिए कुछ टिप्स दीजिए हमारे श्रोताओं को।
0: देखिए, अब आंख की इंजरी बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है, क्योंकि जैसा ये क्या है, ज्यादातर ना यंग लड़कों में होती है, वो ही लोग ज्यादा एक्टिव हैं जो काम करते हैं, काम करते वक्त उनको चोट लग जाती है, तो उसका एक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। एक यंग लड़का जो जिसकी पूरी जिंदगी है, जो कमाता है, उसको चोट लग जाए, विजन चला जाए। अब
1: प्राइमरी, आपको रोकते हुए कॉलर लें
0: जी। जरूर जरूर।
1: हेलो
2: हेलो जी, नमस्कार
1: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: आपको मेरा नमस्कार, मैं सत्यनारायण बोलता हूँ, गांव बोरा जेडी से
1: जी। सत्यनारायण पोर्टर जी, जी सवाल पूछे।
2: मेरा सवाल है कि जैसा कि मैं धूप में निकलता हूँ तो आंखों में आंसू आते हैं, और दूसरा प्रश्न है कि जैसा कभी कभी रसोई में काम करते हो तो महिलाएं या कोई हलवाई लोग जैसे तेल के छींटे आंखों में चले जाए तो क्या करना चाहिए? गर्म तेल अगर आंखों में चला जाए
1: जी। सुनिए डॉक्टर साहब की बात।
0: जी, धूप में निकलते टाइम आंसू आते हैं, तो अगेन जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, कॉमन कारण तो एक एलर्जी है और एक ड्राइनेस है, और इनमें कुछ तो आपको थोड़ा सा आप चश्मा वगैरह लगा के रखेंगे, हवा धूल मट्टी धूप से थोड़ा सा गॉगल से बचाव रखेंगे, कुछ बर्फ़ को रुमाल में लपेट के बर्फ़ की ठंडी सेक कर लेंगे गर्मी के मौसम में, तो आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा।

0: ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखा लें। कुकिंग ऑयल का आपने अच्छा पूछा, कुकिंग ऑयल गरम तेल के छींटे कई बार चले जाते हैं आँख में, और उसमें जैसा कि किसी भी कोई लिक्विड अगर आँख में जाता है तो सबसे पहले उसको आप धो लें अच्छे से, और उसके बाद भी अगर तकलीफ बनी रहती है तो फिर डॉक्टर को दिखा लें, पर सबसे पहले उसको धो लें, जिससे कि उसका जो एक तो उसकी गर्माहट की वजह से डैमेज होता है तो वो अब आँख से बाहर निकल जाएगा और कम से कम कॉन्टैक्ट में रहेगा, और फिर तुरंत उसका पानी से आप उसके टेम्परेचर को भी कंट्रोल करेंगे तो डैमेज कम होगा।
1: जी सत्यनारायण जी, धन्यवाद कॉल किया आपने। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे बचाव के बारे में, तो जो यंग लड़के हैं उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है और उनका विजन न लूज हो जाए, इसके बारे में आप बता रहे थे।
0: तो कुछ तो जैसे ये जो जहां भी हम काम करते हैं कुछ बेसिक सावधानियां बरतनी जरूरी है, जैसे अभी भी हमारे यहाँ कॉमन है कि जो लोग इस तरह के काम करते हैं, जिस तबके से वो आते हैं, कार्पेंट्री का काम है, मेटल का काम है, वेल्डिंग का काम है, वो फुली प्रोटेक्शन नहीं यूज करते, ये नहीं होना चाहिए। और हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग इन लोगों को काम पे रखते हैं, उनको भी अपनी इस बारे में जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि आप किसी की आंख के साथ मतलब आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो जो प्रोटेक्टिव आई वेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें कांच का नहीं, कांच का चश्मा तो फूट ही जाएगा। तो प्लास्टिक के पॉलीकार्बोनेट के गॉगल्स आते हैं, कोई महंगे भी नहीं होते और ये बहुत फ्रीली उपलब्ध है। सेफ्टी प्रोटेक्टिव आई वेयर जो साइड से भी बंद हो, जिससे कि कुछ टुकड़ा आंख में जाने का रिस्क कम से कम हो जाए। तो प्रोटेक्टिव गॉगल्स जो, और ये सर्टिफाइड आते हैं, मतलब जो कुछ ISI मार्का वगैरह, वो आप अच्छी क्वालिटी के प्रोटेक्टिव आई वेयर जरूर यूज करें
1: जी।
0: अच्छे मटेरियल के, पॉलीकार्बोनेट वगैरह के, जो कि इम्पैक्ट से एकदम से फूटते नहीं है
1: जी, जी।
0: और वो साइड से भी बंद हो, जिससे चोटों का रिस्क कम हो, पहला तो ये है। दूसरा, आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें एक बेसिक सावधानियां बरतना जरूरी है
1: जी।
0: आप घर में काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनके उनके आसपास इस तरह की चीजें ना रखें जिसको कि, जैसे हम सब समझते हैं कि छोटे बच्चे अगर घर में होते हैं तो हम बिजली के जो सॉकेट्स वगैरह हैं उनको या तो कवर कर देते हैं या ऊपर रख देते हैं, तो इसी तरह से नुकीली चीजें और ये सब चीजें उनके पास ना रखें
1: जी।
0: कोई दिवाली वगैरह पे खासतौर से जो प्रिकॉशंस बताए जाते हैं उनको फॉलो करें
1: जी।
0: और अगर छोटे, जैसे मैंने आपको बताया तीन तरह के अपन मान सकते हैं, एक छोटे जिसमें कि कुछ केमिकल आंख में गिर गया उसमें आपको धोना है, दूसरी छोटे जिसमें कोई आंख में नुकीली चीज गई, कट गई, उसमें आपको ज्यादा कुछ छेड़ना नहीं है, और तीसरी चीज चोट हो सकती है ब्लंट ट्रॉमा, जिसमें जैसे बॉल लग गई और आंख सूज गई, उसमें आप थोड़ा सा बर्फ लगा सकते हैं जिससे कि सूजन कम हो जाए। जैसे कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि नील पड़ गया, मतलब जैसे बॉडी में भी अपने कहीं खून इकट्ठा होता है, अपन बर्फ लगाते हैं, तो अगर कोई ब्लंट ऐसी चीज लग गई है बॉल टाइप की, तो आप बर्फ लगा सकते हैं। और जहां कहीं नुकीली कटवट है वहां पे आप ज्यादा छेड़खानी ना करें, और कोई कीड़ा वीड़ा गिरता है तो रब नहीं करें, क्योंकि आप उससे प्रॉब्लम को और बढ़ाते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि किस तरह की समस्या आती है चोट के द्वारा, उनका समाधान कैसे हो, बचाव कैसे हो। नॉर्मली जैसे आज की जनरेशन है, बहुत जल्दी चश्मे लग रहे हैं बच्चों को, है ना, तो उसका क्या कारण है, या हम जैसे शुरू से माएं किस तरह का ध्यान रखें, कैसी डाइट हो बच्चों के लिए, इसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालिए।
0: देखिए, बच्चों को चश्मे लग रहे हैं ये फैक्ट है, और कुछ जल्दी पकड़ में आ रहे हैं ये भी फैक्ट है। कुछ चीजें ऑब्वियसली परिवेश बदला है, माहौल बदला है। आज से 50 साल पहले बच्चे बाहर ज्यादा खेलते थे, आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा करते थे, आज घर में रहते हैं, स्क्रीन गैजेट्स देखते हैं, इनमें से कुछ चीजें अपन पूरी तरह से बदल नहीं सकते। और इसलिए मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी कि अगर चश्मा हो जाता है तो बहुत ज्यादा लेके उसको घबराए नहीं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है, कई बार कि कोई छोटा बच्चा आता है उसको चश्मा लगता है, बच्चे से ज्यादा उसके माँ बाप इतने परेशान होते हैं कि मतलब बच्चे को भी लगेगा कि अरे मेरे साथ क्या हो गया। तो उसको थोड़ा नॉर्मली लें, उसके उसको ऐसा ना फील कराएं कि बहुत बड़ी बात हो गई है। बाकी जो नॉर्मल कुछ हेल्थ टिप्स हैं वो फॉलो करना जरूरी है, जैसे कि आप अच्छी डाइट लें, फल सब्जी खाएं, विटामिन्स लें, और एक बहुत जरूरी चीज है कि जितना संभव हो सके बच्चे सारा दिन गैजेट्स पे ना रहें, आउटडोर एक्टिविटी करें, क्योंकि डिफरेंट स्टडीज में ये पाया गया है कि जैसे जो साउथ ईस्ट एशियन देश है, सिंगापुर वगैरह, जहाँ पे चश्मे ऑलमोस्ट 40% है बच्चों में, वो रिलेटेड है कुछ हद तक क्लोज वर्क से। तो ऐसा तो डायरेक्ट तो नहीं है कि आप फोन देखते रहेंगे तो चश्मा आ जाएगा और फोन देखना बंद कर देंगे तो चश्मा हट जाएगा, लेकिन इन चीजों से फर्क पड़ता है
1: जी।
0: और आपको थोड़ा बाहर खेल कूद में रहेंगे, आपकी आंखें थोड़ा दूर देखेंगी तो चश्मे का प्रोग्रेशन भी कम होगा। फिर कुछ ड्रॉप्स वगैरह आती हैं जिससे कि चश्मे के नंबर जो उम्र के साथ बढ़ते हैं वो थोड़ा कम बढ़े, ये सब चीज आप डॉक्टर से कंसल्टेशन में लें, बाकी अच्छा फल सब्जी वगैरह खाएं। और फिर भी अगर किसी को चश्मा आता है तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, अब

0: एक कॉमन हो गया है, बच्चे
1: जी
0: को
1: जी
0: चश्मा लगा के अच्छा
1: और
0: काम करने दें, अपना विकास
1: शुरुआती
0: करने
1: जब
0: दें।
1: दौर में बच्चा शिशु होता है उस टाइम विटामिन ए की ड्रॉप्स दी जाती हैं।
0: सबको जरूरी नहीं है,
1: अच्छा।
0: वो किसी किसी को जरूरत होती है तो देते हैं, और मतलब वो जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में है वो तो देते ही हैं।
1: जी जी जी,
0: बाकी उसके ओवर एंड अबव कुछ सबको देने की जरूरत नहीं है।
1: जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें और श्रोताओं को दी। समय निकालकर आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और श्रोताओं से जुड़ने के लिए।
1: श्रोताओं, आपको बता दें इस कार्यक्रम का संयोजन किया तेजराम मीना ने और प्रस्तुति थी राजेश महावर की। कंट्रोल रूम से हमारे सहयोगी रहे विवेक मीना और घनेन्द्र शर्मा जी, और ये कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया अलका ने। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सजी फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 9 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: लगभग 10,000 मामलों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक की।
1: सेवन शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे
0: विभागीय परीक्षाएं।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री।
0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित किए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों और शिकायतों का निस्तारण किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार इन शिविरों में पट्टा नामांतरण और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। कल आयोजित शिविरों में पट्टा और भूमि से जुड़े 1,173 मामलों तथा नामांतरण और भू उपयोग परिवर्तन के 1,491 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा जनसेवाओं से जुड़ी 6,000 से अधिक शिकायतों का भी एक ही दिन में समाधान हुआ। इनमें जन्म मृत्यु और विवाह पंजीयन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत और आवारा पशुओं से संबंधित शिकायतें मुख्य रूप से शामिल हैं। पाली जिले में आयोजित एक शिविर में पशुपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि ये शिविर नागरिक सेवाओं को पारदर्शी, त्वरित और सुगम बनाने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की।
2: अभी जैसे सरकार ने इस कैंप में बहुत सारी छूट दी है, पट्टे बनाने में भी कृषि भूमि के पट्टे बनाने, 69A के पट्टे जो पट्टे हैं उनके बनाने में भी छूट दी है, 50% से ज्यादा छूट है अभी दी है। इससे क्या होगा कि पट्टों की राशि आधी लगेगी, इसलिए इसमें कैंपों में आवेदन करके आप ज्यादा से ज्यादा पट्टे भी बनाने की कार्रवाई करें। जैसे मकान की परमिशन में भी बहुत सारी छूट दी है।
0: राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक कर दी है। पहले ये खरीद 10 जून तक की जानी थी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार ऐसे सभी पंजीकृत किसान जिनका गेहूं अभी तक नहीं बिक पाया है, वे बढ़ी हुई तारीख तक अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। विभाग ने गेहूं खरीद का लक्ष्य भी 23,50,000 से बढ़ाकर 28,50,000 मीट्रिक टन कर दिया है। इसमें अब तक 3,00,000 से अधिक किसानों से 25,90,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राष्ट्र प्रथम की भावना और समाज के प्रति संवेदन

0: शीलता ही एक सच्चे नागरिक की सबसे बड़ी पहचान होती है। श्री शर्मा ने जयपुर में फिल्म भारत भाग्य विधाता की विशेष स्क्रीनिंग के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये फिल्म देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले गुमनाम नायकों की प्रेरक गाथा है। इसमें 26/11 आतंकी हमले और कोविड महामारी के दौरान चिकित्सकों, नर्सों और सुरक्षाकर्मियों के त्याग, साहस और सेवा भाव को प्रमुखता से दिखाया गया है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू को जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य राजस्थान को वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर शीर्ष स्थान दिलाना है। उपमुख्यमंत्री ने सचिवालय में पर्यटन, कला संस्कृति और पुरातत्व विभाग की 15 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने पुष्कर विकास परियोजना, महाराणा प्रताप सर्किट, आमेर मास्टर प्लान, झुंझुनू वॉर म्यूजियम, अल्बर्ट हॉल के विकास और शिल्पग्राम पुनर्विकास जैसी परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने का जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। रेलवे बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से पूरी तरह ऑनलाइन होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की चयन प्रक्रिया की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सटीक और तेज बनाने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT मोड में कराई जाएगी। इसके साथ ही भविष्य में टैबलेट आधारित परीक्षाओं का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। रेल मंत्री ने चयन प्रक्रिया में तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि खाली पदों की जानकारी देने के लिए रेलवे द्वारा जारी किए गए वार्षिक भर्ती कैलेंडर को भी उम्मीदवारों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक के साथ नीट की पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। नीट की ये परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव ने कहा कि परीक्षा में बाधा डालने या इसके साथ छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन परीक्षा कराने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले श्री सोमनाथन ने 1 जून को केंद्र सरकार के सचिवों और 4 जून को राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ भी बैठक की थी। इन बैठकों का उद्देश्य परीक्षा में समन्वय और विश्वसनीयता बनाए रखना है। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार नीट परीक्षा की अवधि में बदलाव किया है। अब इस परीक्षा की अवधि 3 घंटे से बढ़ाकर 3.25 घंटे कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। ये बात उन्होंने कल हैदराबाद में DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर के उद्घाटन के दौरान कही। श्री सिंह ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपात्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भारत अब देश विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने की नीति पर काम कर रहा है। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। राजधानी जयपुर में देर रात से शुरू हुआ बरसात का दौर रुक रुक कर सुबह तक जारी है। पाली में अल सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सोजत, रानी, राणावास सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बरसात हुई। कोटपुतली बहरोड में देर रात तक बरसात होती रही, इससे निचले इलाकों में पानी भर गया। बारा के शाहबाद कस्बे में कल 2 घंटे तक बरसात हुई। नागौर में देर रात तेज अंधड़ चला और बारिश हुई। बरसात से मौसम में ठंडक घुल गई है। हनुमानगढ़ में कई जगह ओले भी गिरे, साथ ही अंधड़ के कारण बिजली के खंभे उखड़ गए। अधिक ब्यौरा दे रही हैं हमारी हनुमानगढ़ संवाददाता।
1: हनुमानगढ़ जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में बीते देर शाम तेज अंधड़ के साथ आसमान

0: में घने बादल छा गए और मेघ गर्जन के साथ कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कई ग्रामीण व शहरी इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर बिजली के पोल उखड़ गए और विशालकाय पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए। पेड़ गिरने के कारण कई प्रमुख मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गए। हालांकि इस मौसमी बदलाव और बारिश के कारण पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और झुलसाने वाली लू से आम जन को राहत मिली है। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमान।
1: मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों के लिए प्रदेश के 16 शहरों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि राज्य के कुछ पश्चिमी हिस्सों को गर्मी से अब भी निजात नहीं मिली है। वहां उमस भरी गर्मी जनजीवन को प्रभावित कर रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के तहत लगाए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक की। रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से कंप्यूटर आधारित होंगी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। हनुमानगढ़ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 102 और 103.6 MHz, साथ ही मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। सुबह के 9:10 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये गाना। फिल्म का नाम है काई पौच है। आवाजें हैं अमित त्रिवेदी और के मोहन की। गीत रचना स्वानंद किरकिरे की और संगीत अमित त्रिवेदी का।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। आइए सुनवाते हैं आपको अगला गाना। फिल्म का नाम है मेट्रो, आवाज है सोहम की, गीत रचना सैयद कादरी और संदीप श्रीवास्तव की और संगीत प्रीतम का।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं अपने चंबल चैनल पर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म खट्टा मीठा से ये गाना, आवाजें हैं के और सुनिधि चौहान की, इरशाद कामिल का गीत है और प्रीतम का संगीत।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं अपने चंबल चैनल पर। और आइए अब सुनवाते हैं आपको अगला गाना। फिल्म का नाम है तेरी मेरी कहानी। आवाज है वाजिद की, गीत रचना प्रसून जोशी की और संगीत साजिद वाजिद का।

तेरी मेरी कहानी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से FM 102 और 103.6 MHz पर। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। अब बहनें सुनेंगी उनका अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा घणी मजरसा सुबह की, राम राम। सखियों, कैसी हैं आप? स्वागत करती हूं आप सभी सखियों का आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में। और महिला जगत के सफर में आज आपके साथ है आपकी रेडियो सखी सुनीता जैन। मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, यदि हम वर्तमान की बात करें कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबने तरक्की तो बहुत की है, गगनचुंबी इमारतें बना ली, गाड़ियां ले ली और तकनीक की दुनिया में भी हम काफी आगे बढ़ गए। लेकिन इन सब के बीच हम कहीं ना कहीं खुद को पीछे छोड़ आए हैं। हमारा शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है और मानसिक तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में एक ही मार्ग है जो हमें पूर्ण स्वास्थ्य दे सकता है और वो है हमें प्रकृति की ओर लौटना। जी हाँ सखियों, आज की हमारी चर्चा का विषय है प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए जुड़े प्रकृति से। सखियों, प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी उपचार पद्धति है जो आपको पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के माध्यम से प्रकृति से जोड़ती है और हमारा शरीर भी इन पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पद्धति शरीर की स्वयं उपचार करने की क्षमता को बढ़ाकर बीमारियों का मूल कारण ठीक करती है। यह चिकित्सा पद्धति प्रकृति से जुड़ने के लिए कई तरह के तरीके अपनाती है। सखियों, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में पंच तत्वों का उपयोग किया जाता है, वो किस तरह? जैसे जल तत्व, हाइड्रोथेरेपी, ठंडी गर्म सिकाई और कटी स्नान से रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं। पृथ्वी तत्व, मिट्टी के लेप या गीली मिट्टी की पट्टी का उपयोग करके पेट की गर्मी और पाचन समस्याओं को दूर किया जाता है। अग्नि तत्व, सूर्य की किरणों के संपर्क में आना और संतुलित प्राकृतिक आहार जैसे कच्ची सब्जियां, फल और अंकुरित अनाज इसमें आते हैं। आकाश तत्व, उपवास के जरिए पाचन तंत्र को आराम देकर शरीर को अंदर से साफ किया जाता है। सखियों, प्राकृतिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत की यदि हम बात करें तो प्राकृतिक चिकित्सा यह मानती है कि शरीर में खुद को ठीक करने की अद्भुत शक्ति होती है, यानी प्रकृति ही वैद्य है। शरीर में विजातीय द्रव्यों का जमा होना ही बीमारियों का मुख्य कारण है। इस पद्धति में दवा नहीं, जीवन शैली का अहम रोल है। इसमें दवाओं के बजाय योग, ध्यान, प्राकृतिक आहार और नियमित दिनचर्या पर पूरा जोर दिया जाता है। सखियों, आज हम जरा सी सर्दी खांसी होने पर भी तुरंत दवाइयां खा लेते हैं। ये दवाइयां बीमारी को दबाती है, उसे जड़ से खत्म नहीं करती। प्राकृतिक चिकित्सा हमें सिखाती है कि भोजन ही हमारी औषधि है। अगर हम पैकेट बंद और जंक फूड को छोड़कर ताजे फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज और मोटे अनाज को अपनी थाली में जगह दे दें तो आधी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। सखियों, प्रकृति से जुड़ने का मतलब है

आप सुबह उठकर थोड़ी देर धूप पर नंगे पैर चलें, पौधों को पानी दें, कुछ पल शांत होकर उगते हुए सूरज को देखें, मेडिटेशन करें और साथ ही ये संगीत भी सुनें जो कि ये भी प्रकृति प्रदत्त हमें मिला हुआ है। हवाओं में संगीत है, पानी की तरंगों में संगीत है और चारों ओर संगीत ही संगीत है।

0: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सखियों, बच्चों की परीक्षाएं हो चुकी हैं और अब उनके पास है खाली समय और बहुत सारी ऊर्जा। ऐसे में बच्चे अपनी छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें, आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती प्रीति अग्रवाल जी। आप कोटा स्कूल ऑफ ड्रामा की अध्यक्षा हैं, साथ ही आप कला जगत से जुड़ी हुई हैं। कोटा में कई वर्षों से नृत्य का प्रशिक्षण दे रही हैं, साथ ही आप स्वयं एक बहुत अच्छी गायिका है। तो प्रीति अग्रवाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम महिला जगत में बहुत बहुत स्वागत।
4: जी धन्यवाद कोटा आकाशवाणी को, जिन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया।
2: प्रीति जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में उनके माता पिता की भूमिका क्या हो सकती है।
4: जी बहुत अच्छा सवाल है मैम आपका, कि बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। और बच्चे तो कितने एक्टिव होते हैं आप जानते ही हैं
2: जी।
4: तो उसके लिए माता पिता की बहुत अहम भूमिका होती है। जैसे कि माता पिता ये जान सकते हैं कि बच्चे किस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, किस चीज में उनकी रुचि है, क्या उन्हें अच्छा लगता है। तो इस चीज को जानने के बाद उन्हें एक फील्ड की तरफ जिसमें वो जाना चाहते हैं उसमें उनको जाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। फिर चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, स्विमिंग हो, पेंटिंग हो, बच्चों को जो भी अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा होती है।
2: बिल्कुल सही कह रही है। और इस खाली समय में एक जो टाइम टेबल हम कह सकते हैं कि एक समय सारिणी बच्चों को बनाकर दे दी जाए कि किस वक्त वो क्या कार्य करें।
4: जी
2: क्योंकि माँ बाप तो सबसे ज्यादा करीब होते हैं बच्चों के, तो वो जानते हैं कि बच्चे किस समय क्या करना पसंद करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी माता पिता की भूमिका हो सकती
4: है। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी इस बात से।
2: और प्रीति जी, हम जानते हैं कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, उनके सोचने का तरीका, कार्य करने का ढंग, ऐसे में बच्चे का रुझान किस क्षेत्र में है, इस बात का पता हम कैसे लगा सकते हैं।
4: देखिए मैम, इसका पता लगाना वैसे तो बहुत मुश्किल नहीं है, अगर सही तरीके से इस चीज पर थोड़ा गौर किया जाए तो ये बहुत आसान है। जैसे ईश्वर ने हम सबको बनाया है, दिखने में हम सब एक जैसे होते, लेकिन हम सबकी क्षमता, कार्य करने की क्षमता, क्वालिटी अलग अलग होती है
2: जी,
4: है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चे का रुझान, उसकी रुचियों को, उसके व्यवहार को, उसकी गतिविधियों को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि अगर बच्चा किसी काम को करने से बहुत खुश हो रहा है, जैसे कि उसको म्यूजिक सुनना पसंद है, किसी को गार्डनिंग करना पसंद है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, अगर उसको उसमें करने में आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, उसमें टाइम ज्यादा दे रहा है, तो इसको हम पहचान सकते हैं कि वो किस एक्टिविटी में ज्यादा रुचि ले रहा है, तो उसको उसी क्षेत्र में हम डाल सकते हैं, ताकि उसका जो आने वाला समय है वो उस भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो, उसके टैलेंट को पहचान कर सही दिशा आगे बढ़ने में प्रेरित कर सकते हैं।
2: जी मैम। प्रीति जी, जब बच्चे का रुझान पता चल गया तो किस तरह उनकी रुचियों में उनको बढ़ावा हमें देना चाहिए।
4: देखिए मैम, अगर हम ये जान जाते हैं कि बच्चा हमारा किस फील्ड में जाना चाह रहा है, और एक्चुअली होता ये है कि शुरू से ना बच्चे को पता होता है ना माता पिता को पता होता है कि ये किस फील्ड में जाएगा, क्या बनेगा
2: जी।
4: लेकिन इसको जानने के लिए जैसे हम उसे अलग अलग एक्टिविटी में डालते हैं तो हमें पता चलता है कि ये क्या कर रहा है
2: जी।
4: ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण भूमिका है माता पिता की, कि वो उस चीज पे फोकस करें, जो कि आजकल का बहुत जरूरी टॉपिक है ये बच्चों से रिलेटेड
2: जी।
4: तो जब हम ये जानते हैं, जान लेते हैं कि बच्चे का रुझान किस उसमें जा रहा है, किस काम को करने में ज्यादा उसे खुशी मिल रही है, तो हमें उसे एक सही दिशा की ओर ले जाना चाहिए। माता पिता हो चाहे शिक्षक हो, उन्हें चाहिए कि वो बच्चे को उस क्षेत्र में अधिक से अधिक अभ्यास करने का अवसर दें जिसमें उसका मन लगता है
2: जी।
4: उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उन पर कोई दबाव डालना चाहिए। जो उनका मन है कि मुझे भाई सिंगिंग में ही जाना है, और पेरेंट्स मना करें कि जी नहीं, ये आपके लिए ठीक नहीं है, आप ये पढ़ाई करो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए
2: जी।
4: जिसमें रुझान है उसमें उनको प्रेरित करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए।
2: माता पिता ऐसे अवसर उनको उपलब्ध कराएं जिससे कि वो अपने रुझान है, अपनी रुचि को वो आगे बढ़ा सकें।
4: आगे बढ़ा सकते हैं जी
2: जी। प्रीति जी, कुछ विधाएं ऐसी भी है जिनमें पारंगत होकर कामयाबी मिलती है, तो क्या कुछ है ऐसी विधाएं?
4: जी हाँ मैम, आजकल तो इस चीज का बहुत ज्यादा है काम, की बच्चों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जिस चीज में वो जाना चाहें वो जा सकते हैं, बट उनको क्या है कि एक सही दिशा और एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, जो सबसे पहले स्टार्टिंग घर से होती है, स्कूल से होती है, ये सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। विधाओं की मैं बात करूं तो जैसे कि नृत्य है, संगीत है, अभिनय है, फाइन आर्ट्स है, इस तरह की कई सारी विधाएं हैं जिसमें बच्चे पारंगत होकर के अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं, अपनी एक पहचान बना सकते हैं
2: जी। बच्चे घर पर रहकर अपनी छुट्टियों को कैसे उपयोगी बना सकते हैं?
4: ये बहुत अच्छा सवाल किया है मैम आपने। वैसे

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से।
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें।

0: तो बच्चे पूरा साल बिजी रहते हैं, पूरा टाइम पढ़ाई है, आजकल पढ़ाई का इतना प्रेशर
1: जी मैम,
0: है ना। लेकिन ये जो छुट्टियों का समय होता है ये बड़ा ही स्पेशल होता है बच्चों के लिए देखा जाए तो। ठीक है, थोड़ा बहुत आराम भी जरूरी है, एक इंजॉयमेंट बच्चों को चाहिए होता है कि भाई रिलैक्स करना है ना, कुछ नहीं चाहिए।
1: जी
0: लेकिन ऐसे में होता ये है कि अक्सर बच्चे मोबाइल चलाते हैं
1: जी,
0: जो कि बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन दूर कैसे करें।
1: जी
0: उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि उसका जो सही उपयोग करना है ना, उसके लिए बच्चों को आप एक उनकी जो इंटेंशन है कि वो क्या चाहते हैं ये हमें देखना है। जैसे कि बच्चा बैठा है, कोई बच्चे को ना रीडिंग करना बहुत पसंद होता है
1: जी,
0: अगर उसे रीडिंग करना अच्छा लग रहा है, आपने वॉच कर लिया कि ये रीडिंग कर रहा है, किसी को अच्छा लगता है म्यूजिक सुनना तो वो म्यूजिक ही सुनता मिलेगा, किसी को लगता है डांस करना तो आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी देर में वो रीले बनाते हैं
1: जी,
0: है ना। एक तो ये रीलों का चलन बहुत जबरदस्त है, इससे भी बच्चों को हटाने के लिए, जैसे कि आपने अभी स्टार्टिंग में बताया कि मैं कोटा स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़ी हुई हूँ, मैं वहाँ की अध्यक्ष हूँ, तो हम बच्चों को ये आगे से अवसर दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कि बच्चे सीखें और अपने इस अगर इस दिशा में आगे बढ़ना चाहें तो बिल्कुल उनके लिए वेलकम है। अभी हमने हाल ही में एक कैंप भी लगाया था फ्री ऑफ, बच्चों को सिखाते हैं वहां पर ताकि जैसे वो आगे इस क्षेत्र में बढ़ना चाहें। तो इस तरह के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां बच्चे आगे बढ़कर अपना कार्यक्रम कर सकते हैं जो भी वो चाहें
1: जी।
0: खाली समय का यही है मैडम कि बच्चे अपने हिसाब से तो करें लेकिन उसमें पेरेंट्स उनकी पूरी पूरी भूमिका निभाएं
1: जी,
0: उन्हें घुमाने ले जाएं, कुछ भी हो सकता है उसके लिए
1: जी। गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप अभी बहुत लग रहे हैं मैम, अभी आपने बात की कि आपके कोटा स्कूल ऑफ ड्रामा ने भी समर कैंप लगाया, तो इस तरह के जो समर कैंप ज्वाइन करते हैं बच्चे जाते हैं वहाँ पे, तो उससे क्या फायदा है उनको?
0: जी मैम, समर कैंप जो पहले के टाइम में इतना नहीं इसका क्रेज था, लेकिन अब जहां इतना लोड है बच्चों के माइंड पे कि क्या करना चाहिए, इसको जानने के लिए सबसे अच्छा माध्यम आज के टाइम में समर कैंप से बढ़कर कुछ भी नहीं है
1: जी।
0: क्योंकि वहां एक छत के नीचे आपको तरह तरह की एक्टिविटियां मिलती हैं। जब हम ये पहले से नहीं जानते कि बच्चा क्या करेगा, एक 3 साल का 4 साल का बच्चा क्या करेगा हमें नहीं पता
1: जी,
0: लेकिन जब हम उसे किसी समर कैंप में जहां हमें ठीक लगता है कि उस जगह हम डालते हैं, तो वहां 10 तरह की एक्टिविटियां मिलती हैं। जब बच्चा उस माहौल में जाता है तो उसको 10-15 दिन का जो कैंप रहता है उसमें अपने आप वॉच कर सकती है बच्चा किस चीज में जा रहा है
1: जी।
0: जाएगा वो सब में कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, उसको पता ही नहीं है
1: जी।
0: लेकिन समर कैंप इसलिए अच्छा है मैं मानती हूँ कि वहां पर जैसे बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट आ गया, मुझे ये सीखना है, किसी को पेंटिंग में आ गया, किसी को गिटार बजाना है, किसी को हारमोनियम बजाना है, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटियां होती हैं, तो उसमें अगर आपको समझ आ गया कि बच्चा मेरा इस फील्ड में जा सकता है और अच्छा कर रहा है, 15 दिन में कुछ तो रिजल्ट आता है, तो आप उसको उस फील्ड में आगे लेके जाइए।
1: और छुट्टियों का जो सदुपयोग है वो भी बेहतर ढंग से होता है,
0: बेहतर ढंग से होता है, मोबाइल से बिल्कुल बच्चे हट जाते हैं क्योंकि उनका ध्यान पूरा पूरा अपने आप को ग्रोथ करने में जाता है कि मुझे ये करना है, कुछ उनको उद्देश्य मिल जाता है।
1: कहते हैं ना बच्चे का जो समग्र विकास है, संपूर्ण विकास है, आप कुछ न कुछ अपनी रुचियों में जुड़कर ही हासिल कर सकते हैं
0: जी। बिल्कुल, सबसे अच्छा यही उपाय है।
1: छुट्टियों में बच्चों के लिए बाहर घूमने का क्या महत्व है?
0: जहाँ तक मैम घूमने की बात है वो तो खैर सबको बहुत अच्छा लगता है, आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है, घूमने के नाम से एक मतलब एक रोमांच आ जाता है कि हम घूमने जा रहे हैं। और जहाँ तक मैं बच्चों की बात करूँ तो बिल्कुल उनको घूमने जाना चाहिए पेरेंट्स के साथ। इससे होता ये है कि जैसे कई जगह आप देख रहे हैं कि पेरेंट्स बिजी रहते हैं, बच्चे अपने बिजी रहते हैं, तो टाइम स्पेंड एक साथ नहीं होता।
1: बिल्कुल सही।
0: और एक छुट्टियों का एक मौका ऐसा होता है जहाँ की पूरा परिवार एक साथ होता है, चाहे घूमने नहीं भी जाते, कई लोग तो घर में भी एंजॉय एक साथ करते हैं, बट मतलब अपने सिटी से बाहर ना जाए, सिटी में भी बहुत कुछ होता है, हर सिटी में आजकल घूमने के लिए कुछ ना कुछ प्लेस है
1: जी।
0: तो घूमने जाना तो बहुत मस्त बनता है। उसके साथ क्या होता है ना कि बाहर जाते हैं तो एक ताजी हवा मिलती है जिससे एक पॉजिटिविटी माइंड में क्रिएट होती है, बच्चे खुश होते हैं, पेरेंट्स भी खुश होते हैं
1: और काफी कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि नए लोगों से परिचय, उनके साथ संवाद स्थापित करना।
0: बाहर जाने से ये तो है कि बच्चे बाहर जाते हैं, माहौल देखते हैं कि किससे कैसे बात करनी है, जगहों के बारे में जानते हैं, हर चीज सीखते हैं बच्चा
1: जी। आपका हमने शुरुआत में परिचय दिया है कि आप कला क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, कला जगत में हैं और गायिका भी हैं, तो हम चाहेंगे कि एक गाना आप यहाँ सुना पाए आपकी पसंद
0: जी,
1: का।
0: जी जी बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल ऐसे संगीत जगत से तो मैं समझ लीजिए बाय बर्थ ही है मेरा, एक तरीके से शुरुआत हुई थी तब बहुत छोटी थी मैं, तभी मेरी दादी ढोलक बजाया करती थी
1: जी।
0: समझ लीजिए बहुत, तो मैं आपको 40 साल पुरानी बात बता रही हूँ
1: जी।
0: तो उनकी ढोलक पे मैं कंटिन्यू नृत्य किया करती थी, उसके बाद मैं ही ढोलक बजा करके 2-3 घंटे और गायन भी किया करती थी उस टाइम से।
1: बहुत खूब।
0: उसके बाद अब इस चीज को मैंने अपना प्रोफेशन डाला। अब जैसे अभी आप बच्चों की बात कर रहे हैं तो रुझान मेरा इसमें था
1: जी।
0: उस टाइम के पेरेंट्स में इतना नहीं था कि बच्चे को इसमें डालना है और विशेषकर महिलाओं के लिए तो ऐसा कुछ कभी था ही नहीं,
1: अवसर कम थे
0: लेकिन आज के टाइम में अवसर भी बहुत हैं, सभी पेरेंट्स एक जागरूक

0: है कि हमें बच्चे को आगे बढ़ाना, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो।
1: जी
0: तो बस वही फील्ड मेरा स्टार्ट हुआ और यही मैं बच्चों को सभी को बताती हूँ कि भाई अपने को मजबूत रखो, जो चाहते हो वो मिलता है, करते रहो।
1: जी,
0: जैसे कि मुझे मिला।
1: सुंदर, आपने आपकी बात के माध्यम से संदेश भी दे दिया हमारे सभी सुनने वालों को।
0: जी, मैं आपके सम्मुख एक भजन प्रस्तुत करती हूँ।
1: जी।
0: कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार,

0: बहुत खूब प्रीति जी, ऐसा लग रहा है कि आपको सुनते ही चले जाएं, लेकिन समय की बाध्यता है कि हम किसी और दिन आपसे आपके गायन पर ही एक भेंटवार्ता रखेंगे प्रीति जी। और बहुत ही अच्छा लगा आज आप यहाँ आई, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी बच्चों के बारे में कि किस तरह से वो अपनी छुट्टियों का सदुपयोग कर सकते हैं इसके बारे में दी। चलते चलते आप हमारी सभी सखियों से, श्रोताओं से क्या कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैम, सबसे पहले तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर और इस विषय पर आपसे वार्तालाप करके, क्योंकि जिससे क्या है ना कि पेरेंट्स को और बच्चों को सही दिशा मिले, सही उनको एक सुझाव मिले कि हमें छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करना है। मैं अपनी सभी सखियों से यही कहना चाहूंगी कि वे अपने सपनों को पहचानें, उन्हें पूरा करने के लिए पुरजोर मेहनत करें। हर किसी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की और सही दिशा देने की। इसलिए जो भी कार्य या जो भी एक्टिविटी करना आपको पसंद है उसमें पार्टिसिपेट करें, जिससे क्या होता है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी जो सोच है वो सकारात्मक होती है। और सकारात्मकता हमेशा ही रखनी है आप सभी को, और लगन से अभ्यास करें, कभी हार ना माने, सफलता जरूर मिलेगी।
0: बिल्कुल प्रीति जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने बच्चे अपनी छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें इस विषय पे बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे सभी सुनने वालों को उपलब्ध कराई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद मैम।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, जानकारी की बातों में आपको लिए चलते हैं। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारी दुनिया हमारी उंगलियों पर सिमट गई है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को बेहद आसान बना दिया है। सुबह की गुड मॉर्निंग से लेकर रात के डिनर तक की तस्वीर हम सब कुछ इंटरनेट पर साझा कर रहे हैं। लेकिन सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस चमक दमक भरे डिजिटल दुनिया के पीछे एक बड़ा खतरा भी छुपा है? आज हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर विषय पर, निजी जानकारी साझा करने में सतर्क रहें। उस समय आपको काफी सतर्कता रखने की जरूरत है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज के दौर में यह कहावत हमारे मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पर भी उतनी ही लागू होती है। हमारी निजी जानकारी जैसे हमारा पूरा नाम, घर का पता, जन्म तिथि, आधार नंबर, बैंक खाते की जानकारी, यहाँ तक कि हमारी तस्वीरें और मौजूदा लोकेशन, यह सब हमारी डिजिटल संपत्ति है। जब हम बिना सोचे समझे इन जानकारियों को सोशल मीडिया या किसी अनजान वेबसाइट पर साझा करते हैं तो हम अनजाने में साइबर अपराधियों को अपने घर का दरवाजा खोलने का न्योता दे रहे होते हैं। सखियों, आजकल साइबर ठगी के तरीके बेहद चालाक हो गए हैं, शातिराना हो गए हैं। आपको एक फोन आता है कि आपकी लॉटरी लगी है या आपका बिजली का बिल बकाया है या फिर आपके बैंक खाते को ब्लॉक कर दिया गया है। घबराहट में हम क्या करते हैं, हम उन्हें अपना पता, OTP या पासवर्ड बता देते हैं। याद रखिए, कोई भी प्रतिष्ठित बैंक या सरकारी संस्था आपसे कभी भी फोन पर आपका पासवर्ड, पिन या OTP नहीं मांगती। आपका OTP केवल आप ही के लिए है। इसे किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ साझा न करें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अपनी हर गतिविधि को लाइव अपडेट करने से भी आप बचें। जब आप लिखते हैं कि फैमिली के साथ आप 10 दिनों के लिए शिमला यात्रा पर रवाना, तो आप केवल अपने दोस्तों को नहीं बल्कि चोर उचक्कों को भी यह बता रहे होते हैं कि आपका घर इस समय खाली है। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए हमें कुछ बुनियादी बातों को गांठ बांध लेना चाहिए। मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। अपने सोशल मीडिया और बैंक खातों के लिए हमेशा जटिल पासवर्ड बनाएं जिसमें अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर शामिल हो। अपने सभी जरूरी अकाउंट्स में 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA चालू रखें। इससे सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जुड़ जाती है। अनजान लिंक से दूरी, व्हाट्सएप या SMS पर आने वाले लॉटरी, मुफ्त रिचार्ज या नौकरी के संदिग्ध लिंक्स पर कभी भी आप क्लिक ना करें। गोपनीयता की सेटिंग्स रखें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग को हमेशा ओनली फ्रेंड्स या सीमित रखें ताकि हर अनजान

व्यक्ति आपकी निजी जिंदगी में न झांक सके। सखियों, ये आपको सचेत करने के लिए जानकारी है, सतर्क रहने के लिए जानकारी है। और चलते चलते इतना ही कहूंगी कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपनी निजी जानकारी को अनमोल समझकर उसकी रक्षा करें। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अपनी रेडियो सखी सुनीता जैन को अनुमति, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थी उनका अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 10 बजने को हैं। अब श्रोता सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थामकर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

0: अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि।
1: बहुत जगह है मेरे कमरे में,
0: यही हॉल में सिल लो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा।
1: मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने।
0: कोई जरूरत नहीं है।
1: आप अंदर रखवाती हो या नहीं?
0: नहीं।
1: आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से?
0: तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा,
1: तुम पहले नाश्ता करो।
0: नहीं।
1: अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो।
0: पक्का ना?
1: हाँ पक्का।
0: अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदल कर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी, फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूमकर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे।
1: तुम उसे बता क्यों नहीं देती?
0: क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला।
1: प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती।
0: पर बताना तो पड़ेगा ना?
1: पता नहीं।
0: उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लू।
1: प्रेम?
0: ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है,
1: देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो।
0: मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूंगा।
1: तुम जानते हो मेरी हालत।
0: तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा।
1: मुझे डर लगता है प्रेम।
0: क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए।
1: हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ।
0: प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे।
1: अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा।
0: तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नींद दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू। लव यू टू। प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्म आ जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना, बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों, दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि

आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहां अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली, अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और

मिरानी के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो। हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें? मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी? अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए, और ये भी कि आज अरविंद क्या पहन कर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ, बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो। क्या? मैं कर दूं मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ, मैं कर लूंगी। अच्छा? बुआ ने ज्यादा जोर ना देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो, आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी। किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध दो बेटा। बुआ मुझे खुले बाल पसंद है। अच्छा बाबा जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जवां दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नज़र अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी, और हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की, लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना मिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले, लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा, लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई। तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की

तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही, लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया, लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो, प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो। ये तो खूबसूरत हो तुम, वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो, बस उसे समझा दो कि अगर

और जैसा उसका चेहरा खिला है वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो, ये तो खूबसूरत हो तुम। वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो, बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे, पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई, लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी, लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से

शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूँ कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदा बांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी, लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था, लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी, लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं? कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदा बांदी रुक गई थी, लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी, वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चलना चाहिए।

0: अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ ना उसे। ये बता, अरविंद कैसा लगा? मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली। बस ठीक? हाँ भाई ठीक बस।
1: अरे यार, तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या?
0: हाँ ये तो है,

पहली बार मिली है ना, इसलिए ऐसा कह रही है। एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहां वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को दो दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए। हल्के बादल थे लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस ने मौसम में कसावट पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने को है। हवा का तेज झोंका पेड़ की एक डाल से सूखे पत्ते बालकनी में फेंक रहा था। हवा से अंजलि के बाल उड़ने लगे और उसे सामने से अरविंद नजर आने लगा। दो दिन से परेशान अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है। और ये सोचकर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ। परेशान हो क्या? हाँ थोड़ा परेशान हूँ। बताओ मुझे, मैं दूर करूंगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा। नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी। अरे हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई न कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उससे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थी। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी। लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वहां उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहां तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहां अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ रहा था।

0: मोबाइल किनिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद के जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे?
1: मुझे क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ।
0: फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई, शिवानी ने धमकाया।
1: नहीं आई बस।
0: अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे।
1: क्या?
0: मिलकर बताती हूँ।
1: अरे बताना।
0: नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा।
1: पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे, अंजलि झुंझला उठी।
0: अरविंद के बारे में है।
1: अरविंद?
0: हाँ।
1: क्या हुआ अरविंद को?
0: कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली।
1: अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में,
0: आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ अभी।
1: मैं आऊँ यूनिवर्सिटी?
0: नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था, हवाएं तेज रफ्तार में चल रही थी। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे अरविंद बोल पड़ा,
1: तुम मेरा इंतजार मत किया करो।
0: अरे तुम फोन भी? लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता।
1: ये क्या कह रहे हो और क्यों?
0: जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं, क्योंकि यही सच है। अंजलि अरविंद को आस भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि की आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं जिस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ नहीं आया कि कैसे दूं। बुआ तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में, और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर खुश होंगे। मैंने एक रोज तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना? पता है मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो।

0: अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है, जिसमें लिखा है, मम्मा मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार बहुत साल पहले खत्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फोन कर ही लोगी, पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी, अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतजार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।
1: तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आप सुन रहे थे अरगवान रब्बही की लिखी कहानी अंजलि, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अगले सप्ताह किसी नई कहानी के साथ होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

साथ मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से, सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से, हा।

चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

ग्रेट फिल्म का गीत अभी आपने सुना, शैलेंद्र सचिन देव बर्मन, शकील बदायूनी का लिखा आदमी फिल्म का नगमा, नौशाद मोहम्मद।

आशा फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और अब तराना फिल्म का गाना, शैलेंद्र सिंह के बोल, शैलेंद्र सिंह की आवाज, रविंद्र रावल के बोल, संगीत राम लक्ष्मण का।

0: अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त।
1: इसी के साथ अब खत्म होता है आज का ये कार्यक्रम। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम मैटिनी शो।

0: ये सुनिए मैटिनी शो, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ बहुत ही अनमोल यादें आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले तो जे ओम प्रकाश के एक लंबे इंटरव्यू का ये छोटा सा हिस्सा सुनिए, जिसमें वो एक दिलचस्प किस्सा सुना रहे हैं।
1: अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो बदकिस्मती से आज इस दुनिया में नहीं है
0: जी,
1: तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने जब सन 59 में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया तो एक उलझन थी कि कंपनी का नाम क्या रखें। इतवार का दिन था, बहुत से अखबार आए, तो ऐसे सामने आया धर्मयुग, तो हमने कहा धर्म को जरा अलहदा कर देते हैं, यहाँ फिल्म रख दीजिए, तो फिल्मयुग से ही शुरू करते हैं।
0: क्या बात है, क्या तो, मैं हमेशा सोचता था कि आपकी कंपनी का नाम फिल्मयुग
1: तो
0: क्यों है?
1: वहाँ इंस्टेंटली सब ने पसंद किया
0: जी,
1: तो ये उसकी मेहरबानी है कि आज तक फिल्मयुग कायम है।

0: जैसे मैंने कहा कि उजाले उनकी यादों के यादों के बारे में एडजेक्टिव्स बहुत से सुने थे, इसी तरह आस का पंछी मैंने पहली बार सुना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और चूंकि इस टाइटल से मेरे मेन कैरेक्टर को भी बहुत कुछ मिलता है, कहा जाता है इससे, और इसी से मेरी जिंदगी की जो रफ्तार है या जिंदगी का जो सफर है वो भी एक आस का पंछी ही समझिए तो ठीक रहेगा।
1: क्या बात।
0: अब इन्हीं जज्बात को अपने शंकर जयकिशन ने मेरी उसी पहली ही फिल्म में, पहले ही गाने की जब रिकॉर्डिंग हुई थी, तो हजरत जयपुरी ने कैसे तर्जमानी की, सुनिए।
1: वाह क्या बात है। ये सुबीर सेन की आवाज है,
0: सुबीर सेन
1: जो हेमंत कुमार से काफी कुछ मिलती जुलती है।

अभी आज का पंछी फिल्म के एक गाने की धुन आपने सुनी और जाहिर है कि जब ये धुन बज रही होगी तो गाने के बोल आपके जहन में बाकायदा गूंज रहे होंगे। जी ओम प्रकाश की फिल्मों की खासियत ये थी कि उनकी फिल्मों के टाइटल अंग्रेजी के ए शब्द से शुरू होते थे, जैसे आज का पंछी, आपकी कसम वगैरह।

0: इंटरव्यू लेकर आया हूं। 15 मिनट का ये इंटरव्यू किसी जमाने में रिकॉर्ड किया गया था। गुलजार साहब से शबी अब्बास बात कर रहे हैं, मैटिनी शो की ये पेशकश।
1: ये आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम है विविध भारती, इनसे मिलिए। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक गुलजार से।
2: गुलजार भाई नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: देखिये गुलजार भाई, बड़ी कृपा की आपने जो आप आज आए, इस वास्ते कि हमें आपसे बहुत कुछ पूछना है। तो पूछूं?
3: छोटे जी मैं जानता हूँ, इसीलिए आया हूँ यहाँ के।
2: मैं कुछ पूछूंगा। अच्छा देखिए साहब, तो गुलजार भाई आपको तो पता है कि इस फिल्मी दुनिया में जहाँ से आप संबद्ध हैं, तो वहाँ पे कोई म्यूजिक डायरेक्टर बनने आया था वो एक्टर बन गया, कोई डांसर डांस डायरेक्टर बनने आया था तो म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार बन गया, ऐसे बहुत सारी बातें हुई हैं। तो आप बताइए कि आप इस फिल्म जगत में क्या बनने के लिए आए थे?
3: छोटे जी बात आपकी सही है कि इतने सारे रास्ते एक दूसरे को काटते हुए गुजरते हैं यहाँ।
2: हाँ।
3: कि कई बार तो आदमी भूले भटके किसी और रास्ते पे निकल जाता है।
2: हाँ, हो जाता है, हो जाता है।
3: जैसे
2: तो आप तो जानबूझ करके आए,
3: म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे। हाँ। तो हारमोनियम पे बैठ के जब तर्ज बनानी शुरू की तो मालूम हुआ कि गाना बड़ा अच्छा था, गायक बन गया।
2: गायक बन गया,
3: ऐसा होता है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ लेखक ही की हैसियत से आया था।
2: अच्छा।
3: और ये कि फिल्म लाइन ही में लेखक बनूं, ये कोई तमन्ना नहीं थी।
2: अच्छा।
3: साहित्य में जगह बनाना चाहता था।
2: ठीक ठीक।
3: और लिटरेचर ही में रहना चाहता था।
2: जी।
3: कविता लिखता था, शायरी करता था, अफसाने भी लिखे।
2: वाह।
3: लेकिन कुछ हल्का आहिस्ता आहिस्ता ऐसा बनता गया और कुछ थोड़ी सी मुश्किल हुई मेरी जबान की, क्योंकि मीडियम मेरा उर्दू का था।
2: ठीक।
3: जिसकी जगह कम होने लगी और रोजगार के लिए कुछ तो ढूंढना था आखिर, सिर्फ कविताएं लिख के तो पेट नहीं भरता था।
2: जी।
3: तो उस हलके में से एक रास्ता ये निकला कि भाई कहीं कोई कविता की जरूरत हो तो हमसे भी कलम हमने कान पे रखी है।
2: हाँ।
3: हमसे भी कुछ लिखवा लो।
2: हाँ, ठीक।
3: सुबह बाजार में हाँक लगाते गुजरते थे।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो उस हालत में कुछ दोस्त हमें बिमलदा के पास ले गए।
2: अच्छा।
3: बिमलदा से आप शायद नाम सुना,
2: बिमलदा
3: जी। हाँ।
2: अच्छा।
3: उन्हें हम बिमलदा कह के बुलाते थे और उनसे मिले। वहाँ पे एक गाना लिखा उनकी एक फिल्म में।
2: कौन सा गाना?
3: बंदनी में मोरा गोरा मिले।
2: वाह वाह, बड़ा सुंदर गाना था।
3: अब छोड़िए, क्या कहूँ, ये बात भी बहुत ही दफा कह चुका हूँ अपने परिचय में कि इसी गाने से परिचय हुआ था।
2: हाँ।
3: और वो गाना लिखा और उन्हीं दिनों बिमलदा एक और फिल्म शुरू कर रहे थे, काबली वाला।
2: जी।
3: और मैं क्योंकि बेरोजगार था और शायद शक्ल सूरत से कुछ हमदर्दी हो गई उन्हें।
2: जी।
3: कि लगा कि ये कुछ भूखा है।
2: जी।
3: तो मुझसे पूछा कि भाई और क्या करते हो आजकल? मैंने कहा जी कुछ नहीं करता, सिर्फ यही करता हूँ जो कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो रोजी कैसे चलती है?
2: जी।
3: तो जहाँ लफ्ज जोड़ते हैं वहां दो वक्त का खाना भी जोड़ते हैं।
2: सही बात, सही बात।
3: तो तुमने बुला लिया कि भाई तुम ऐसा करो, मैं हम नई फिल्म शुरू कर रहे हैं काबली वाला, तो उसमें असिस्टेंट हो जाओ हमारे साथ।
2: जी।
3: और बड़ा अच्छा मौका था, तो जाहिर है
2: हो गया, पहुंच गए, हो गया।
3: और वहां असिस्टेंट होने के बाद ये जरूर महसूस हुआ
2: जी
3: कि लेखक की जगह अपनी है।
2: हाँ।
3: लेकिन फिल्म का मीडियम सिर्फ लेखक का नहीं।
2: अच्छा।
3: वो जो खुद मुख्तारी महसूस होती थी शायरी करने में, वो महसूस हुआ कि फिल्म में तो नहीं होगा।
2: अच्छा। हुआ तो फिल्म के हिसाब से लिखना पड़ेगा,
3: तो एक सिचुएशन देंगे, कहानी कोई और लिखेगा, पिक्चराइज कोई और करेगा, एक्टिंग कोई और करेगा।
2: सही बात, सही बात।
3: तर्ज कोई और बनाएगा, मैं चाहे किसी धुन में गुनगुनाऊं।
2: ठीक ठीक।
3: तो महसूस हुआ कि वो खुद मुख्तारी अगर चाहिए और खुद जो कहना चाहते हो वही कहना है।
2: हाँ।
3: तो फिर इस मीडियम को सीखना चाहिए।
2: मतलब फिर आपने निर्देशन तो, भी
3: जी हाँ, वहां से बस डायरेक्शन में बिमलदा के साथ हमने।
2: अच्छा।
3: सीखना शुरू किया और लिखते रहे साथ। हाँ। में
2: लिखते तो आप अब भी हैं और लिखते रहेंगे आप।
3: तो मीडियम सीखने के बाद महसूस हुआ कि इस मीडियम में लेखक की अपनी एक हैसियत है और वो इस मीडियम को अगर जाने तो लिखे।
2: अच्छा। तो देखिए इसी बात से एक बात और निकलती है कि जब लेखक की अपनी हैसियत है तो इसका मतलब ये हुआ कि निर्देशक की भी अपनी हैसियत है ना। तो अब आप तो दोनों हैं, तो आपकी दोनों हैसियत कभी आपके सामने आई काम के दौरान?
3: जी हाँ, दोनों शख्सियतें,
2: कभी उनमें कोई क्लेश हुआ?
3: जी,
2: लेखक और निर्देशक।
3: वैसे छोड़े जी, आप तो मैं समझता था सिर्फ आप देहात की जबान बोलते हैं, आप अंग्रेजी भी अच्छी बोल लेते हैं बीच में।
2: अरे आप ही लोगों से साथ बैठ के
3: दोनों का झगड़ा तो होता है, दोनों शख्सियतों का
2: होता है ना।
3: जी हाँ।
2: अच्छा।
3: और अक्सर ये होगा कि जो लेखक है ना मुझमें,
2: जी
3: वो पकड़ लेता है।
2: वो पकड़ लेता है
3: इसलिए।
2: अच्छा।
3: वो इसलिए कि ख्याल फिल्म से ज्यादा जरूरी है।
2: अच्छा।

0: ये
1: बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश की फिल्मों का ये जादू रहा कि जब भी उन्होंने ए लव से अपनी फिल्में बनाई तो वो फिल्में बहुत ज्यादा चली और उन फिल्मों का अपना एक जादू रहा है। अब जे ओम प्रकाश की बातें की, विविध भारती के खजाने से मैटिनी शो कार्यक्रम में आपके लिए गुलजार साहब का एक बहुत ही पुराना और रेयर

0: तो उसमें चिंटू की भी वही हालत हुई जो राज कपूर साहब की थी।
1: वाह वाह।
0: तो एक वो पॉपुलैरिटी भी एक वजह है जिसकी वजह से हमारी फिल्में बहुत अच्छी तरह अपनाई गई और वहां दिखाई गई, जगह जगह गए हम
1: जी,
0: और कुछ फिल्मों के तो बहुत से शो हुए।
1: अच्छा।
0: और मुझे सही मालूम नहीं कि आखिर में क्या हुआ फेस्टिवल के बाद
1: जी,
0: लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उसमें से काफी सारी फिल्में वहां बेच सके।
1: अच्छा।
0: या उनके सौदे किए जा रहे थे या बातचीत चल रही थी।
1: अच्छा।
0: और अगर ये इसी तरह बढ़ता रहे तो वो भी करामद है।
1: बिल्कुल करामद है। और साहब हमारी फिल्मों की तो मांग विदेशों में और बढ़ती जाएगी अगर ऐसी तरक्की होती रही। गुलजार भाई एक बात तो आप ये भी बता दीजिए कि ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम से देश में एक नई खुशहाली आ रही है, तो आपकी फिल्मी दुनिया इसमें कितना योगदान कर सकती है और या कर रही है?
0: कर सकती है और कर रही में थोड़ा सा अंतर है।
1: हाँ, है ना।
0: और
1: हाँ,
0: दोनों को जांच लेना चाहिए।
1: हाँ, जांच लीजिए।
0: कर सकती में तो ये है कि हर फिल्म
1: जी
0: एक बड़ा मकसद ले सकती है।
1: ठीक।
0: और वही बात जैसे ऊपर कही मैंने कि अगर ये साफ सुथरी होने लगे
1: जी,
0: तो कहीं तो ये महसूस होगा कि हम कौम के लिए क्या कर रहे हैं या वतन के लिए क्या कर रहे हैं।
1: ठीक।
0: और वो फिल्में भी आएंगी जो हमें एक बार तो ये महसूस कराएंगे, एक बार तो ये महसूस होने देंगे कि साहब आप हिंदुस्तानी हैं, आपने हिंदुस्तान के लिए क्या बात सोची।
1: वाह क्या बात कही।
0: और आप किस कौम से ताल्लुक रखते हैं और आपके कौम क्या है, कम से कम ये तो जान लें।
1: ठीक।
0: क्योंकि सिवाय आज तक के ये कि हम ये जानते हैं कि ये एक्टर है और मैं डायरेक्टर हूँ और ये, लेकिन ये कभी बहुत कम मेरा ख्याल है कहीं बहस होती होगी कि हम दो हिंदुस्तानी हैं और बाहर की फिल्मों को उस नुक्ते से देख रहे हैं कि साहब हमें कहां तक पहुंचना है या क्या करना चाहिए।
1: जी।
0: तो वो एक बार कौम की तरफ से कौमियत के साथ महसूस करना तो कहीं फर्ज है और कहीं अच्छा लगता है, वो होना चाहिए। और ये फिल्में कम काम कर सकते हैं क्योंकि बड़ी बड़ा एजुकेटिव मीडियम है
1: जी।
0: और कर कितना रही है उसमें ये कि कोशिश बहुत है।
1: अच्छा।
0: लेकिन पहुंच कम हुई है।
1: हाँ, ठीक है। तो
0: मतलब उतनी नहीं हुई हाँ, जितनी होनी चाहिए थी।
1: हाँ।
0: और उसी के लिए ये 20 नुकाती प्रोग्राम चल रहे हैं, उम्मीद होगा।
1: हाँ जी। अच्छा गुलजार भाई आपने पहले ही कहा था कि आप तो आपने फिल्म जगत में पहले सबसे कदम रखा था, गाना लिखा था
0: जी हाँ,
1: और आप कवि हैं, शायर हैं
0: जी हाँ।
1: तो हम चाहेंगे भाई अंत में एक दो चार पंक्तियां अगर श्रोताओं तक पहुंच जाए आपकी, आपकी जबानी तो क्या हर्ज जाए।
0: छोरे जी हर्ज तो कुछ नहीं
1: जी,
0: अच्छी बात है।
1: अच्छी बात है ना।
0: अगर उन्हें अच्छी लगे,
1: अरे लगेगी
0: तो नज़्म में आपको सुना देता
1: अच्छा।
0: हूँ और सुनने वालों तक भी पहुंच जाएगी।
1: हाँ, पहुंचे रहेगी।
0: वो जो शायर था,
1: अच्छा वो जो शायर था,
0: बहकी बहकी सी बातें करता था, मेरी तरफ ना देखिए। वो जो शायर था बहकी बहकी सी बातें करता था और आंखें कानों पे रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाजें, जमा करता था चांद के साए गीली गीली सी नूर की बूंदें।
1: वाह।
0: जमा करता था चांद के साए गीली गीली सी नूर की बूंदें और ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते।
1: वाह।
0: और वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। हाँ वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की ठोड़ी चूमा करता था।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: हाँ वही वो अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की ठोड़ी चूमा करता था, चांद से गिर के मर गया है वो, लोग कहते हैं खुदकुशी की है।
1: वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गुलजार भाई आज आपसे मिलके हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत ही प्रसन्नता हुई और बहुत सारी जानकारी मिली है, तो इसके लिए तो भाई हम आभार प्रकट कर रहे हैं अपने श्रोताओं की ओर से भी और भारती की भी ओर से। और आप समझो समय अभी हो रहा है तो अब श्रोताओं
0: फिर मिलेंगे।
1: अच्छा नमस्कार।
2: इनसे मिलिए आज के इस कार्यक्रम में। आपने फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध लेखक और निर्देशक गुलजार से एक भेंट वार्ता सुनी। भेंट करता थे छोटे।
3: मुसाफिर हूँ यारो।
4: न जाने कितनी बरस पहले गुलजार साहब से की गई ये बातचीत संग्रहालय से निकालकर मैटिनी शो में मैं आपके लिए लेकर आया था। और अब गुलजार साहब के इस गाने के साथ आज के इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। परिचय फिल्म का गीत आर डी बर्मन की तर्ज किशोर कुमार की आवाज

0: कठिनी शो करी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि

0: ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: असम में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। निदेशालय के अनुसार कमरहाटी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी। एजेंसी का कहना है कि मदन मित्रा 125 से अधिक ऐसी अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.53% रही। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: आइए सुने यादों की महफिल।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: क्या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

0: साहिर लुधियानवी के बोल थे। फिल्म का नाम दीवार।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है

0: हैं, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो

0: चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: देश के बोल थे सलील चौधरी की तर्ज फिल्म का नाम अन्नदाता।
1: जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगी, गुजर जाए दिन दिन
0: दिन की इस भागदौड़ में 12:38 विविध भारती सुरीला सफर।

बातें जो हम कह न सके कह रही है ये निगाहें हम चाहें कि तुझे तो हम चाहें

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत नीरज का लिखा हुआ था, एसडी बर्मन की तर्ज थी और लता मंगेशकर की आवाज। इसी के साथ खत्म होता है आज का ये कार्यक्रम यादों की महफिल। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुरीला सफर।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खेलों में युवाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के दुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी के 215 सत्रहवें बैच की संयुक्त दीक्षांत

परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षित महिला कैडेट्स के पहले बैच को भी शामिल किया। समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। असम में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। राजस्थान काडर के दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में महानिदेशक यानी डीजी स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए चुना गया है। केंद्र की कैबिनेट नियुक्ति समिति ने राजस्थान के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी एमएन दिनेश और बीजू जॉर्ज जोसेफ को केंद्र में डीजी या उसके समकक्ष पदों पर पदस्थापना के लिए सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। इस सूची में इन दोनों अधिकारियों सहित देशभर के विभिन्न राज्यों के कुल 33 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जगह मिली है, जिनमें 1990 से 1995 बैच तक के अधिकारी शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा जयपुर डेयरी के संयंत्र का आधुनिकीकरण किया गया है। इस पर 133 करोड़ रुपए की लागत आई है। डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि प्लांट के नवीनीकरण से इसकी दूध प्रसंस्करण क्षमता 20 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। वहीं दूध पैकिंग की क्षमता भी 16.5 लाख प्रतिदिन पहुंच गई है। पहले इसकी दूध पैकिंग क्षमता 10 लाख लीटर थी। इस मेगा प्लांट का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। इस प्लांट से जयपुर और आसपास के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाला दूध मिलेगा। साथ ही पशुपालकों से अधिक मात्रा में दूध खरीद होने से उन्हें सीधा फायदा होगा। पाली के सोजत सिटी में मेहंदी व्यापारियों के लिए एक कार्यशाला रखी गई। डाक विभाग और मेहंदी व्यापार संघ की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में सोजत की विश्व प्रसिद्ध मेहंदी और अन्य स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। कार्यशाला में पाली के डाकघर अधीक्षक तरुण शर्मा ने बताया कि डाकघर निर्यात केंद्र छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए वैश्विक बाजार से जुड़ने का एक आसान और प्रभावी माध्यम है। इस दौरान व्यापारियों को निर्यात पंजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय पार्सल बुकिंग, कस्टम प्रक्रियाएं, जीएसटी और आयात निर्यात कोड की जानकारी दी गई। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। अधिक आंधी और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के 23 जिलों में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर चला। हनुमानगढ़, सीकर, श्रीगंगानगर और चूरू के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। प्रदेश में सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर बारिश सीकर के दांता रामगढ़ में दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

पलकों की छाव में फिल्म का ये गाना था और बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। गुलजार साहब ने लिखा पलकों की छाव में फिल्म का ये गाना है और इसके अलावा गाइड उपन्यास के लेखककार के नारायण थे और राजू और रोजी नाम थे गाइड फिल्म के हीरो और हीरोइन के नाम। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। 1977 में आई थी पलकों की छाव में फिल्म और 1958 में आर के नारायणन का द गाइड आया था और ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की। और इसके अलावा बारिश का जो इंतज़ार है वो आप सभी को है, हम सभी को है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी इस साल पड़ी है वो बहुत ही खौफनाक है। क्या आपने अपने पूरे जीवन में इस तरह की तेज़ गर्मियां इससे पहले देखी थी और पिछले साल या बीते सालों की गर्मियों में और इस साल की गर्मी में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है ये भी बताइएगा कि इस साल की गर्मी के कहर ने क्या कुछ दिखाया है आपको। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि बहुत बरसों बाद SD बर्मन वाला ये गाना हमें सुनने को मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है आई बहार आई बरखा बहार करे अंगना फुहार। और इसके अलावा और भी बहुत सारे बारिश के गाने इन्होंने लिख दिए हैं, बहुत सारे बारिश के गाने। आज वर्षा की बूंदें पूरे विविध भारती को तरबतर करने वाली हैं, कम से कम गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी भले बारिश के गानों के जरिए ही क्यों ना हो। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि सचिन देव बर्मन धोती कुर्ता पहनते थे और कितने आगे का संगीत देकर वो चले गए हैं कि आज के संगीतकार भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा और भी श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग शब्दों के जरिए अंदाजा लगाया है कि आज कौन कौन से गाने हो सकते हैं। जिंदगी की पहली बारिश बहुत सारी यादें लेकर आती है, बारिश की बूंदें गिरते ही इंसान अनजाने में अपने अतीत में लौट जाता है, मिट्टी की पहली सौंधी खुशबू सीधे हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय करती है जो यादों को वापस लेकर आता है। ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आज की जो इबारत है उसमें रिमझिम और ठंडक है और बस यूं लग रहा है कि अभी बारिश हो जाए। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पूरे राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, दो दिन से अलग अलग स्थानों पर कहीं कहीं बारिश हो रही है और मौसम सुहावना हो रहा है। एक और श्रोता का कहना है कि हम सब पर्यावरण को भूल रहे हैं, एल नीनो की वजह से अकाल जैसी परिस्थितियां हो रही हैं। तो और भी श्रोताओं के कमेंट्स हम शामिल करेंगे लेकिन अभी आज के दूसरे गाने की तरफ बढ़ते हैं और वो गाना जो है वो आप सभी के दिल के करीब गाना है। आपको फिल्म का नाम बताना है और उसके अलावा ये भी बताना है कि इस साल की पहली बारिश आते ही आप किस इलाके में पिकनिक मनाने जाएंगे।

बहुत ही सुंदर गाना आशा भोसले की आवाज में। और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट से, एक श्रोता लिखती हैं कि हम तो सागर किनारे बारिश में भीगेंगे जैसे मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन मरीन ड्राइव पर भीगते हैं रिमझिम गिरे सावन गाने में, हम विशाखापट्टनम में इसी तरह के मजे लेंगे। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आजकल वैसे रिमझिम फुहार वाली बारिश नहीं होती, आप कहीं बाहर आउटिंग के लिए जा सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, अब तो धूम धड़ाके के साथ बारिश होती है, ऐसा लगता है जैसे बहुत गुस्से के साथ बारिश हो रही है, कहीं रास्ते बंद, कहीं पुल टूट गए। अब बारिश से खुशी तो होती है पर उस खुशी को मनाने का मौका

नहीं मिलता। एक और श्रोता है जो भोपाल से हैं और लिखते हैं कि भोपाल में पिकनिक मनाने की बहुत सारी जगह हैं, बरसात के मौसम में आसपास के जंगल और डैम्स पर पिकनिक मनाना बहुत अच्छा लगता है। केरवा डैम और कोलार डैम में हम जंगलों में जाएंगे। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि गर्मी तो हर साल बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी त्वचा ज्यादा संवेदनशील होने लगती है और ठंडी और गर्मी का असर ज्यादा होने लगता है। एक और श्रोता ये लिख रही हैं कि हमारे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है और बारिश के साथ इस कार्यक्रम का हम आनंद ले रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1980 में आई थी थोड़ी सी बेवफाई फिल्म आशा भोसले और खय्याम। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जहां विविध

बारिश हो जाए तो जैसे हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और इसके अलावा एक श्रोता का कहना यह है कि विविध भारती से जब बारिश के गाने बजेंगे तो हमें थोड़ा सा तो सुकून गर्मी से मिलेगा, और क्या पता हमारे शहर में बारिश आ ही जाए। एक और श्रोता लिखते हैं, ये रे पाउसा तुला दे तो पैसा, पहला पैसा जाला खोटा पाउसाला मोटा, जैसे बचपन के गाने याद आ गए हैं, क्योंकि आज के सुरीले सफर की जो इबारत है वो बहुत बारिश वाली इबारत है। अभी अभी अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी को याद किया हमारी एक श्रोता ने, और बस अब हम भी वही गाना आप सभी के लिए प्ले करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस गाने में मुंबई के कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स, मुंबई के कौन कौन से इलाके, कौन कौन सी इमारतें या मशहूर जगहें आपको नजर आती हैं पहले पर्दे पर, कितनी जगहों के नाम आप लिख पाएंगे? और साथ में ये भी बताइए कि इस गाने को लिखा किसने है।

क्या तो शानदार गाना, बहुत ही प्यारा गाना, और योगेश जी ने इस गाने को लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ये गाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुंबई के ज्यादातर इलाकों से मैं परिचित नहीं हूं, इसलिए इनके नाम नहीं बता सकता। लता जी की आवाज कानों में अमृत घोलती है। एक और श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता कहते हैं कि अकोला में बारिश हुई है, लेकिन आज बहुत बुरी तरह से गर्मी पड़ रही है। और इसके अलावा कई श्रोता ये लिख रहे हैं कि मुंबई के साथियों को ही पता होगा कि इस गाने में कौन कौन से इलाके नजर आते हैं। नहीं, मुंबई के बाहर के श्रोताओं को भी पता होगा, क्योंकि ये जो इलाके नजर आते हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा मशहूर इलाके हैं। और इसके अलावा अमिताभ बच्चन इस गाने में बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लिखते हैं, ये बात एक श्रोता

ने लिखी। एक और श्रोता ग्वालियर से लिख रही हैं कि पथरीला इलाका है और आज के गानों से थोड़ी राहत मिली है। एक श्रोता ने सुंदर कविता लिखी है, बताऊं क्या होते हैं बारिश के मायने, धड़कनों का मोर बन जाना है बारिश, सड़कों का संतूर बन जाना है बारिश, नदियों की गुल्लक भर जाना है बारिश, धरती का खुशबू हो जाना है बारिश, सूखे रेनकोट के भीतर तरबतर हो जाना है बारिश, शहरों का छप छप हो जाना है बारिश, रागों का घनघन हो जाना है बारिश, सीले ख्वाब का सुलग उठना है बारिश, पुराने एल्बम पलटना है बारिश, गुलजार पंचम और ब्लैक कॉफी है बारिश, छतरी ठेले से टिकाकर भुट्टे खाना है बारिश। क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने पहचानने की कोशिश की है, मरीन ड्राइव और विक्टोरिया टर्मिनस नजर आते हैं। ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है, मरीन ड्राइव नजर आता है, उसके अलावा ओवल मैदान नजर आता है, उसके अलावा राजाबाई टावर नजर आता है, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज और मुंबई का समुद्र। बहुत सारे श्रोताओं की बातें मिला के लगभग लगभग तय हो गया कि कौन कौन सी इमारतें और मुंबई के कौन कौन से इलाके इस गाने में नजर आते हैं। ये सिर्फ गीत नहीं, ये दो आत्माओं के बीच बहती उस भावना का गीत है जिसकी गवाह है बारिश। सौम्यता और कोमलता से भरपूर इस गाने को योगेश जी ने लिखा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज आपकी इबारत सही साबित हुई, पिछली रात कुछ घंटे पहले बारिश की रिमझिम फुहारों ने हमारे अजमेर शहर की तपती धरती पर बरखा रानी के आने से सुबह झूम उठे हैं और घर के गार्डन के पेड़ पौधे भी लहरा उठे हैं, मानो उन्हें शिद्दत से इंतजार था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो इंदौर से हैं, उनका कहना है कि सब जगह से बरसात की खबरें आ रही हैं पर हमारे इलाके में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। कटक से एक श्रोता है जो लिखते हैं कि हम अक्सर बारिशों में पुरी चले जाते हैं और सुंदर समुद्र तट पर सुकून मिलता है। और इसके अलावा कई शहरों में बारिश हो रही है, इसकी खबर हमें अपने श्रोताओं के कमेंट से मिली है। एक श्रोता ने सुमित्रा नंदन पंत की कविता लिखी है, झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छमछम छमछम गिरती बूंदें तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, पंख खोल फैले हैं ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धारीवारी के उन पर चंचल, टप टप झरती करमुख से जल बूंदें झलमल। क्या सुंदर तो भाषा है, कितनी ललित भाषा। पहली बारिश के बाद नासिक के हम लोग पुणे, मुंबई, इगतपुरी, भंडारदरा जैसे इलाकों में जाते हैं। मुंबई का सबसे, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत कलसूबाई है, जहां से सैकड़ों झरने बहते हैं, वहां जाना बड़ा मजेदार होता है। एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये बारिश मेरे लिए अफसोस लेकर आएगी क्योंकि मेरा हम सफर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जून 1978 में दिल्ली के आसपास एक महीने तक तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था, तब बहुत बुरी हालत हो गई थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इस कार्यक्रम का पहला अंक आपने पेश किया था और उसमें हमने हिस्सा लिया था। इसके अलावा उनको ये शिकायत है कि भाई इस इबारत में शब्द छाटना और उन शब्दों पर आधारित गीत बताना, बस यही इस कार्यक्रम का आपका मकसद है। ये थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई प्रेरक विषय वस्तु दीजिए और इस तरह से कुछ और करिए। भाई आपका ये सुझाव जो है सर आंखों पर प्रेरक विषय वस्तु से आपका क्या तात्पर्य है, थोड़ा विस्तार दीजिएगा। और त्रिवेणी जैसा कार्यक्रम है जहां प्रेरक चीजें होती हैं, ये कार्यक्रम मनोरंजन का कार्यक्रम है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हम सागर किनारे बारिश में भीगेंगे। उसके अलावा कुछ और श्रोताओं ने बारिश के बारे में लिखा है। एक अहमदाबाद के श्रोता का कमेंट है जो लिखते हैं कि भाई इस बार जो हालत है वो बहुत ज्यादा संगीन है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। बचपन में बारिश की एक एक बूंद को मैं बड़े ध्यान से देखती, लगता आसमान में बैठा कोई जल तरंग का साज छेड़ रहा है, वो न जाने किस दिशा से आती और सब कुछ भिगो जाती, हम उसे कुछ भी भिगोने से रोक नहीं पाते और जब वो चली जाती तो उसे रोकते, बारिश बचपन की स्वर लिपि है। ये हमारी एक श्रोता का कमेंट। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। हर गाना जो है वो बारिश का गाना नहीं है आज के इस कार्यक्रम का। अगला गाना ये है, क्या आपको

बहुत ही सुंदर गाना जो पूरी तरह से खत्म हो गया, और एकदम से जब गाना खत्म होता है तो लगता है अरे ये इतना शानदार गाना था, ये कैसे खत्म हो गया। पर बहुत मजा आया, और बहुत सारे श्रोताओं के इस वक्त हमारे पास कमेंट हैं जो अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं। फिर कब मिलोगी फिल्म का ये गाना मुझे बहुत पसंद है, ये एक श्रोता का कमेंट है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत, पंचम का संगीत, ये भी कई श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा ये हिंदी के बड़े खूबसूरत रोमांटिक गानों में से एक है, ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं, नैनो के द्वार पे खड़े कुछ मासूम से सपने, इन पानी भरी बदलियों को देख मुस्कुराते हैं जैसे निस्दिन देख रहे हों, बादलों की आड़ में बहारों के सपने, तुम आओ तो शायद उन्हें भी आ जाए कुछ करार। ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि बरसात की रात के गाने के बिना ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा, सरकार अभी गाना आने तो दीजिए, कार्यक्रम अभी बहुत लंबा है, तो एक बार पूरा हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बारिश आ जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे नागपुर के एक श्रोता का कमेंट ठीक इस वक्त मेरी नजरों के सामने, वो लिख रहे हैं कि इतनी गर्मी है कि बारिश आ जाए तो सुकून मिल जाएगा। और इसके अलावा एक श्रोता अपने ननिहाल की याद लिख रहे हैं, जब उनकी नानी के घर पर बिजली गिर गई थी और एक भयावह माहौल था। एक श्रोता लिख रही है कि इबारत का पता नहीं चलता है, कब आती है कब दिखती नहीं है। इबारत पोस्ट की जाती है पोस्टर के साथ, और आपको वहां वो जो टेक्स्ट है उसमें देखना चाहिए, आपको पता चल जाए।

जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सूरत में बारिश जैसा माहौल तो है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता है जो पंजाब में रहते हैं, वो कहती हैं कि जब भी मैं मुंबई आती हूं तो मरीन ड्राइव पर बहुत घूमती हूं क्योंकि वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक खूबसूरत मौसम का इशारा करने वाला गाना है। जब बहुत सुंदर मौसम होता है, चाहे वो बारिश का हो, चाहे वो ठंड का हो, चाहे वो गर्मियों की थोड़ी बहुत ठंडी शाम हो, तो आप ऐसी शाम को किस जगह बिताना पसंद करते हैं ये बताइएगा।

पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरे सावन एक ऐसा गाना है जहां पिछले बारिशों के दिनों में हम मुंबई आए थे और मरीन ड्राइव पर इस गाने पर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं और मेरी धर्मपत्नी छाता लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पहली बारिश हो चुकी है और प्रकृति का मिजाज थोड़ा बदला हुआ है। हमारे यहाँ आम पके हैं, जामुन पकी है, खजूर और करौंदा आ रहा है और हम विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। एक और श्रोता छत्रपति संभाजीनगर में है और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। एक श्रोता कहती है कि माँ के घर जाती हूँ, वहां नदी बहती है और उस नदी के किनारे बैठना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अलावा एक और श्रोता ये कह रहे हैं कि ऊपर बरस गरज रहे हैं बादल और उनके बरसने का इंतजार है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि प्रतिदिन सुरीला सफर कार्यक्रम में जो इबारत तैयार की जाती है वो कौन तैयार करता है? भाई जो कार्यक्रम पेश करता है वही उस इबारत को तैयार करता है। यानी अगर आज ये कार्यक्रम मैं प्रस्तुत कर रहा हूं तो वो शब्द मेरे लिखे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब भी ज्यादा गर्मी लगती है मैं जबलपुर के एक चौराहे पर लस्सी पीने चला जाता हूं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि हमें गीत सुना है पर हम बताएंगे नहीं, देखना ये है कि आप वो गीत सुनवाते हो कि नहीं। ये बड़ी प्यारी बात है, देखना ये है कि आप वो गीत सुनवाते हैं कि नहीं जो हमें सुनना है और जो हम नहीं बताएंगे। ये बहुत ही सही है, देख लेते हैं भाई कि हम सुनवाते हैं कि नहीं, कहीं ये वाला गाना वो वाला गाना तो नहीं। ये दो गायिकाएं, इनका नाम बताएं और साथ में फिल्म का नाम भी। सुरीला सफर, बारिश का इंतजार।

सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट की आवाज, फिल्म का नाम बरसात की रात। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है और एक श्रोता कह रहे हैं कि हमें आपका ये वाक्य अच्छा लगा, कहीं ये वाला गाना वो वाला तो नहीं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि बारिश का आगमन सभी के लिए हर्ष का विषय होता है। शायद ही कोई होगा जिसे बारिश अच्छी नहीं लगती। और इसके अलावा वो लिख रहे हैं कि बुरा लगता था जब माँ रेनकोट पहना देती थी और फिर पापा बाइक से लेने आ जाते थे, क्योंकि बारिश में पैदल चलते हुए स्कूल जाना और वापस आना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि बरसात की रात फिल्म का ये गाना है और एग्जैक्टली इबारत से मेल खाता हुआ मौसम हमारे शहर में है। बारिश सुबह से ही दस्तक दे चुकी है। चलिए अब आगे चलते हैं और अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, जो एक तरह से बारिश के आने के बाद का गाना है और आपको संगीतकार और फिल्म का नाम बताना है।

एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज मेरी सूची तो फेल हो गई है, बस यही खासियत है आपकी, आपकी मौलिकता कुछ अलग है और अदा भी अलग है। शुक्रिया भाई। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि मजरूह सुल्तानपुरी, लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, क्या बात है। ये बिल्कुल मेरे अंदाज में लिखा गया है। एक श्रोता है लिखती है कि बारिश तो अच्छी लगती है लेकिन कीड़े मकोड़े, मेंढक, बिजली वाले कीड़े, इन सबसे थोड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आज जो बारिश के इंतजार पर आपने कार्यक्रम किया है, इतनी गर्मी है हमारे शहर में कि बस इस कार्यक्रम को सुनकर ही थोड़ी राहत मिल रही है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बचपन में जब बारिश होती थी तो मैं लोहे का तवा उलट कर रख देती थी क्योंकि घर के बड़े बोलते थे कि तवा उलट कर रख देने से बारिश बंद हो जाती है क्योंकि उस समय कीचड़ हो जाता था और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि शहर जयपुर में गोठ और सवामणि का दौर शुरू हो जाता है जिसमें दाल बाटी, चूरमा और अन्य चीजें होती हैं। हम भी आज जाएंगे सवामणि में, जयपुर के ही रमणीक स्थल पाल के बालाजी, ये उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि 1968 में आई फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये गाना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि परसों बारिश हुई थी रात को 11:30 बजे और उसके बाद हम बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारी शादी वाले दिन भी इतनी बारिश हुई थी कि शादी मंडप में नहीं कमरे में करनी पड़ गई थी। जी जी। इसके अलावा एक और श्रोता दिल्ली से लिख रहे हैं कि बड़ी उमस, बड़ी परेशानी है और आपने जिस तरह से बारिश के गाने सुनवाए, शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और अब ये गाना आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि जब बारिश आती है तो आपके जहन में पहला गाना कौन सा गूंजता है, आपका वाला बारिश का गाना कौन सा है, फटाफट बताइए।

भाई बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा वाला जो गाना था वो तो आप सुना चुके हैं, रिमझिम गिरे सावन। भाई खुशी हुई कि आपका वाला गाना बजा है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं, जिंदगी भर भूलेगी नहीं भूलेगी बरसात की रात, ये वो गाना है जो मेरा वाला बारिश का गाना है। इसके अलावा रिमझिम गिरे सावन एक और श्रोता है, उनका फेवरेट गाना है बारिश आते ही जो उनके जहन में आता है, और रोटी कपड़ा और मकान का एक गाना हाय हाय मजबूरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, वो घटा सावरी कुछ श्रोताओं के जहन में आता है, बरखा रानी जरा जम के बरसो भी कुछ श्रोताओं का बारिश का गाना है। और इसके अलावा रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, या काली घटा छाए मोरा जिया भरमाए, रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, देखिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन गई। इतने सारे श्रोताओं ने अपने अपने बारिश के गाने दिए। एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि जब बारिश आती है तो मुझे काला बाजार फिल्म का गाना याद आता है, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई मुझको वो पहली मुलाकात। और उसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं ने बारिश के गाने दिए, लेकिन अभी मुझे बजाना है ये वाला गाना, नीरज के बोल एस टी बर्मन की तर्ज है। किस फिल्म का ये गाना है ये बताइए।

आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब अपने आखिरी मकाम पर आ चुका है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आ रहे हैं और कुछ गाने हैं जो रह चुके जिन्हें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सका, जैसे कि ये।

0: समझ में आया आपको कि ये गाना आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने से रह गया? और इसके अलावा एक शायद और गाना है जो हम चाहते थे कि इस कार्यक्रम में शामिल हो जाए, लेकिन वो भी वक्त की कमी की वजह से शामिल नहीं हुआ। पर आप तो जानते हैं कि आप सभी के कमेंट्स भी पढ़ने हैं इस कार्यक्रम में, और आप सभी की बातें भी तो जाननी है।
1: ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ।
0: तो आज का सुरीला सफर कार्यक्रम बारिश के इंतजार पर केंद्रित था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। हम यही दुआ करेंगे कि आपके शहर में भी जल्दी बारिश आए और आप सभी को गर्मी से निजात मिले। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।

नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे चैतन्य पर। चेतना का पता बित्ता भर खिड़की से मत पूछो। उसे अगर सचमुच जानना है तो पहले आंगन का रास्ता मालूम करो। दुनिया हमारी आंखों में बसी है, हम उसे जितना चाहे फैला लें और जितना चाहे सिकोड़ लें। चाहे तो हम इस अनंत ब्रह्मांड को नकार दें और चाहे तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को स्वीकार कर लें। इस दुनिया में ईश्वर एक अकेली ऐसी शय है जिसका दावा बिना प्रमाण के किया जा सकता है और जिसे बिना प्रमाण के खारिज भी किया जा सकता है।

बात चौंकाने वाली है कि हर चीज बदल चुकी है, पर फिर भी वैसी ही है। तेज कोलाहल करके बहती हुई किसी धारा की कल्पना कीजिए। जैसे ही वो मुड़ती है, कोई एक बूंद बुलबुले की तरह टूट जाती है। बुलबुला छोटी छोटी बूंदों में तब्दील हो जाता है और बूंदें एक छोटी सी लहर बनकर धारा में समा जाती हैं। दृष्टि बूंदों पर ध्यान लगाने की कोशिश करती है, पर व्यर्थ। संभव ही नहीं है ये, क्योंकि बूंदें तो है ही नहीं, वहां तो बस धारा है।

वो जो पल पल अलग होकर भी अंततः एक ही है। वहां ना पूर्णता है ना अपूर्णता, फिर क्या है वहां? वहां जो कुछ भी है वो पल पल बदल रहा है। हम उसे देख सकते हैं, उसे हर पल महसूस कर सकते हैं, उसके साक्षी बन सकते हैं, मगर उसे पकड़ नहीं सकते। उसे छूकर उसके भौतिक होने का प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन उसके साथ पूरी चैतन्यता के साथ चलते रह सकते हैं, बहते रह सकते हैं अनंत की ओर, अपूर्णता से पूर्णता की ओर।

चलिए हम भी कोशिश करते हैं अपूर्णता से पूर्णता की ओर चलने की। आज त्रिवेणी में बस इतना ही। आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर

0: पर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
1: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
0: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
5: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल governments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
4: Passing out में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित Sword of Honor विशाल कुमार को प्रदान किया गया। Order of Merit में भी Officer Cadet विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
6: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और CCTV तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
2: समारोह में सुखोई 30, MKI, सारंग और

0: सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार तीन सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में तीन भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को

0: बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे।

भारती से आप सुन रही हैं सदाबहार नगमे। मुकेश की आवाज में आपने सुना फिल्म आशिक का गाना और अब आरजू फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज।

0: कदम ईश्वर की आवाज में आरजू फिल्म का गीत आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आइए सुने मन चाहे गीत। मन चाहे गीत
1: मन चाहे गीत
2: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
3: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
4: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
3: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
4: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया

0: ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
0: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: बहुत बहुत स्वागत मन चाहे गीत कार्यक्रम में। आज का पहला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। ये हमारे श्रोता हैं राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला और सुनील प्रसाद, इसके अलावा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह, इंद्रजीत और स्वीटी छाबड़ा की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, पोस्टकार्ड है। शुगर फैक्ट्री गेवराई से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की फरमाइश है। और इसके अलावा ये जो गाना है ये हम सुनवा रहे हैं छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्र किरण प्रीति और छाया बंदोर की फरमाइश पर, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की फरमाइश है। आप सभी की फरमाइश पर मनचाही गीत का ये पहला गाना। सुलक्षणा पंडित और भूपिंदर की आवाजें, गुलजार की बोल, कनी रॉय का संगीत। फिल्म का नाम है गृह प्रवेश।

0: हाँ क्यों, क्या किया है मैंने?
1: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से।
0: अच्छा बाबा लो पास से शुरू करती हूँ।

और अब मंच है गीत कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की फरमाइश। इसी गाने के लिए ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा ताई गुंडाने की फरमाइश है। खांजीपीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, अशरफ नजीब, गोपाल और रमेश नचानी, रुद्री जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू और शुभम सावित्री साहू और दतरेंगी भाटापारा से इसकी फरमाइश की है हीरामणि वर्मा ने। दूर हस्ते फिल्म का गाना।

कार्यक्रम का आखिरी गीत ब्रह्मचारी फिल्म से है, रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया की फरमाइश। कुछ और फरमाइशें गाना सुनने के बाद।

इस गाने की फरमाइश सिमगा से रमेश यादव, माया यादव, रिंकू सनी और कोमल की है, और छतरपुर से रामेश्वर रैकवार, दीपक अहिरवार, मुकेश राकेश और सुनील रैकवार।

0: मैं तुझको बिठा कर।
1: ये था आज का मनचाही गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।
2: मनचाही गीत।
3: मन चाहेगी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार पहला भाग।

0: दासी।
1: हाँ राजकुमारी।
0: गांधार की सीमा कहाँ समाप्त होगी?
1: आप इतनी अधीर क्यों हैं?
0: लगातार इतने दिनों की यात्रा, कितनी नदियाँ, कितने पर्वत, मेरी शिविका की डोलती हुई तालबद्ध गति, इसके बाद भी।
1: इसके बाद भी क्या राजकुमारी?
0: ये सब कुछ जो मेरा है, इसके स्थायी रूप से छू जाने का भय, उसकी कसम।
1: आप तो व्यर्थ ही भावुक हो रहे हैं राजकुमारी गांधारी।
0: किंतु एक बात बता, क्या मेरी तरह किसी वधु की यात्रा हुई है अब तक? विवाह तो पिता के घर होता है, उसके बाद वधु अपने पति के रथ पर आरूढ़ होती है, उसके बिल्कुल निकट।
1: राजकुमारी।
0: हाँ, मैं पिछले कुछ वर्षों से एक स्वप्न देखा करती थी, एक दिन वो आएगा, मेरे स्वप्नों का राजकुमार, सुनहरा रथ होगा उसका, और उसमें जुते होंगे हंसों की तरह उज्जवल, विद्युत की भांति गतिमान धवल अश्व। यदि रथ पर वो होता तो मेरी ये यात्रा क्या इतनी निर्जीव होती? न जाने क्यों कभी कभी मेरे मन में भय की आंधी उठती है, कहीं कहीं ये यात्रा मेरे स्वप्नों की शव यात्रा न

0: राजकुमारी, आपके मुंह से ऐसी अशुभ बात।
1: सुनो, हम गांधार राज्य की सीमा पर पहुंच गए हैं। हमारा दल आज रात्रि यहीं विश्राम करेगा। कल सूर्योदय से पूर्व ही हमारी हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ होगी। राजपुत्र सपनी की आज्ञा का पालन हो।

0: राजकुमारी, आप अभी तक सोई नहीं?
1: प्रयत्न करने के बाद भी नींद नहीं आ रही।
0: आप अकारण ही बहुत सोचती हैं। आपकी शंकाएं निर्मूल हैं, आपका भय अकारण है।
1: तो मेरे लिए स्वयंवर का आयोजन क्यों नहीं हुआ? मुझे अपने अधिकार से वंचित क्यों रखा गया?
0: स्वयंवर होता भी तो क्या आप दूसरा निर्णय ले सकती थी? हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र को छोड़कर क्या आपकी जयमाला दूसरे के गले में पड़ सकती थी? इसे अपना सौभाग्य समझिए कि स्वयं महाराज भीष्म आपके लिए प्रस्ताव लेकर आए।
1: भीष्म, भीष्म, भीष्म, ये नाम बार बार सुनकर मुझे क्रोध आने लगा है। हर बात में भीष्म, जैसे वो विधाता हो, नियामक हो।
0: पूरा जीवन जिसने त्याग किया हो, अपने सुख का सर्वस्व देकर जिसने हस्तिनापुर की शक्ति को अनुप्राणित किया हो, उस भीष्म का नाम तो आएगा ही।
1: मेरा मन तो दूसरी ही बात सोचता है।
0: अब सोचना बंद करें राजकुमारी, अपनी मनस्थिति को भावी जीवन के लिए ढालने का प्रयत्न करें।
1: लाख प्रयत्न करती हूँ किंतु उस विचार से छुटकारा नहीं मिलता। मुझे लगता है मेरे पिता ने मुझे बेच दिया।
0: राजकुमारी,
1: भीष्म की शक्ति के सामने अपना शीश झुका दिया है।
0: फिर वही
1: अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए मुझे बलि बनाया जा रहा है। ये कार्य व्यापार ऊपर से जितना सीधा सरल दिखाई देता है उतना है नहीं।
0: जब आपने पहले से ही धारणाएं बना ली हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन राजकुमारी, जब आप हस्तिनापुर पहुंचेंगी तो आपका भव्य स्वागत होगा, और जब आप वहां का वैभव देखेंगी तब गांधार को सदैव के लिए भूल जाएंगी, और तो और मुझे भी भूल जाएंगी।
1: ईश्वर करे तेरी ही वाणी सच निकले।

0: कहती थी ना, देखिए पूरा हस्तिनापुर उमड़ा रहा है। मार्ग के दोनों ओर सहस्त्रों व्यक्ति आपके स्वागत में खड़े हैं। आपके आगमन से हस्तिनापुर में कितना उत्साह है। और वो देखिए आपके मार्ग पर फूल बिखरे हुए हैं।
1: सचमुच हस्तिनापुर अद्भुत नगर है। इतने ऊंचे ऊंचे भवन, इतने सुंदर उद्यान, इतना धन धान्य, जितना सुना था उससे कहीं अधिक। वो देखो वो कौन भव्य राजपुरुष खड़ा है।
0: वो ही तो है भीष्म पितामह, कुरुवंश की सत्ता के केंद्र बिंदु, सत्य जिनका व्यक्तित्व है, त्याग जिनका श्वास है, तपस्या जिनकी देह है, ब्रह्मचर्य का तेज जिनकी आत्मा है। तो भीष्म स्वयं आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। हस्तिनापुर का प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी अगवानी करने खड़ा है राजकुमारी।
1: क्या राजकुमार धृतराष्ट्र भी?
0: वो अभी कैसे आएंगे, उनसे तो विवाह मंडप में ही भेंट होगी। इतनी भी अधीरता अच्छी नहीं है राजकुमारी। देखिए महाराज भीष्म रथ की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़कर प्रणाम कीजिए।
2: कुरुवंश के महापराक्रमी तपस्वी महापुरुष को ये गांधार कन्या प्रणाम करती है।
3: आयुष्मती भव, कहो पुत्री यात्रा कैसी रही, कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
2: कुल देवता की कृपा और आपके आशीर्वाद से यात्रा निर्विघ्न

0: संपन्न हुई महाराज।
1: पुत्री गांधारी, आज तुम्हारे आगमन के साथ ही मैं एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व के अधूरेपन को तुम भर दोगी। तुम्हारे आगमन के साथ ही हस्तिनापुर के जीवन में सुख के नए अध्याय का प्रारंभ होगा।
0: मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी महाराज।
1: साधु, मैंने तुम्हारी और राजकुमार शकुनी के ठहरने की व्यवस्था एक विशेष भवन में कराई है, चलकर विश्राम करो।
0: जो आज्ञा।

0: तो कुछ बोलती क्यों नहीं? शकुनी कब गांधा लौट रहा है? तू बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमारी, अब राजकुमार शकुनी गांधार नहीं लौटेंगे।
0: क्यों?
1: वे अब स्थायी रूप से यहीं रहेंगे। भीष्म पितामह ने उनके लिए अलग भवन की व्यवस्था कर दी है।
0: लेकिन शकुनी यहाँ क्यों रहना चाहता है? अपनी बहन के ससुराल में आश्रय लेना क्या उसके लिए सम्मानजनक होगा? क्या यहाँ के वैभव ने उसे भी मोल ले लिया? तू चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमार शकुनी आपके हित में यहाँ रहना चाहते हैं।
0: मेरे हित में? क्या मैं अपंग हूँ? क्या मुझ में विचार शक्ति नहीं है?
1: मुझसे न पूछे तो अच्छा है। सत्य को कह पाने का साहस मुझ में नहीं है। संभवतः सत्य को देख पाने का साहस आप भी न बटोर सके।
0: ऐसा क्या हो गया? मैं नहीं चाहती कि शकुनी यहाँ रहे। यहाँ कितना भी वैभव क्यों ना हो, किंतु उसका यहाँ रहना बहुत अपमानजनक है। मैं चलकर उसे समझाती हूँ।
1: अब बहुत देर हो गई है राजकुमारी। राजकुमार शकुनी का यहाँ रहना सचमुच आपके हित में है। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा जाएगा। उस षड्यंत्र में भीष्म पितामह जैसे तपस्वी व्यक्ति और आपके पिता जैसे तेजस्वी व्यक्ति सम्मिलित होंगे।
0: षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र?
1: वंचना हुई है राजकुमारी। जिसे हम स्वर्ग समझ रहे थे और कुछ नहीं, एक चिरंतानंदकारमय पद की अनंत यात्रा है। ये वैभव, ये सम्मान, पद, सत्ता, सब रेत की नींव पर खड़ा ऐंद्रजालिक भवन है राजकुमारी। अब ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है। हाँ राजकुमारी, सत्य के कुरूप जुगुप्समय स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए। अपने यहाँ तो अपने सभी स्वप्नों का अग्नि संस्कार कीजिए। यदि साहस है तो सुनिए, महाराष्ट्र धृतराष्ट्र ज्योतिहीन है, जन्मांध। सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व का उन्हें बोध नहीं, वो दृष्टिहीन है, दृष्टिहीन।

0: पुत्री गांधारी, तुमने नेत्रों पर पट्टी क्यों बांध ली? खोल दो इसे।
1: नहीं आर्य श्रेष्ठ, ये संभव नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
0: प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा?
1: महाराज, मेरे पति दृष्टिहीन है। उन्होंने संसार का दृश्य सुख एक क्षण के लिए भी नहीं भोगा है। उनके भाग्य में अनंत अंधकार है। उनके दुख के साथ समरस होने के लिए क्या ये आवश्यक नहीं कि मैं भी अंधत्व को अंगीकार कर लूं?
0: किंतु तुमने धृतराष्ट्र को देखा कहां? कल विवाह के समय उसे एक बार देख तो लो।
1: क्या लाभ? क्या वे मुझे देख पाएंगे? जब वे मुझे बिना देखे स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या मैं उन्हें बिना देखे स्वीकार नहीं कर सकती? उन्हें देखकर संभव है मेरे मन में मोह जाग जाए, संभव है मेरी प्रतिज्ञा डगमगाने लगे।
0: तुम अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझती भी हो?
1: धृष्टता के लिए क्षमा करें देव, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछूं?
0: पूछो।
1: आपने कभी अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझा
0: गांधारी,
1: या आपने अर्थ समझकर ही प्रतिज्ञा की थी? हाँ आर्य श्रेष्ठ, पूरा जीवन एकाकी बिताने की भयावह प्रतिज्ञा क्यों की आपने? केवल पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही ना, केवल एक आदर्श स्थापित करने के लिए। फिर मुझे क्यों रोकते हैं?
0: विवाह के पश्चात तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही सापेक्ष हो जाएगा। तुम्हारे निर्णयों के सुख दुख धृतराष्ट्र को भी भोगने पड़ेंगे। मैं फिर कहता हूं, मेरी और तुम्हारी प्रतिज्ञा के आधार ही अलग है। हट, छोड़ दो।
1: अब संभव नहीं है आर्य श्रेष्ठ। राजपुत्र के दृष्टिहीन होने की जानकारी यदि मुझे गांधार में ही मिल गई होती, तो मैं वहीं से आंखों पर पट्टी बांध कर

0: चलती, किंतु मेरे साथ प्रवंचना की गई है।
1: प्रवंचना का विचार मेरे मन में कभी नहीं था गांधारी, किंतु जो कुछ हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूँ।
0: कुरुवंश में ये पहली घटना नहीं है आर्य श्रेष्ठ, आप इसी प्रकार अंबा, अंबिका और अंबालिका को भी उठा लाए थे। उन भोली कन्याओं से आपने ही स्वयंवर का अधिकार छीना था। अंबा का सारा जीवन इसी दुख की आग में चलता रहा।
1: उस घटना का स्मरण न दिलाओ
0: पुष्पी। क्यों ना दिलाऊं? आज जन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के बाद भी आप ऐसे राजपुत्रों के विवाह में रुचि लेते रहे जो स्वयंवर में वरमाला के अधिकारी नहीं हो सकते थे।
1: तुम नहीं जानती गांधारी, मैंने विवाह नहीं किया, किंतु अपने पिता का वंश दीप प्रज्वलित रखने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ।
0: और आपकी वचनबद्धता की वेदी पर मेरी बलि दी जा रही है। आर्य श्रेष्ठ, मैं अंबा नहीं बन सकती, किंतु गांधारी तो बनी रह सकती हूँ। मेरी आंखों पर बंधी यह पट्टी राजनीति, शक्ति और सत्ता द्वारा स्त्री की स्वाधीनता पर किए गए आक्रमण का एक ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह बनकर रहेगी।
1: गांधारी, अपने निहित स्वार्थ के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया, फिर भी यदि तुम्हारे प्रति मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो।
0: मैं क्षमा करने वाली कौन होती हूँ? और अपराध करने के बाद क्षमा मांगने के शिष्टाचार में मेरा विश्वास भी नहीं है। इस प्रवंचना ने संसार के प्रति मेरा विश्वास ही छीन लिया है। अब इस संसार को खुली आंखों से देखने की न इच्छा है न साहस। आर्य श्रेष्ठ, विवाह की तैयारी कीजिए।

0: Mary.
1: मैं?
0: चित्राश.
1: ओह, आप. विवाह के बाद हमारी पहली रात्रि है. आइए, आइए ना.
0: मुझे तनिक सहारा दो गंधारी. न जाने क्यों इन लोगों ने मेरा कक्ष बदल दिया. जानते तो हैं स्थान बदल जाने से मुझे कितनी कठिनाई होती है. अपना हाथ मुझे दो गंधारी.
1: किंतु महाराज, मैं मेरे लिए भी तो.
0: क्या?
1: अच्छा, आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ.
0: क्या हुआ? गिर पड़ी?
1: लगता है किसी पात्र से टकरा गई. फिर प्रयत्न करती हूँ.
0: प्रयत्न? तुम्हें भी प्रयत्न करना पड़ता है?
1: मेरे लिए ये बहुत नया नया है महाराज, किंतु कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा.
0: तो क्या तुम भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. पिताग्रज भीष्म ऐसा नहीं कर सकते. माता सत्यवती झूठ तो नहीं कह सकती. उन्होंने तुम्हारी आंखों की उपमा कमल, हरिण, भ्रमर न जाने किस किस से दी थी.
1: महाराज,
0: गांधारी, मैंने न हरण देखा है न कमल, परंतु सोचता हूँ लोग जिसे सुंदर कहते हैं वैसी तो आंखें अवश्य होंगी तुम्हारी, किंतु तुम भी.
1: क्या माता सत्यवती और भीष्म पितामह ने आपको कुछ नहीं बताया?
0: क्या?
1: महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे स्वयं सहारे की आवश्यकता है.
0: क्या तुम भी ज्योतिहीन हो?
1: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज. मैंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है.
0: क्या?
1: मेरा पातिव्रत यही मांग करता है. यदि आप संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है. मैंने अंधत्व स्वयं धारण किया है.
0: और तुम इसे पातिव्रत कहती हो? ये तुमने क्या किया गंधारी? ये किसने कह दिया तुमसे कि इससे मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा?
1: तो क्या आप इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न नहीं हैं?
0: मैं अंधत्व का दुख जानता हूँ गंधारी. मैं तो सोचता था तुम्हारी आंखों से संसार को देखूंगा. तुम मेरा अधूरापन किसी सीमा तक पूरा कर दोगी. और तुमने स्वयं अंधत्व स्वीकार कर लिया. यानी अब हमारी गृहस्थी में केवल अपूर्णता,

0: केवल दृष्टिहीन था।
1: नहीं महाराज, मैं सोचती थी कि
0: अब भी समय है गांधारी, तोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा। देखो मैं तुम्हारी दृष्टि का सहारा लेकर जीना चाहता हूं।
1: किंतु मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी
0: हूं। गांधारी देख लेना, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा न तुम्हें सुखी बना पाएगी, न मुझे और न कुरुवंश को। ये अंधत्व हमें बहुत महंगा पड़ेगा। ये सत्य सहनीय है, असहनीय है ये सत्य, असहनीय है ये सत्य।

0: महारानी की जय हो। देवी, एक समाचार है।
1: क्या?
0: महारानी कुंती को पुत्र लाभ हुआ है।
1: पुत्र लाभ?
0: हाँ महारानी।
1: बहुत शुभ समाचार है। कुरुवंश की नई पीढ़ी का पहला प्रतिनिधि जन्मा है। महाराज ने महोत्सव के आयोजन की घोषणा कर दी ना?
0: आश्चर्य है महारानी।
1: क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात? क्या ये स्वाभाविक नहीं?
0: आप नहीं समझेंगी महारानी, कभी नहीं।
1: क्या?
0: महारानी कुंती का पुत्र ही अब हस्तिनापुर का।
1: ओह, पगली कहेंगी। क्या तू जानती नहीं कि महाराज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ है? वस्तुतः वे ही महाराज हैं, इसलिए ये निर्विवाद है कि नियमानुसार उनका ही पुत्र राज्य का अधिकारी होगा। महाराज पांडु तो शासन संचालन में महाराज के मात्र सहायक हैं। तेरा भ्रम निरर्थक है।
2: कंधारी,
1: महाराज आ रहे हैं, तू जा।
0: जो आज्ञा महारानी।
2: सुना तुमने कंधारी, महर्षि व्यास का मंत्र सिद्ध हो गया, कुंती ने पुत्र को जन्म दिया।
1: हाँ महाराज, सुना, जानकर सुख भी मिला। महाराज पांडु की स्वीकृति लेकर महारानी कुंती ने धर्मराज का जो आवाहन किया था वो फलीभूत।
2: हाँ गांधारी, मैंने समस्त हस्तिनापुरी को सुसज्जित करने का आदेश दे दिया है। निरंतर 3 दिन तक भव्य आयोजन होगा। क्यों, उचित है ना?
1: सर्वथा उचित है महाराज। वंश वृद्धि का समाचार भला किसे सुखदायक नहीं लगता। किंतु क्या कुंती पुत्र ही अब राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा?
2: उत्तराधिकारी? इस विषय पर तो हमने सोचा नहीं थे गांधारी।
1: महाराज, ज्येष्ठ तो आप हैं, राजा तो आपका ही पुत्र होना चाहिए।
2: होना चाहिए गांधारी, ये ठीक है, परंतु मेरी असमर्थता के कारण राज्य का सारा कार्य संचालन तो पांडु ने ही किया है। क्या उसके पुत्र का कोई अधिकार नहीं होगा?
1: महाराज, कहीं आपके हृदय की उदारता आपके पुत्र के जीवन के लिए अभिशाप न बन जाए।
2: मैं दृष्टिहीन हूँ देवी। यदि पिताग्रज भीष्म चाहते और पांडु हट करते तो क्या मुझे शासनाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था? परंतु उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। मैं इतना कृतज्ञ तो नहीं कि उनके उपकार भूलकर उनकी संतान को उसके अधिकार से वंचित कर दूं?
1: अर्थात हस्तनापुर का भावी शासन?
2: नहीं जानता देवी, अन्य विवादों की भांति इसका निर्णय भी महाराज भीष्म करेंगे।
1: किंतु महाराज, ये तो अनर्थ होगा।
2: धैर्य रखो देवी गांधारी, कौन जानता है हमारे वंशजों के लिए नियति के गर्भ में क्या छिपा है। सुनो, गर्भधारण तो महारानी कुंती और तुमने साथ ही किया था। नियति तुम्हारे पक्ष में भी हो सकती थी, तुम्हारी कोख से भी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ।
1: महाराज,
3: महाराज धृतराष्ट्र की जय हो।
2: कहो सूत।
3: महाराज भीष्म विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: अब हमें अनुमति दो देवी गांधारी, ईश्वर कल्याण करे।
1: मेरी कोख से भी तो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था।

ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्यों नहीं, क्यों नहीं हुआ? पर भले ऐसी कोख का क्या लाभ, ऐसी संतान से क्या मैं बाजी नहीं रह सकती थी? इतना अपमान, इतना अपमान, इतना अपमान।

0: महारानी, एक बार, केवल एक बार।
1: नहीं,
0: देखिए तो कितना तेजस्वी है, कितना चौड़ा माथा, देह की स्वर्ण कांति, सुनहरे केश,
1: आंखें कैसी हैं?
0: बहुत मोहक।
1: काश मैं देख सकती।
0: किस पर किया है?
2: किस पर?
0: दोनों पर। आप दोनों की आकृतियों में जो सुंदरतम है वही इसने पाया है। महारानी, क्या आप इसे देखेंगी नहीं? एक बार तो देख लीजिए।
1: नहीं, मैं इसे नहीं देख पाऊंगी।
0: एक क्षण के लिए देख लीजिए, विश्वास रखिए, मैं किसी से नहीं कहूंगी।
1: नहीं, एक बार देख लेने के बाद मेरा मोह पड़ जाएगा, इसके बाद आंखों पर पट्टी बांधने की इच्छा ही नहीं होगी। रहने दे।
0: कैसा भाग्य लेकर जन्मा है ये बालक। माँ देखना नहीं चाहती, पिता देख नहीं सकता, ना जाने संसार को ये किस दृष्टि से देखेगा।

0: महाराज द्रुपद के यहाँ से अभी तक कोई समाचार नहीं आया।
1: क्या आपको विश्वास है कि द्रौपदी दुर्योधन का वरण करेगी?
0: क्यों नहीं, दुर्योधन से कौन स्पर्धा कर सकता है।
1: हाँ, कुंती के पुत्र अब कहाँ है, उन्हें तो वर्णावत का लाक्षाग्रह खा गया।
0: बहुत दुखद प्रसंग है ये गंधारी। कई बार हृदय में आशंका उठती है कहीं इसमें दुर्योधन का कोई षड्यंत्र तो नहीं।
1: इस आशंका का कारण?
0: कोई विशेष कारण नहीं, दुर्योधन पांडवों के प्रति सदैव ईर्ष्यालु रहा है। फिर शकुनी की मंत्रणा और साहचर्य सुखद तो हो नहीं सकते।
1: महाराज, पांडवों के प्रति आपका अतिरिक्त मोह ही दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण रहा है।
0: ये क्या कह रही हो गंधा?
1: हाँ महाराज, बाल्यकाल से ही भीम और अर्जुन मेरे पुत्रों को सताते रहे हैं, पर आपने कभी उन्हें प्रताड़ित नहीं किया। यदि दुर्योधन भीम पर अंकुश न रखता, समय समय पर उसे पराजित न करता, तो आज मेरे पुत्रों में से अधिकांश तो जीवित ही न रहते।
0: जानता हूँ गंधारी, सोचता था पांडु नहीं रहे तो पांडवों की चिंता का भार भी मुझ पर ही आ पड़ा है। सचेष्ट था कि अनजाने में भी कहीं पांडवों के प्रति मुझसे अन्याय न हो जाए, इसीलिए जब तक पांडव रहे उनके प्रति सहृदय रहा। संभव है इसी भावना ने मुझे अपने पुत्रों के प्रति किंचित निर्मम बना दिया। तुम समझते हो मैं अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करता?
1: नहीं महाराज, मेरा ये आशय कदापि न था।
2: महाराज।
0: कौन? विदुर, आओ आओ।
2: बहुत शुभ समाचार है महाराज।
0: अच्छा?
2: द्रुपद नरेश के यहाँ से अभी अभी दूत आया है।
0: स्वयंवर का क्या हुआ?
2: हमारा कुल शक्ति संपन्न हो गया है महाराज। द्रौपदी अब पुत्र वधु के रूप में हस्तिनापुर आ रही है।
1: मुझे विश्वास था कि दुर्योधन अवश्य जीतेगा।
2: क्षमा करें देव, द्रौपदी का वरण दुर्योधन ने नहीं अर्जुन ने किया है।
1: अर्जुन ने?
0: अर्जुन जीवित है?
2: हाँ।

0: आज भाग्यशाली पांडव जीवित हैं।
1: कैसे?
0: लाक्षाग्रह का निर्माण किसी का षड्यंत्र था महाराज। पांडवों को उसका आभास हो गया था, वे वहां से वेश बदल कर बच निकले। स्वयंवर की शर्त पूरी होने पर ही पांडवों ने अपना वास्तविक परिचय दिया।
1: विदुर, तुम्हारी शुभ सूचना से मुझे असीम आनंद हो रहा है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। समस्त हस्तिनापुरी को सज्जित किया जाए, मंगलोत्सव का आयोजन हो, पांचाल राज की पुत्री का भव्य स्वागत किया जाए।
0: दुर्योधन असफल हुआ, पांडव जीवित है।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। और आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। आइए आज सुनते हैं इस गपशप का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

लड़की ने टेरेंस को गले लगाया। टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकान जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप कोरियोग्राफी करते थे?
0: हाँ, लेकिन
1: स्कूल में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके न्यूएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं,
0: एब्सोल्युटली,
1: वो तो आप जानते नहीं थे,
0: एब्सोल्युटली।
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया?
0: फिल्मी जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और बड़े कलाकार को, बड़ी फिल्म थी, बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म, फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए, वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली, तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था,
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं, वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, तो वो लोगों के नजर में, अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है, और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूं कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया, लोगों को लगा कि मैंने बड़े नाम बड़े फिल्म के साथ जुड़ गया हूं, तो अगर आशुतोष जी ने विश्वास किया है तो इस बच्चे में कुछ ना कुछ होगा, तो मुझे सेकंड फिल्म मिल गई जो झंकार बीट्स थी, वो भी फिट हो गई।
1: झंकार बीट अपने आप में एक अलग फिल्म थी,
0: करेक्ट,
1: जिसमें खास तौर से राहुल देव बर्मन का जिक्र था,
0: करेक्ट,
1: आरडी बर्मन साहब का, और अगर आप देखें तो राहुल देव बर्मन के हर एक गाने में आज भी वही कशिश है,
0: करेक्ट,
1: वही ताजगी है, जबकि वो उनकी साज से निकले होंगे,
0: करेक्ट,
1: तो उन गानों पर, उस संगीत पर कुछ, उसमें कुछ नयापन लाना और फिर उस पे डांस, वो एक अलग चैलेंज नहीं था आपके लिए?
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि धुन जो थी, जो विशाल शेखर पहली फिल्म थी उनकी, और सुजॉय घोष की भी पहली फिल्म थी, वो जो तो धुन बना रहे थे, इट वाज मतलब यू नो एक वेरिएशन था ऑफ आरडी बर्मन को लेकर और उसके संगीत को समझकर, वो आज की तारीख में वैसा वाला संगीत बना रहे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बने उसी टेम्पलेट में, लेकिन एक नया ट्विस्ट देना था, एक नया अंदाज देना था, आज की पीढ़ी जिसके साथ जो कनेक्ट कर पाए, तो वो इंस्ट्रक्शन भी सुजॉय ने दिया था कि मुझे थोड़ा पुराना वाला फ्लेवर चाहिए और थोड़ा आज का।
1: उसमें डांस में फिर क्या किया, मैं वही जानना चाहता हूँ आपने।
0: तो डांस में इट वाज नॉट सच अ डांस ओरिएंटेड सॉन्ग, इट वाज मोर अबाउट, इट वाज अ रॉक बैंड, तो वो बैंड है, फिल्मी में भी वो उन लोग सब संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो उनको नाचना नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनको फिल्माया गया था, एक रॉक स्टार वाली फील आनी थी, एक रॉक बैंड कैसे आते हैं, उनके बीच में कैसा छोटी छोटी अनबन होती है, और कैसे वो अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन रात को वो आके यू नो गाते हैं और साथ में मिलते हैं, तो वो वाली कहानी थी। तो उस किरदार के हिसाब से मैं बन गया था, आई डिडंट हैव मच ऑफ डांसिंग टू डू, बट पिक्चराइजेशन हैड टू बी डन वेल। एज अ कोरियोग्राफर समटाइम्स हर गाना आपको आर्टिस्ट को नचवाना नहीं पड़ता, सिचुएशन के हिसाब से आपको वो दर्शाया जाना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे, देखने में फील करे और वो कैरेक्टर से बाहर ना निकले। ओनली ड्रीम सीक्वेंस जब

रिया सेन और शायन मुंशी वो एक्टर भी थे, उनका एक गाना था जो शान ने गाया था, दिल ने तुमको चुन लिया है तुम भी मुझको चुनो ना चुनो ना, ला ला ला ला ला ला ला ला, बहुत अच्छा प्यारा गाना था। वो गाने में ड्रीम सीक्वेंस में थोड़ा डांसिंग दिखाया गया था, बट मोस्टली इट वॉज मोर ऑफ अ फील का गाना था।

एक्चुअल फिल्म में डांस एकदम कहर वाला डांस जो किया वो तीसरी फिल्म में आया नाच, जो अभिषेक बच्चन और अंधरा माली के साथ था, और जो इसके डायरेक्टर साहब थे राम गोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंतरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज में। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज्यादा पसंद था, तो मैं अतरंगी चीजें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पे, बट कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ चीनो सर या पैर नहीं था, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया अंतरा माली को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपने फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और राम गोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाचा पे, कोरियोग्राफी की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हटके है, जो हटके सोचता है। तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी अंतरा माली जी, और वो हर एक चीज समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो वो सब चीजें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज वो अपने फिल्म में नाच में करवाना चाहती थी। तो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारा लोगों ने फोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही कर दिया, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नजारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा, मैंने बोला कि जो लोग करते हैं वो नहीं करूंगा मैं, कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत दिख कर आया और लोगों को पसंद आया। सो इन माई क्रिएटिव जर्नी आई हैव डन ओनली 10 फिल्म्स, नॉट मच, बट दिस इज वन ऑफ देम, दैट काइंड ऑफ यू नो, एक अलग, एक पहचान मुझे इस

0: अच्छा, अभी आपने इसके पहले ये बात कही कि अंतरा माली ने आपको एक स्टेज शो में देखा और फिर और आपने ये बताया कि स्टेज शोज में बड़े अतरंगी से डांस आप करते थे, तो गाने भी अतरंगी चुनते होंगे?
1: बहुत ही,
0: किस तरह के? क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी हैं हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं, अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं, तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे?
1: वेल, अगर हिंदी गाने तो यूज नहीं करते थे, बिकॉज वी यूज टू यूज यू नो नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे. लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो मतलब यू नो देसी फिल्मों से थे. कुछ गाने बहुत ही यू नो दिल को करीब छूने वाले, जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ए जिंदगी गले लगा ले. और मुझे गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे, गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था.
0: अच्छा अच्छा.
1: तो मेरी कहानियां होती थी, तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे, जहां पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है. तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने या मासूम के गाने या ऐसे फिल्मों के जहां पे बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो बहुत ही यू नो सोचकर, या साहिर लुधियान के गाने, सभी मुझे पसंद थे. एक गाना था जो मैं जूझ रहा था लाइफ में, संसार से भागे फिरते हो,
0: चित्रलेखा.
1: चित्रलेखा, करेक्ट सर, मीना कुमारी. तो वो गाना मेरे लिए was a pivotal moment, जब मैंने वो गाना सुना और जो जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि यू नो मटीरियलिज्म इज राइट, ओके, और इज इट कि सब कुछ त्याग देना, भोग में है या त्यागने में, तो क्या है? सो आई थिंक ऐसे गाने जब मैंने सुना करता था, माइंड की क्या सोच है, और उसको फिल्मों में दिखाया गया था. सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट, क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ, लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोरियोग्राफर, बिकॉज उससे कोरियोग्राफी बनती है. तो ये गाने मेरे लिए दिल के बहुत करीब रहे.

0: अभी आपने जो ये बातें की, गजल की बात की, लिरिक्स की बात की, आपने बात की कि कहीं कोरियोग्राफर्स उससे बनते हैं, ये एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली?
1: नहीं ली।
0: आपने कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो फिल्मों में ऐसे कोई बहुत
1: असिस्ट भी नहीं,
0: फिल्में भी नहीं की या किसी को असिस्ट भी नहीं किया, बावजूद इसके आप वो जो कोरियोग्राफी के लिए जो एक खास चीज होती है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, देखिए ऐसा एक डांस देख के डांस कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन एक डांस को खुद क्रिएट करना, एक लिरिक्स को डांस में कन्वर्ट करना,
1: करेक्ट,
0: वो एक अलग चीज है जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट कह सकते हैं जिसको,
1: अंदर से आता है।
0: इसको आपने महसूस कैसे किया? आपने इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, देखिए गॉड गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट आप बाहर कैसे निकाल कर, आपने की जो प्रोसीजर है वो कैसे सीखी, उसको कैसे समझा आपने?
1: सो कोरियोग्राफी ना दो तरीके से होती है, आप गाने को सुनते हो और गाना आप पर हावी हो जाता है और आपका शरीर उस गाने को सुनकर, उसके कानों के ध्वनि को सुनकर आपका अंग डांस करने लगता है, वो एक तरीका है। लेकिन मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ, मैं म्यूजिक लगाता ही नहीं हूँ, मैं जो थॉट है, जो सोच है, उसको लेके चलता हूँ और मेरे असिस्टेंट को बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मुझे गौर से देखना और याद रखना और मुझे कॉपी करते रहना, क्योंकि मुझे आपको अगर बोलोगे कि अभी वही चीज वापस करो तो मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन जो भी निकल रहा है मेरे अंदर से उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीजें अच्छी होंगी कुछ चीजें नहीं, तब उतना ध्यान नहीं था कि कैमरा भी लगा सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उस जमाने में मैं अपने असिस्टेंट पर ज्यादा निर्भर करता था, तो मैं स्टूडियो में जाता था और मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं डांस करता था विदाउट म्यूजिक, और फिर मैं सोच रहा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये कौन से म्यूजिक पे अच्छा लगेगा, फिर मैं म्यूजिक को सुनता था, बोलता कि ये म्यूजिक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है, तो इट वॉज ऑलवेज हाफ हाफ, पहले मैं आगे बढ़ता था अपना कुछ करता था ताकि वो हावी ना हो जाए मुझ पर, और फिर मैं म्यूजिक को सुनता था और फिर उसको कंबाइन करता था, फिर लव्स कभी कभी जो अल्फाज जो है अगर वो अच्छे हैं तो वो कभी कभी यू नो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कोरियोग्राफी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्रिएटिव लोगों में, कि आप एक ही म्यूजिक को सुन के 10 चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा, इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक समझ चाहिए, वो समझ होता है इट्स कॉल्ड एन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस, क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे रूप में इसको दिखा सकते हो, लेकिन कौन सा एकदम सही होगा, एकदम स्पष्ट होगा, एकदम सक्षम होगा और सूक्ष्म भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चीजें आप कर सकते हैं, बहुत लिटरल भी कर सकते हो, मतलब जो आप लव्स बोला है वही को आप दिखा रहे हो, तो फिर वो नो जैसे आप डेफ एंड डम वाला डांस हो गया, फिर वो वाला नहीं होना चाहिए कि एकदम लिटरल आप को ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन क्या आप उसको एक मेटाफोरिक यू नो एक मेटाफोरिक रूप में अगर दे सकते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू हैव टू यूज योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उसी एक म्यूजिक

0: या गाने या शब्द को सही चीजों को जोड़कर उसको बहुत ब्यूटिफुली कन्वे कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए आपको कॉम्पोजिशन टेक्निक। और कोरियोग्राफी कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट, मतलब जो गाना जो आप डांस कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव क्या है। अगर आपकी बॉडी झट से एक स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है, उसके बाद आप फिर से स्ट्रांग मूवमेंट मत कीजिए, एक थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट कीजिए ताकि वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे चढ़े। अगर आप एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट कर रहे हैं, उसके बाद एक छोटा वाला मूवमेंट कीजिए। अगर आप बहुत ही मतलब अगर आप एक बार मतलब आठ काउंट के लिए सामने होके कैमरा के सामने करें, तो कई बार यू नो थोड़ा मुड़ के आप थोड़ा डांस की ताकि वो विजुअल थोड़ा बदले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ विजुअल एंड हाउ यू आर यूजिंग स्पेस। जो स्पेस है आप किस तरीके से यूज करते हैं और आपका अंग किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो क्या जो आप कर रहे हो वो मैच कर रहा है म्यूजिक और शब्दों के साथ, ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग विधि है जानना कि कैसे करते हैं। और इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन। ये झट से नहीं आता, यू हैव टू वर्क ऑन इट। और फिर जाके आप बहुत ही जब प्रैक्टिस करते हो और बहुत दिमाग लगाते हो, कई बार अंदर से आ जाता है और एक सेकंड में वो सही आ जाता है। कभी कभी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर उसको यू नो फनल करना पड़ता है, इसको एक एसेंस में मतलब इसको एक रिड्यूस करना पड़ता है,
1: छानना पड़ता है
0: वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर। तो उसको छानना पड़ता है ताकि वो सही मात्रा में ज्यादा ना हो ना कम हो। इसकी जो समझ है ये बहुत फाइन इंटेलिजेंस है।

0: यही मैं चाहता था कि हमारे जो श्रोता है वो इस बात को समझे कि एक कोरियोग्राफी होती क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी फिर अगली फिल्म कौन सी रही? जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही।
1: हाँ, बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी फिल्में आई, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इनविटेशन आया ताकि मैं कोरियोग्राफर और जज बनूं, और मुझे ये जो इनविटेशन आया बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ जज नहीं करने वाला था लेकिन मैं कोरियोग्राफ भी करने वाला था, और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर्स के साथ काम करूं जो अब जीजा मेहनत करें और मुझसे कोई सवाल ना करे, और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूं वो मौका मिले, क्योंकि जब फिल्मों में जब आप काम करते हो तो
0: लिमिटेशन
1: होती है।

0: आर्टिस्ट कितना कर सकता है, एक दो कट कट कट करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि गाना का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज्यादा नहीं नाचता तो तुम जबरदस्ती को नहीं नचवा सकते, और या सिचुएशन सिचुएशन में आप यही कर सकते हो तो आप बहुत सारी चीजों से बंध जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखाना है, सिर्फ डांस, लेकिन कहानियां भी दिखानी है, क्योंकि कहानियां के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें एक नैरेटिव हो, इसमें एक कहानी हो, इसमें एक इमोशन छुपा हो, तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगता है। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस इंडिया डांस को रिजेक्ट किया था, इनफैक्ट हम पहले चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर्स, बड़े बड़े लोगों को लिया गया था पहले, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने ना कर दिया क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था, क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं, लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट्स, वो एक अलग ही विधि है।
1: टेरेंस, मैं उस पूरी जो टीवी की दुनिया है उसमें हम जाएंगे
0: जरूर,
1: लेकिन उससे पहले कुछ गाने भी हम सुनते चलेंगे।
0: बाहों में

0: वो कोरियोग्राफी होती है, जो डांस होता है वो कट कट करके होता है।
1: करेक्ट।
0: मान लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भाई इसको डांस आता नहीं, लेकिन वो बराबर 7 मिनट तक या 6 मिनट तक पर्दे पर डांस करता हुआ नजर आता है। आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअली जो फिल्मी कोरियोग्राफी होती है, फिल्मी डांस जब शूट होता है तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो किस तरह से कट कट करके जाती है।
1: तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपने एक गाना सुन रहे हैं, गाने में बीट्स होती हैं, ओके, एक एक ताल होता है, 1 2 3 4,

0: सेट करना पड़ता है। तो जब हम शूट करते हैं तो हम पिक्चराइज करते हैं कि ये चार बीट पे हम ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये है कि चाहे आर्टिस्ट अच्छा डांस करे या ना करें, लेकिन जो फिल्म का जो माध्यम है उसमें हम बहुत ग्लैमराइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल से चार काउंट लिया, दूसरे एंगल से क्लोजअप मारा वही चीज, फिर तीसरे एंगल से मूविंग ट्रॉली शॉट लगा दिया। तो जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट को सहूलियत मिल जाती है या कन्वीनियंस हो जाता है कि वो सिर्फ चार स्टेप करें या आठ स्टेप करें और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उसके बाद कट लगने वाला है, क्योंकि एक दूसरा कट आएगा। मान लो कि आपने 16 काउंट का भी कोरियोग्राफी रख दिया, अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूंगा हमारे अभी जो प्रथा चली आ रही है 20 साल से कि हम बहुत ही हमारे पास ठहराव नहीं है, हमको सब कुछ ना अच्छा दो काउंट ऐसा आ गया, आर्टिस्ट ने पूरा शॉट दिया है डांस का, लेकिन नहीं ये नहीं जम रहा है, अभी थोड़ा कट करके ये लगाएंगे, आप कट करके वो एंगल लगाएंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट अगर अच्छा आर्टिस्ट हो, जैसे माधुरी जी हो या ऋतिक हो या गोविंदा जी हो, उनको आपको कट करने की जरूरत नहीं है, वो इतना अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक एंगल से भी बनता है वो शॉट, जरूरी नहीं। लेकिन नहीं, आज की पीढ़ी में सब फट फट फट फट फट, तो एडिटर ज्यादा नाचता है क्योंकि जबरदस्ती के फट फट कट, और फिर वो झामे जो होते हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन वो ना वो एकदम जूम इन करके झामे सक सक, फिर वो ब्लो ड्रायर, अननेसेसरी ब्लो ड्रायर, हर गाना सेम टू सेम लगने लगता है। अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही जरूर कहूंगा कि एक मोनोटोनस चीजें होने लगती है। अगर वो एक चीज अच्छी भी है तो वही चीज को, अच्छी चीज को 30 गाने में आप देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम वही फॉर्मेट वही चीज दिख रही है, इनोवेशन नहीं होता। अगर एक चीज सक्सेस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर सभी लोग बोलते हैं अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ, सिर्फ गाने के लव्स और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट वही का वही है। सो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फट फट काटो, फिर झामे करो, फिर क्लोजअप लो, फिर स्टडी कैम लगाओ। लाइक आई फील मास्टर जी, जैसे गणेश मास्टर जी और दूसरे हैं मास्टर जी जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, सरोज जी, उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट था, लंबे लंबे कट्स, आई थिंक दैट वो सिनेमा वापस आना चाहिए। एंड कुछ कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं कुछ हद तक, और आर्टिस्ट को भी पता चल गया है कि नाउ वी शुड ऑल्सो नॉट कीप सच शॉर्ट कट्स। तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं है उनको भी हम अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है तो मैं सिर्फ आपका क्लोजअप ले लूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप आंखों से खेल लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है, आप बहुत ही ऑड लग रही हैं। कुछ कुछ हैं एक्ट्रेस जिनको डांस नहीं आता और वो मॉडल्स हैं, लंबी हैं, उन्होंने कभी सीखा नहीं है लेकिन अभी उनको करना पड़ रहा है, तो वो जबरदस्ती करते हैं, वो सीख लेते हैं, लगता है वो बहुत स्ट्रेस में डांस कर रहे हैं, वो मजे नहीं ले रहे हैं। कुछ कुछ हैं, ज्यादा नहीं है, आजकल के सभी जो पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं वो सब ना सीख कर आते हैं, बट कुछ दो तीन ऐसे रहे हैं मेरे लाइफ में भी कि मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूंगा, और अगर लूंगा तो वाइड लूंगा, भर भर के डांसर, ताकि वो जो गलतियां हैं छिप जाएं और उनको सिर्फ चार या पांच या आठ काउंट का डांस सिखा के बंद करा दूंगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होने लगती है या वो याद करने लगता है कि नेक्स्ट क्या है और वो चेहरे पे दिखने लगता है। तो इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि ये कटा हुआ है, उनको लगता है कि ये लगातार निरंतर रूप से चला आ रहा है।
1: तो दोस्तों आप समझ गए ये जो कट कट की दुनिया है किस तरह से आपके सामने बट बट के आती है। बहरहाल ये एक चीज बहुत टेक्निकल थी। ध्यान से जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है जिनका डांस से बहुत लगाव होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको घेरे हुए, या ये कह लें कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त हैं अपने नशे में, टीवी की दुनिया। तो ये टीवी की दुनिया में अब जहां तक मुझे ध्यान आता है कि मैं भी काफी समय से देख रहा हूं, मुझे लगता है जब से शुरू हुई है ये दुनिया, रियलिटी शोज का जमाना जब से शुरू हुआ है, चाहे वो डांसिंग शोज हो या सिंगिंग शोज हो, गाने तो विविध भारती के ही बजते हैं।
0: करेक्ट, बहुत सारे गाने, एक जो अभी जिसके एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं वो गाना भी पुराना गाना है। हाँ। जो मैंने नौरा के साथ किया वो ज्यादा हिट हुआ है। बहरहाल मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं।
1: कौन सा?
0: भीगी भीगी रातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है वाला गाना,
1: अजनबी।
0: हाँ, अजनबी वही गाना लेकिन मॉडर्न स्टाइल में, आज की तारीख में डांस बहुत आगे बढ़ चुका है, तो लोगों को ये मजा आता है कि एक पुराना गाना और फिर मॉडर्न

0: आप बात कर रहे थे कुछ ऐसे डांसर्स की कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज में डांस नहीं होता,
1: करेक्ट,
0: लेकिन फेस पे आंखों से खेल जाते हैं। आपकी नजर में कौन सी हीरोइन बहुत अच्छी डांसर है?
1: आज के जमाने में जो बहुत अच्छे हैं, मैं जरूर कहूंगा कि माधुरी जी बहुत अच्छा करती है। आजकल के तारीख में आज की जो नई पीढ़ी है सभी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो इंजॉय नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे माधुरी और गोविंदा जी ना, जब वो कोरियोग्राफी सीखते भी है ना, तो वो अपना एक एलिमेंट लेके आते हैं, उनको खुद को इतनी खुशी महसूस हो रही है और वो खुशी दिखती है। दूसरे लोगों में लगता है कि नहीं, हमें उसको एक परफेक्ट बनाना है, तो वो परफेक्शन के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनको एंजॉय भी करना है।
0: परफेक्शन के चक्कर में वो रोबोट हो जाता है।
1: हाँ, तो वो मेरे बाल ऐसे हैं, अच्छा मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अच्छा ये पोस्चर सही है, हाँ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, या मैं सुंदर लग रहा हूँ, या मेरा एटीट्यूड सही है, कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ऑल्सो दे आर टू ट्रैप्ड इन दैट यू नो की परफेक्शन, तो कहीं ना कहीं दे डोंट रियलाइज की एक मेटाफिजिकल चीज होती है एनर्जी एंड वाइब। आकार ओके इज अ फिक्स्ड रूप, फिजिकल रूप है, लेकिन एक चीज है एनर्जी और वाइब, वो फिजिकल नहीं होती, वो मेटाफिजिकल होती है, वो लोग भाप लेते हैं। तो लोग जो आप देखते हैं, हाँ रूप तो देख लेते हैं, लेकिन इसकी जो वाइब है ना वो नहीं आ रही,
0: आत्मा नहीं पकड़
1: सुंदर है लेकिन आत्मा नहीं, मतलब सब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइब नहीं आ रही है, क्योंकि वो इंसान ने उसको अपना नहीं बनाया। एंड दैट इज वन थिंग दैट माधुरी जी एंड इवन गोविंदा जी डू, एंड दैट्स द वन थिंग दैट आई रियली एडमायर अबाउट देम।

0: Yusuf, Ritik, Shahid, all very good. Very good dancers. Ranveer also is very good dancer. Aur bahut mehnat bhi karte hain. So it's nice to see the young dancers. It's just that 19-20 का फर्क है, लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है।
1: सही कह रहे हैं।
0: हाँ, दूसरे एक जमाने हुआ करते, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कौन अच्छे डांसर नहीं हुआ करते थे, कैसे कोरियोग्राफर्स छुपाते थे, द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉट बीइंग अ गुड डांसर इज मीना कुमारी जी। शी वाज नॉट अ ग्रेट डांसर, लेकिन उनके फिल्मों में, पाकिजा में उनको नाचना है, तो कई गानों में ना उनकी एक डबल हुआ करती थी। कल्पना अय्यर जी ने बहुत सारे टाइम उनका डबल, यू नो, डबल के रूप में घूंघट में अगर वो गाना देखा है, वो कल्पना अय्यर जी ने किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट इज वन। मीना कुमारी जी का एक खास बात थी कि जो ये शरीर नहीं कर पाता था,
1: फेस करता,
0: ये कर पाता था। तो अगर आप शॉट्स देखेंगे ना, तो वो सिर्फ आंखों से खेल रही हैं और वो आंखों से बहुत कुछ कह जाती हैं। उनको सिर्फ एक इतने शोल्डर से और ये आंखों को देखने में और वो फीलिंग के साथ जो वो कर रही है ना, उसी में पैसा है। उसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। तो उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी शॉर्ट कमिंग से, इवन विद रेखा, शी यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड। रेखा इज नॉट अ ब्रिलियंट डांसर, उमराव जो हमें बहुत नचवाया है, लेकिन इफ यू सी इन कंपैरिजन, वैजयंती माला इज नेक्स्ट लेवल, हेमा मालिनी जी इज नेक्स्ट लेवल। ये साउथ की एक्ट्रेसेस है ना, उनके संस्कृति में यह है कि पहले डांस सीखो, और पेरेंट्स जबरदस्ती लड़कियों को और लड़कियों को सिखाते थे। कमल हसन भी जी सबसे बढ़िया डांसर थे, उन्होंने भी भरतनाट्यम सीखा था। तो जो साउथ के जो हीरोज या हीरोइंस थे, उनको ऑलरेडी वो सीख कर आया करते थे, तो उनको समझ थी। सो द बेस्ट एग्जांपल इज, आई वुड से, इज वैजयंती माला जी, श्रीदेवी जी, हेमा मालिनी जी, वहीदा रहमान इज नॉट फ्रॉम द साउथ बट शी वाज, आई वुड से, ये चार ऐसे कलाकार थे।
1: एक और नाम है पद्मिनी,
0: पद्मिनी वो इसकी बहन थी ना, वैजयंती माला की बहन थी ना वो पद्मिनी। सो दे वर बोथ क्लासिकली ट्रेन्ड, साउथ की थी वो, सो दे वर वेरी क्लासिकली ट्रेन्ड। और वो क्या करते थे ना सर, ये अभी शायद लोगों को पता नहीं, लेकिन वो जब साउथ से आई थी वैजयंती माला, वो अपने कोरियोग्राफर को लेकर आई थी कि अगर मैं डांस करूंगी तो इनके साथ करूंगी। तो इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं, मेरी पहचान डांस है, तो मैं अपने टीम को ही लेकर आऊंगी। वेयर एज अदर्स डिडंट नो हाउ टू डांस।

आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। श्रोताओं, शाम के 5 बज चुके हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: कभी कभी सुबह की हल्की सी हवा भी कुछ कहती है, जैसे वो हमें याद दिला रही हो कि हर नया दिन एक मौका लेकर आता है, कुछ महसूस करने का, कुछ सीखने का और कुछ अच्छा शुरू करने का। और आज की ये शाम भी कुछ ऐसी ही है जिसमें एक अलग ही सुकून है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने रजत। और अगर ध्यान से सुना जाए तो हर आवाज के पीछे एक कहानी छुपी होती है, कोई खुशी की, कोई उम्मीद की, तो कोई उन अधूरी बातों की जो दिल में रह जाती हैं। लेकिन युवानी पर हम कोशिश करते हैं कि हर आवाज को एक नया अर्थ मिल सके।
0: बिल्कुल, और सबसे खास बात यह है कि युवानी सिर्फ एक माध्यम नहीं, ये एक एहसास है। यहाँ न तो चेहरे दिखाई देते हैं, न ही कोई दूरी महसूस होती है, बस होती है आवाजें, और वो आवाजें जो सीधे दिल से जुड़ी जाती हैं।
1: जैसे इसी के साथ आज हम आपसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवानी में। कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं निकिता
0: और मैं हूं रजत।
1: दोस्तों, कभी सोचा है जब कोई अनजान आवाज भी आपको अपना सा लगने लगे तो समझो कहीं ना कहीं वो जुड़ाव दिल से बना है, और यही जुड़ाव हमें सबसे खास बनाता है।
0: हाँ, और आज हम आपके लिए कुछ ऐसी ही खास बात लेकर आए हैं, कुछ हल्की फुल्की बातें, कुछ दिल को छू जाने वाली यादें, और साथ में ऐसा संगीत जो आपके मूड को और भी बेहतर बना देगा।
1: और हाँ, आज के सफर में हम कोशिश करेंगे कि हर पल आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान जरूर आए, क्योंकि अगर आप मुस्कुराते हैं तो समझिए हमारा काम सफल हो गया।
0: दोस्तों, कहते हैं ना, कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं जाती, वो दिल

0: से किसी कोने में उतर जाती है और जब वो आवाज़ अपना सा एहसास दे तो हर शब्द एक कहानी बन जाता है।
1: और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं बल्कि हवाओं में बिखरती हैं, सुनी जाती हैं, महसूस की जाती है और हमेशा याद रह जाती है।
0: तो दोस्तों, आज की इस शाम में भी हम आपके लिए कुछ ऐसे ही एहसास लेकर आए हैं जहाँ हर बात में होगा अपनापन, हर पल में होगी थोड़ी सी मुस्कान
1: और हर लम्हा आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो आपकी तरह सोचता है और आप ही की तरह महसूस करता है।
0: तो आइए दोस्तों, इस सफर की शुरुआत करते हैं एक नई सोच, एक नई आवाज और एक नए एहसास के साथ।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ पेश है कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, ऑनलाइन योग सत्र का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करने और यूट्यूब लिंक के माध्यम से योग सत्र को ज्वाइन करने के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप से मिस कॉल दीजिए। नंबर है 1800-315-7001। नंबर एक बार फिर से सुनिए, 1800-315-7008। याद रखिए, आपको केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही इस नंबर पर मिस कॉल देनी है। इसके बाद तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आए व्हाट्सएप संदेश को खोलें और चैट बॉक्स में विवरण भरकर अपना पंजीकरण पूरा करें और इसके बाद 14 जून को प्राप्त लिंक से अपने फोन पर लाइव आएं। दिनांक याद रखिए, 14 जून सवेरे 6:15 से 7:35 तक लाइव यूट्यूब योग सत्र से जुड़ने का सुनहरा अवसर। एक विश्व, एक योग, एक रिकॉर्ड, करोड़ों लोग, एक उद्देश्य।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम यवानी। कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं निकिता
1: और मैं हूं रजत।
0: रजत, कभी आपने गौर किया है जिंदगी में जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है उसके पास कई रास्ते होते हैं। एक जहां उसकी सफलता उसे और विनम्र बनाती है और दूसरा जहां वही सफलता उसके भीतर अहंकार पैदा कर देती है। कई बार हमें लगता है कि थोड़ा ज्ञान, थोड़ी उपलब्धि, थोड़ी पहचान मिलते ही इंसान बदलने लगता है। बातों में कठोरता आ जाती है, व्यवहार में दूरी आ जाती है और धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि अब उसे किसी की कोई जरूरत नहीं है।
1: हाँ बिल्कुल। लेकिन निकिता, हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिस पल इंसान अपनी योग्यता पर घमंड करने लगता है ना, उसी पल उसकी सीखने की क्षमता कम होने लगती है। और एक बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि हमें सीखते रहना है, घमंड नहीं करना।
0: बिल्कुल रजत। और आज का विषय हमारा इसी पर बेस्ड है कि जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण संतुलन है, योग्यता पर गर्व हो, घमंड ना हो।
1: दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है, सम्मान, सफलता और पहचान। और जब मेहनत रंग लाती है ना, तो अपने हुनर और योग्यता पर गर्व होना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए।
0: वाकई, क्योंकि गर्व हमें याद दिलाता है कि हमने संघर्ष किया है, गिरकर उठे हैं, खुद को बेहतर बनाया है। लेकिन समस्या वहां शुरू होती है जब यही गर्व धीरे धीरे अहंकार का रूप ले लेता है।
1: बिल्कुल निकिता। और गर्व और घमंड के बीच एक बहुत पतली सी रेखा होती है। गर्व कहता है कि मैंने मेहनत की है, लेकिन घमंड कहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं।

0: और जब इंसान ये सोचने लगता है कि उसे अब किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो समझिए उसकी प्रगति वहीं रुकने लगती है।
1: वाह, क्या बात कही निकिता। और दोस्तों, एक बात मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि सच्ची योग्यता ना कभी शोर नहीं करती, उसे हर वक्त खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो सच में काबिल होता है वो अपनी काबिलियत को व्यवहार से दिखाता है, शब्दों से नहीं।
0: बिल्कुल, और इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े विद्वान, कलाकार, वैज्ञानिक, जितने भी महान लोग हैं वो उतने ही विनम्र थे। क्योंकि ज्ञान का पहला संकेत यही है कि इंसान समझे जो मैं जानता हूँ उसके आगे भी बहुत कुछ जानना बाकी है।
1: बिल्कुल सही कहा निकिता। घमंड अक्सर इंसान को अकेला कर देता है, क्योंकि अहंकार रिश्तों में दूरी लाता है, संवाद को कम कर देता है और संवेदनशीलता तो छीन ही लेता है।
0: और विनम्रता,
1: विनम्रता तो
0: वो इंसान को लोगों के दिलों तक पहुंचाती है। विनम्र व्यक्ति सम्मान मांगता नहीं है, अपने व्यवहार से खुद ही पा लेता है।
1: तो अगर आपके पास भी योग्यता है, प्रतिभा है, सफलता है, तो उस पर गर्व कीजिए। लेकिन इतना याद रखिए दोस्तों कि हर ऊंचाई पर टिके रहने के लिए जमीन से जुड़े रहना जरूरी होता है।
0: क्या बात है, क्योंकि अंत में आपकी पहचान सिर्फ आपकी सफलता से नहीं बल्कि उस सफलता को लेकर आपके स्वभाव से बनती है।
1: बिल्कुल। अब जाते जाते बस इतना ही कि योग्यता आपको ऊंचाई तक ले जाती है, लेकिन विनम्रता आपको वहां बनाए रखती है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और सुनाते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों, अगर कोई मुश्किल आए तो सबसे पहले थोड़ा रुको, एक लंबी और गहरी सांस लो। ये बात अक्सर हमारे बुजुर्ग हमसे कहा करते थे।
1: दोस्तों, आज हम सांसों के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि योग के 8 अंगों में से एक प्राणायाम भी है जो विशेष महत्व सांसों पर देता है। और योग और प्राणायाम हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, हम जानेंगे प्रतिदिन योग करने वाले हमारे एक युवा साथी यश त्रिपाठी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को भी दे दीजिए।
2: धन्यवाद। मैं यश त्रिपाठी बीएससी बीएड का स्टूडेंट हूँ। अभी हमारे एग्जाम खत्म हो गए हैं तो मैं कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ।
1: अच्छा, कहाँ पे आप खुद ही कर रहे हैं या फिर कोचिंग वगैरह?
2: जी, मैं कोचिंग ही जाता हूँ कोटा में।
1: अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि योग के प्रति आपकी दिलचस्पी कैसे बढ़ी?
2: तो मैं बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता था तो मेरा धीरे धीरे पेट निकल रहा था। तो उसको कम करने के लिए मैंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। तो मुझे लगा कि योग से अच्छा और क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ भी सुधरती है।
1: तो आपने सोचा नहीं कि जिम भी एक ऑप्शन था जाने का, तो आपने फिर भी योग चुना, इसका क्या कारण है?
2: ये जिम का क्या होता है कि एक तो फीस लगती है तो स्टूडेंट लाइफ में वो अफोर्ड करना एक बात है, और दूसरी बात ये है कि योगा आप घर पे कर सकते हैं बिना किसी फीस के, तो योगा मुझे ज्यादा अच्छा लगा।
1: बिल्कुल ठीक है। और अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि योग में आपको सबसे अच्छा आसन कौन सा लगता है?
2: योग में मुझे सबसे अच्छा तो सूर्य नमस्कार लगता है, परंतु मेरी प्राणायाम के प्रति विशेष दिलचस्पी है।
1: अच्छा, लेकिन योग और प्राणायाम में क्या अंतर है?
2: जी, जो प्राणायाम होता है वो योग का ही एक पार्ट होता है। अष्टांग योग में से फोर्थ पार्ट जो है वो प्राणायाम होता है।
1: मतलब वो प्राणायाम के बारे में एक मिथ है कि जो युवा लोग हैं वो सोचते हैं कि प्राणायाम सिर्फ बुजुर्गों के लिए है, तो इसके बारे में आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे?
2: ये तो काफी गलत सोच है, क्योंकि प्राणायाम जो होता है वो ये काफी लाभकारी होता है। ये हमारे तनाव को कम करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, और हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी काफी इनहेंस करता है।
1: प्राणायाम एक्चुअल में होता क्या है, आप जरा हमें विस्तार से बता पाएंगे?
2: जी, जो प्राणायाम जो शब्द है उसका जो लिटरल मतलब है वो है प्राण प्लस आयाम। तो प्राण तो होता है लाइफ फोर्स, और आयाम जो होता है वो लेंथ होता है।
1: अच्छा,
2: तो हम ऐसे बोल सकते हैं जो लाइफ फोर्स है वो हमारी सांसें हैं। तो हमारी सांसों पे कंट्रोल, उनकी लेंथ पे कंट्रोल, उसको हम प्राणायाम बोल सकते हैं।
1: अच्छा यश, आजकल बहुत ज्यादा जो छात्र हैं वो प्रतियोगी परीक्षा और पढ़ाई के बीच में बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको टाइम नहीं मिल पाता और स्ट्रेस ही बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में प्राणायाम कितना जरूरी साबित हो सकता है?
2: ये काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप लंबी लंबी सांसें लेते हैं जिससे आपका ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ता है, और माइंड में आपका ब्लड फ्लो स्पेशली बढ़ता है जिससे थोड़ा टेंशन कम होती है और एंजाइटी दूर होती है, रिलैक्स भी मिलता है माइंड को। तो आप इस कंपटीशन के दौर में अगर थोड़ी देर प्राणायाम करें तो काफी हेल्पफुल रहेगा।
1: तो यश, जो प्राणायाम शुरू करना चाहता है उसे कैसे शुरू करना चाहिए?
2: तो प्राणायाम काफी सारे टाइप के होते हैं, तो आप बेसिक प्राणायाम से चालू कर सकते हैं जो आपको 5 से 10 मिनट से शुरू करना चाहिए, और अगर आप धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो आप 30 मिनट तक ले जा सकते हैं।
1: हाँ।
2: और फिर अगर आप ज्यादा एडवांस लेवल पे करना चाहते हैं तो 1 घंटे तक भी कर सकते हैं। और फिर
1: प्राणायाम में जो मेन कोर है प्राणायाम की वो क्या होती है?
2: जो कोर है वो एक्चुअली ब्रीदिंग कंट्रोल है, यानी कि सांसों पे नियंत्रण है। जिस तरीके से आप सांस को अंदर लेते हैं, उसे अंदर रोकते हैं और बाहर निकालते हैं, तो उसको कंट्रोल करना ही कोर है।
1: अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि प्राणायाम करने से आपकी एकाग्रता में यानी फोकस लेवल में किस हद तक बढ़ोतरी हुई है या किस हद तक बदलाव हुआ है?
2: जी, एक्चुअली काफी ज्यादा मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखा है अपने में जब से मैं प्राणायाम करने लगा हूँ। तो पढ़ाई के टाइम मेरे को ध्यान कम भटकता है और लंबे समय तक फोकस बनाए रख सकता हूँ मैं, और जो सब्जेक्ट है उन्हें याद करने में भी आसानी होती है।
1: तो यश, ये बताइए कि सुबह जो 10 मिनट का प्राणायाम होता है उसका पूरे दिन पे क्या इफेक्ट पड़ता है?
2: पूरे दिन जो है शरीर में ताजगी रहती है, ऊर्जा बनी रहती है, दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच के साथ होती है, और मानसिक तनाव कम महसूस होता है, और जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है।
1: अब मैं आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा जो

0: वो थोड़े मजेदार होंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर प्राणायाम एक सुपर हीरो होता तो उसकी सुपर पावर्स क्या होती?
1: मेरे हिसाब से तनाव को सेकंडों में शांत करने की शक्ति।
0: हाँ बिल्कुल। और अगर परीक्षा से पहले कॉफी हो या फिर 5 मिनट का प्राणायाम, आप क्या प्रेफर करेंगे?
1: मैं तो 5 मिनट का प्राणायाम ही प्रेफर करूंगा क्योंकि वो मन को स्थिर और एकाग्र बनाता है।
0: हाँ, और अगर आपको प्राणायाम के लिए एक टैगलाइन बनानी हो तो क्या बनाओगे?
1: हर सांस में स्वास्थ्य, हर दिन में उत्साह।
0: तो अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन फिर भी, योग या मोबाइल?
1: डेफिनेटली योग, क्योंकि वही मोबाइल का संतुलित उपयोग करना भी सिखाता है।
0: अरे वाह, आपने अच्छा आंसर दिया। और एक शब्द में आप अगर प्राणायाम को बताना चाहें तो आप क्या बोलोगे?
1: बैलेंस, संतुलन।
0: बिल्कुल सही। और अगर आपके किसी दोस्त को आप सिर्फ एक वाक्य में बताना चाहते हो कि प्राणायाम कितना महत्वपूर्ण है तो आप कैसे स्टार्ट करें?
1: मैं उसे कहूंगा, बेहतर सांस, बेहतर सोच और बेहतर जीवन की शुरुआत है प्राणायाम।
0: अरे वाह, बढ़िया। तो आपसे बात करके बहुत खुशी हुई यश। हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही योग करते रहें, प्राणायाम करते रहें और सूर्य नमस्कार करते रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।
1: धन्यवाद जी।

0: तो आइए श्रोताओं सुनते हैं अब एक प्रेरणात्मक सेशन सना खान द्वारा।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और मैं हूं आपकी दोस्त सना। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सब की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं हमारे विचारों को प्रभावित भी करता है। हर दिन हम नए अनुभव, नए सपनों और नई नई चुनौतियों का सामना करते हैं और इन्हीं बातों को समझने और उन पर खुलकर चर्चा करने के लिए हम आज एक ऐसे दिलचस्प टॉपिक लेके आए हैं और सोचने पर मजबूर कर देने वाला टॉपिक लेकर आए हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ टॉपिक्स सिर्फ डिस्कशंस नहीं होते बल्कि हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। कहते

हैं कि हर जनरेशन की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन आज के युद्ध की कहानी थोड़ी अलग है। उनकी आंखों में बड़े सपने और कुछ अलग कर दिखाने का जुनून है, लेकिन उन्हीं सपनों को पूरा करने का जो प्रेशर है वो दिमाग में चल रहा होता है, जो दिखाई तो नहीं देता मगर अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर घर में, हर स्टूडेंट्स, हर यंग पर्सन की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और टॉपिक है सपने और उनको पूरा करने का प्रेशर। जी हाँ, ड्रीम्स वर्सेस प्रेशर। आज का यूथ बहुत टैलेंटेड है, उनके पास बड़े सपने हैं, नए आइडियाज हैं और कुछ कर दिखाने का जज्बा है, लेकिन साथ ही उन पर उम्मीद का, एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। करियर का प्रेशर, मार्क्स का प्रेशर, कंपैरिजन का प्रेशर और कभी कभी खुद को परफेक्ट दिखाने का प्रेशर। और ये सब दिखाई तो नहीं देता मगर इंसान के मन में तूफान की तरह चलता है। आज का यूथ सक्सेसफुल बनना चाहता है, अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाना चाहता है, अपनी पहचान खुद बनाना चाहता है और कुछ बड़ा करना चाहता है। लेकिन इस दौड़ में मार्क्स, करियर, कंपैरिजन, तुलना, एक्सपेक्टेशंस उसे अंदर ही अंदर थका देती है। आज के समय में सोशल मीडिया का एक बड़ा रूप देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पर सबकी जिंदगी एकदम परफेक्ट, परिपूर्ण लगती है, हर कोई सक्सेसफुल नजर आता है, और इसी बीच दिल और दिमाग ये सोचता है कि क्या हमें अपने सपने पूरे करने चाहिए या क्या मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगा। ये कई सवाल मन में आते हैं, तो आज हम समझेंगे कि आखिर आज की जो युवा पीढ़ी के सपने और उनको पूरा करने का जो प्रेशर या दबाव के बीच जो बैलेंस होता है वो कैसे बनाया जा सकता है, और हम समझेंगे कि युवाओं के सपने क्या हैं, उनके संघर्ष क्या हैं, और कैसे दबाव में भी अपने सपनों को जिंदा रखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसी एक बातचीत जो सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि युवाओं के दिल की आवाज है। तो हम जानेंगे युवा पीढ़ी के सपने क्या क्या होते हैं। आज का यूथ सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना नहीं चाहता, कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई रेडियो जॉकी, तो कोई ट्रैवलर, और कोई अपने पैशन को ही अपना करियर बनाना चाहता है। आज की जनरेशन क्रिएटिव है, कुछ नया करने का सोचती है और जिंदगी में कुछ अलग करने का भी सोचती है। लेकिन कई बार जब युवा अपने सपने, अपनी नई सोच, अपनी क्रिएटिविटी के बारे में बताती है तो उन्हें कुछ ये सुनने को मिलता है, अरे इसमें तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, लोग क्या कहेंगे, सेफ करियर चुनो या कोई अच्छी जॉब चूज करो, और फिर यहीं से एक दबाव शुरू हो जाता है। सपने देखना गलत नहीं होता, लेकिन उन सपनों को समझना और सहयोग मिलना भी बहुत जरूरी है। आज कई परिवार में ऐसे बच्चे हैं जो भेड़ चाल नहीं चलना चाहते, वो अपने मन की सुनना चाहते हैं किंतु उन्हें परिवार का सहयोग नहीं मिल पाता, परिवार उन्हें समझ नहीं पाता, और परिणाम ये होता है कि फिर वही बच्चे अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। अभिभावकों को अपने बच्चों का मन, वो क्या करना चाहते हैं, वे क्या बनना चाहते हैं, उनकी खुशियों को समझना चाहिए और सहयोग भी करना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों के मन को जानना चाहिए कि वो करना क्या चाहते हैं। दोस्तों, प्रेशर सिर्फ पढ़ाई का नहीं होता है, आज की जनरेशन को कई तरीके का प्रेशर देखना पड़ता है, जैसे करियर का प्रेशर, ये लगभग सभी बच्चों को फेस करना पड़ता है, जैसे स्कूल के बाद क्या करना है, कौन सा विषय चुनना है, कॉलेज खत्म हुआ तो प्राइवेट जॉब करनी है या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। इस तरह के बहुत सारे सवाल मन में हर बच्चा महसूस करता है, उसके दिल और दिमाग में हजार बातें चलती हैं। उसके बाद सोशल मीडिया का प्रभाव, जहां पर सबकी जिंदगी बहुत अच्छी दिखती है, किसी की सक्सेस तो किसी की लाइफस्टाइल देखकर युवा पीढ़ी तुलना करने लगते हैं, और फिर इसी तुलना या कंपैरिजन की वजह से कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ प्रेशर, कभी कभी हम खुद भी तनाव पैदा करते हैं खुद के लिए, जैसे सबको खुश करना, हर चीज में सबसे अच्छा होना, परफेक्ट बनना, ये सोच भी एक तनाव पैदा करती है। लेकिन सवाल ये है कि प्रेशर के बिना सक्सेस निश्चित है, शायद नहीं, लेकिन उस प्रेशर, उस दबाव को बैलेंस करना, परिस्थिति को हैंडल करना बिल्कुल पॉसिबल है। परिस्थिति कैसी भी हो,

हमें डर कर हारना नहीं चाहिए, हमें आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाना चाहिए, मानसिक तनाव स्वयं पर हावी नहीं करना चाहिए। तो हम बात करेंगे कि दबाव को कैसे संभाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना और समझाना बहुत जरूरी है कि हर इंसान अलग अलग होता है, हर व्यक्ति के अंदर एक अलग खूबी होती है, तो उस खूबी को पहचानें, क्योंकि हर किसी का टैलेंट और उसे पूरा करने का जो सफर होता है वो अलग अलग होता है। कोई नया स्किल सीखता है तो कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है, किसी की आवाज बहुत अच्छी होती है और किसी व्यक्ति की लीडरशिप बहुत अच्छी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग लोगों में क्षमताएं या खूबी भी अलग अलग होती हैं, तो व्यक्ति उन्हीं क्षमताओं को लेके आगे बढ़ता है। अगर आपको तनाव महसूस होता है या हो रहा है तो आप अपने पेरेंट्स, अपने करीबी दोस्तों या अपने टीचर से बात कर सकते हैं, जो कि बहुत आवश्यक है। चुप रहना,

आप बात कीजिए, हल अपने आप निकलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने हुनर पर फोकस करें। आपके मार्क्स कितने आए हैं, आपकी परसेंटेज कितनी है, या ये आपकी सक्सेस को निश्चित नहीं करता, बल्कि आपके बोलने की प्रतिभा, आपकी क्रिएटिविटी, आपका कॉन्फिडेंस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपकी जिंदगी में। अपने हुनर को पहचानें, उस पर काम करें, फिर देखिएगा कि आप कितनी सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहूंगी कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जो आपको सदैव भागते रहना है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा रुकना भी बहुत जरूरी होता है। सेल्फ लव, खुद से प्यार करें, हमेशा खुद को पहले समझें, क्योंकि आवश्यक ये है कि आपको क्या पसंद है, आप खुद के लिए क्या चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, उनको पहले समझें। आज जो लोग सफल हैं, उन्होंने भी कभी प्रेशर या दबाव को स्वयं की जिंदगी में महसूस किया था, उन्होंने भी कहीं उतार चढ़ाव देखे होंगे, बहुत स्ट्रगल किया होगा, क्योंकि सफलता की मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती। बस अंतर सिर्फ इतना था कि उन्होंने इस मानसिक दबाव या प्रेशर को अपनी वीकनेस नहीं बल्कि अपनी प्रेरणा बनाया। अपनी जिंदगी में आप ही खुद को प्रेरणा देते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद खड़े नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और आप भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो याद रखिएगा, आपकी वैल्यू, आपका भविष्य या आपकी मंजिल सिर्फ मार्क्स या परसेंटेज से तय नहीं होती है, बल्कि आपके अंदर की प्रतिभा, आपकी मेहनत आपकी सफलता तय करती है। दोस्तों, आज की बातचीत का उद्देश्य बस इतना सा है कि सपने देखना बंद मत कीजिए, उन्हें पूरा जरूर कीजिए। मानसिक दबाव को हावी मत होने दीजिए, बल्कि दोनों में तालमेल बनाइए। जिंदगी में बहुत कंपटीशन होगा, बहुत सारी उम्मीदें भी होंगी, बस आप खुद पर भरोसा रखें। और एक महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखिएगा कि स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आज की बातचीत ने आपको कुछ नया सोचने और समझने का मौका दिया होगा, क्योंकि आपके विचार और सुझाव हमेशा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं हूं आपकी दोस्त सना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आपने आपका अपना कीमती समय हमें दिया और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं, ऑनलाइन योग सत्र का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करने और यूट्यूब लिंक के माध्यम से योग सत्र को ज्वाइन करने के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप से मिस कॉल दीजिए। नंबर है 1800-315-7008। नंबर एक बार फिर से सुनिए, 1800-315-7008। याद रखिए, आपको केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही इस नंबर पर मिस कॉल देनी है। इसके बाद तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आए व्हाट्सएप संदेश को खोलें और चैट बॉक्स में विवरण भरकर अपना पंजीकरण पूरा करें और इसके बाद 14 जून को प्राप्त लिंक से अपने फोन पर लाइव आएं। दिनांक याद रखिए, 14 जून सवेरे 6:15 से 7:35 तक लाइव यूट्यूब योग सत्र से जुड़ने का सुनहरा अवसर। एक विश्व, एक योग, एक रिकॉर्ड, करोड़ों लोग, एक उद्देश्य।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी। आपके दो रेडियो हम सफर निकिता
1: और रजत
0: के साथ।
1: निकिता, क्या आपने कभी गौर किया है
0: जी
1: कि हमारे देश में जैसे ही गंगा का नाम लिया जाता है या माँ गंगा का नाम लिया जाता है तो मन में अपने आप श्रद्धा उमड़ आती है।
0: बिल्कुल रजत, शायद इसीलिए क्योंकि माँ गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, वो करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और भावनाओं से जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल सही कहा। किसी के लिए ये मोक्ष का मार्ग है, किसी के लिए माँ का स्वरूप है और किसी के लिए जीवन देने वाली पावन धारा है।
0: और इसी वजह से आज का हमारा विषय भी बेहद खास है, असीम आस्था का प्रतीक माँ गंगा।
1: दोस्तों, गंगा का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं है बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत गहरा है। हिमालय की गोद से निकलकर मैदानों तक बहती गंगा सदियों से हमारी सभ्यता की

0: साक्षी रही है।
1: वाकई हमारे देश में गंगा को माँ का दर्जा दिया जाता है। लोग मानते हैं कि गंगा का जल केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र करता है, इसलिए हर उम्र, हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों की श्रद्धा उनसे जुड़ी हुई है।
0: बिल्कुल सही कहा निकिता। और गंगा हमारे जीवन का एक बहुत सुंदर संदेश भी देती है, निरंतर बहते रहना। यानी रास्ते में चाहे जितनी भी बाधाएं आए वो रुकती नहीं है, बस आगे बढ़ती रहती है।
1: और शायद यही जीवन का सार भी है दोस्तों। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यदि विश्वास और धैर्य बना रहे तो हर मुश्किल पार की जा सकती है।
0: वाह क्या बात है। और जब लाखों श्रद्धालु गंगा तट पर एक साथ प्रार्थना करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं और उसे प्रवाहित करते हैं, तो वो दृश्य केवल परंपरा नहीं होता, वो हमारी सामूहिक आस्था का जीवंत स्वरूप होता है।
1: दोस्तों गंगा हमारी जड़ों से जुड़ती है, हमारी संस्कृति से, हमारी परंपराओं से और हमारे भीतर बसे आध्यात्मिक भाव से। उनकी धारा हमें याद दिलाती है कि जीवन में बाहरी नहीं आंतरिक पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक है।
0: बिल्कुल सही निकिता। तो आइए दोस्तों माँ गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखें और उनके लिए संरक्षण का भी संकल्प लें।
1: और एक बात हमेशा याद रखिए, जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं वहाँ आस्था बोलने लगती है, और भारत की आस्था का सबसे पवित्र स्वर है माँ गंगा।

0: तो दोस्तों अब बात है वीकली करंट अफेयर्स की। तो फ्रांस के नीस शहर में 14 जून से शुरू हो रहे भारत इनोवेट्स 2026 मेगा इवेंट की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसमें भारत के 120 से ज़्यादा डीप टेक इनोवेटर्स और 500 से अधिक वैश्विक निवेशक यानी ग्लोबल इन्वेस्टर्स हिस्सा ले रहे हैं, जो भारत में सेमीकंडक्टर स्पेस और बायोटेक इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा। वहीं भारत के प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने 12 से 13 जून को आयोजित होने वाले रूस का प्रतिष्ठित ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है।
1: इसी के साथ इस सप्ताह जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होकर 705.32 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।
0: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और गेट्स फाउंडेशन ने मिलकर दिल्ली में 1 करोड़ रुपए के एनीमिया चैलेंज की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य आयरन से भरपूर खाद्य तकनीकों का विकास करना है। और भारतीय सेना की ताकत बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने फ्रंटलाइन SIG-716 असॉल्ट राइफल्स के लिए 29,762 स्वदेशी नाइट साइट्स यानी नेट्रो NW-3000 की खरीद के लिए अनुबंध किया है। साथ ही DRDO ने नेत्रा AEWNC सिस्टम को ऑपरेशन क्लियरेंस मिल गई है।
1: श्रोताओं, इसी के साथ हमारी बातों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, पर फिलहाल वक्त है आपसे अलविदा कहने का। आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नई जानकारियों और बातों के साथ। तब तक के लिए मैं निकिता
0: और मैं रजत
1: आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी

0: ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध आप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। देश भर में इस तरह के 1,600 केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अब तक 24 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों में अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्चा कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में 1 विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

और कार्यक्रम का जो पहला गीत हमने लिया है, फिल्म का नाम साथ साथ, जगजीत सिंह की आवाज, गीत है जावेद अख्तर के और संगीत से सजाया कुलदीप सिंह ने।

आया सावन झूमके, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनने जा रहे हैं। गीत में आवाज लता मंगेशकर की, साथ दिया है मोहम्मद रफी ने और साथ ही तो है ही, गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया लक्ष्य।

सावन झूम के। अभी आप इस फिल्म का गीत सुन रहे थे और अब खामोशी फिल्म से सुनिए किशोर कुमार की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया हेमंत कुमार ने।

फिल्म सफर के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आपकी आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। उससे कुछ ही पलों में 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे, तत्पश्चात जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: अरे सरला, ये मुंह अंधेरे हाथ में बोतल लेके कहाँ जा रही है?
2: जंगल जा रही हूँ दीदी, और कहाँ। इससे पहले कि दिन निकले उजाला हो, मैं जंगल में जाके आ जाती हूँ।
1: पर तू जंगल क्यों जाती है? तेरे घर में तो शौचालय बना हुआ है ना?
2: बना हुआ तो है दीदी, पर उसमें तो उपले रखे हुए हैं, और उस शौचालय में एक बार शौच के लिए जाने का मतलब है 3 बाल्टी पानी खर्च करना। तुम्हें तो पता है ना कि मैं पानी कितनी दूर से लेकर आती हूँ। अब इतनी मेहनत से लाए गए पानी को इस तरह बेकार में ही थोड़ी उड़ेल दूंगी।
1: बेकार में? अरे बावली, जरा सोच, पानी बचाने के चक्कर में तू अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को मुसीबत में डाल रही है।
2: तुम्हारी बात मेरी समझ में तो नहीं आ रही।
1: अरे सरला, जरा दिमाग पे जोर डाल कि तेरे मल पे कितनी मक्खियाँ बैठती हैं, और वही मक्खियाँ वहाँ से उड़कर कई घरों में जाकर उनके खाने पीने की चीजों पे बैठती हैं, और उन चीजों को जब वो लोग खाएंगे तो क्या वो बीमार नहीं पड़ेंगे?
2: हाय दैया, इतनी गहराई से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, घर पहुंचकर आज से ही शौचालय के उपले बाहर निकालकर हम सब उसे काम में लेना शुरू कर देंगे।
1: ये हुई ना समझदारी वाली बात।

0: पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: मुख्य समाचार। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में पहली बार 9 महिला कैडेट शामिल। महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ नियुक्त। 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। भजन लाल शर्मा ने कहा, केंद्र की एनडीए सरकार की नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण कई स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला। तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इसमें महिला कैडेटों ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नया आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है। वे 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ वर्तमान में 49वें उप सेना प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे खड़गवासला नेशनल डिफेंस अकादमी के पूर्व छात्र हैं। दिसंबर 1986 में आर्म्ड कॉर्प्स में कमीशन हुए धीरज सेठ को भारतीय सेना में करीब 4 दशकों का अनुभव है। इस दौरान उन्होंने कई कमान संभाली और कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस का हिस्सा रहे। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ यूनाइटेड नेशंस के साथ भी काम कर चुके हैं। असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर खेमा राम कुमावत और अग्निवीर दानिश आलम का निधन हो गया। वायुसेना ने बताया कि दुर्घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई और प्रारंभिक जांच जारी है। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण पहलों पर सहमति बनी है। भारत की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में बीजों की प्रणालियों को लेकर ग्लोबल फोरम और फार्मर्स साइड्स इन सीड सिस्टम बनाने पर मोहर लगी है। साथ ही ब्रिक्स सदस्यों ने सतत कृषि नेटवर्क और कृषि पारिस्थितिकी के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाने का भी निर्णय लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के 87% किसान छोटे और सीमांत हैं। इन्हें मजबूत करके ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
1: भारत खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल कृषि समाधानों तथा कृषि क्षेत्र को अधिक सुदृढ़, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बनाने से जुड़े विषयों पर सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, कृषि व्यापार, नवाचार, निवेश तथा जलवायु सहिष्णु एवं सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय परिवर्तन को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस संबंध में गठित आयोग को सीमावर्ती जिलों में आबादी में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने घुसपैठ और दूसरे कारणों से हो रहे आबादी बदलावों से निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिका सशक्तिकरण का बड़ा अभियान बनी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के साथ लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं।

0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में आयोजित मीडिया संवाद में केंद्र की एनडीए सरकार की 12 साल की उपलब्धियां गिनाई। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में हर क्षेत्र में तरक्की हुई है। श्री मोदी ने राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता के साथ देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है।
1: आत्मनिर्भर के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रेरणा से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान की गई। आज भारत रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा जैसे अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में जितनी तेजी से भारत का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है वो आप अपने आप में एक मिसाल है।
0: श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान में भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। पहले यहां प्रति व्यक्ति आय 69,000 रूपये सालाना थी, आज बढ़कर 2,00,000 रूपये से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार राजस्थान के विकास में हर संभव सहयोग दे रही है। पिछले 2.5 वर्षों में 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा चुका है। वहीं 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। जिला प्रभारी मंत्रियों ने भी प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही प्रदर्शनियों के माध्यम से भी केंद्र और राज्य सरकार की जनहित योजनाओं को बताया जा रहा है। प्रदेश में कल से शुरू हुए ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के जरिए लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके तहत लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर उन्हें विभिन्न जनहित योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में जैसलमेर के पशुपालक गणपत कुमार ने बताया कि उन्हें ग्रामीण सेवा शिविर में मंगला पशु बीमा योजना का फायदा मिला है।
2: मैंने मंगला पशु बीमा योजना के तहत 2 गायों का बीमा करवाया था, जिसमें एक गाय की डेथ होने के बाद मुझे 18,000 रुपए क्लेम मंगला पशु बीमा योजना के तहत मिल चुका है। और ग्रामीण सेवा क्षेत्र जैसे अमर सागर से हूँ मैं, और मैं अभी नरेंद्र मोदी जी और सीएम भजनलाल जी का तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद करना।
0: पाली के गुणा एंदला ग्रामीण सेवा शिविर में टीबी मरीजों को निक्षय पोषण किट वितरित किए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के भर्ती पोर्टल में सेंधमारी के प्रयास का मामला सामने आया है। सहायक खनिज अभियंता भर्ती 2024 के तहत 3 अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदनों को विड्रॉ करने का मामला संज्ञान में आते ही आयोग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अजमेर में FIR दर्ज करवाई है। आयोग के सचिव ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोची समझी साजिश के तहत इस पोर्टल को अवैध रूप से एक्सेस कर 3 अभ्यर्थियों के आवेदनों को समाप्त किया था, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को उसका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि आयोग युवाओं के भविष्य और परीक्षा प्रणाली की शुचिता को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। पोर्टल से छेड़छाड़ कर परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मॉनसून की गतिविधियों के कारण आज 5 संभागों में अंधड़ और गरज के साथ बरसात का अलर्ट है। इस दौरान कहीं कहीं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से हवाओं से नमी की आपूर्ति हो रही है, इससे कई जगह पानी बरसने के आसार हैं। वहीं बीते 24 घंटों में अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हुई। सबसे ज्यादा 5 सेंटीमीटर पानी दातारामगढ़ में बरसा। श्रीगंगानगर, चूरू और सीकर में ओले भी गिरे, इससे तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट आई है। राजधानी जयपुर में भी देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर आज सुबह भी जारी रहा। भीलवाड़ा में भी आज सुबह हल्की बरसात हुई, इससे गर्मी और उमस में कमी आई है। राज्य में अंधड़ और बरसात का सिलसिला अगले 3-4 दिन तक बना रह सकता है। उधर जैसलमेर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप है। दिन का पारा 44 डिग्री के पार दर्ज हुआ। यहां धूल भरी आंधी चलने का अंदेशा भी जताया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को गरज चमक और तेज हवाओं के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। वहीं किसानों को फसलों की कटाई और भंडारण का काम सावधानी से करने को कहा गया है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। लगभग 190 देशों में इसका आयोजन होगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। इसका उद्देश्य बढ़ती उम्र में लोगों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। योग दिवस काउंटडाउन के तहत प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर योग शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया जा रहा है। उधर अहमदाबाद हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में

0: मैं विशेष रूप से युवाओं का आग्रह करना चाहूंगा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
1: जयपुर सैन्य स्टेशन में शिक्षा और समाज कल्याण से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। इसमें सेना और सिविल सोसाइटी के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि इस दौरान वीर नारियों का सम्मान और सशस्त्र बलों के सैनिकों के मेधावी बच्चों को टैबलेट वितरित किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में पहली बार 9 महिला कैडेट शामिल। महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ नियुक्त। 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। भजनलाल शर्मा ने कहा, केंद्र की एनडीए सरकार की नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण कई स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला। तापमान में 8 डिग्री तक गिरावट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सिरोही जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख साकेत गोयल ने तैयार किया है। सिरोही जिले में इन दिनों मॉनसून पूर्व तैयारियों के साथ साथ विभिन्न जनकल्याणकारी और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा का दौर जारी है, तो वहीं जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज की जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा बाल श्रम मुक्त सिरोही अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशन में आबू पर्वत और सिरोही क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों पर निरीक्षण कर बाल श्रमिकों के चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई। साथ ही आशा सहयोगिनियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीण महिलाओं को बाल श्रम उन्मूलन तथा बच्चों के अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस अभियान में भाग लिया। आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत 15 जुलाई तक विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से भूमि नियमन, पट्टा वितरण, कच्ची बस्ती नियमन तथा अन्य लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों में दी गई छूट का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर परिषद द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के लिए जिले के प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर, ओपीडी, दवा वितरण केंद्र तथा अन्य विभागों का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान सड़क सुरक्षा में घायल मरीजों से मुलाकात कर उन्होंने कुशल क्षेम पूछी, चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए, अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों की समस्याओं पर चर्चा भी की। जिला प्रशासन द्वारा आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंचायत समिति आबू रोड में आयोजित उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने ग्रामीणों और नागरिकों की समस्याएं सुनी। जलापूर्ति, खाद्य सुरक्षा, विद्युत लाइन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पार्क विस्तार तथा अन्य सुविधाओं से जुड़े मसलों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। प्रदेश में अच्छी वर्षा और खुशहाली की कामना को लेकर जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिरोही के सारणेश्वर महादेव मंदिर तथा पिंडवाड़ा क्षेत्र के गोपेश्वर महादेव मंदिर में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पिछले दिनों बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और राहत तथा बचाव व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। मॉनसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभावित बाढ़, अतिवृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता

0: राम में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में लवकुश वाटिका में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन हुआ, साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में जल संरक्षण, पौधरोपण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश दिया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बत्तीसा बांध पर भी कार्यक्रम रखा गया। प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। जिले भर में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल बचाने और वर्षा जल संचयन के प्रति जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में जिले में विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। माधव विश्वविद्यालय की ओर से योग महोत्सव 2026 के 100 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम चल रहे हैं। कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को योग, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। सिरोही जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। इंडियन मिलिट्री एकेडमी री पासिंग आउट परेड में पहली दफा 9 महिला कैडेट शामिल। महिलावारी अगुवाई में विकास री दिशा में खास कदम। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगला सेना प्रमुख फैला। 30 जून न जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिठौड़ लेवेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, केंद्र री एनडीए सरकार री नियमा माय साफ कोई और नीतियां माय आगे री सोचूं देश बरकतरा गेला माथे चाल रियो है। और प्रदेश माय कई ठोणा आंधी बारिश रो सिलसिलो। पारा माय 8 डिग्री सेल्सियस ताई री गिरावट। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। फौज ने आज 481 नुआ नौजवान अहलकार मिल गया। आम आए 9 महिला कैडेट शामिल है जो महिलावारी अगुवाई माए विकास रे दिशा माए खास जतन है। देहरादून री भारतीय सैन्य अकादमी माए राखी जी 158वीं पासिंग आउट परेड माए महिला कैडेट आखिरी पग पार कर फौजी अहलकार बनवारो गौरव हासिल कीनो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पासिंग आउट परेड रो निरीक्षण कीनो। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ फौज रा आगला मुखिया फैला। जनरल सेठ फिलहाल फौज रा उप प्रमुख रा तौर सेवा देखा है। केंद्र सरकार माने 30 जून आ नियुक्ति दीनी है। वह मौजूदा चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिठौड़ लेवेला। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ खड़गवासला री नेशनल डिफेंस अकेडमी रा विद्यार्थी रहा है। करीब 40 साल री फौजी सेवा माए वे ऑपरेशनल रणनीतिक क्षमता विकास और संस्थागत हलका माए खास भूमिका निभाई। वे दिल्ली एरिया रा जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहा और दक्षिण पश्चिम कमानी संभाली। असम रा जोरहाट माए आज समारे भारतीय वायुसेना रो एक जहाज AN-32 हादसा रो शिकार फेंक्यो। इन कारण 5 जवान शहीद फेंक्या। वायुसेना कन्यू करीचिया सोशल मीडिया पोस्ट रहे मुजब हादसा रहे कारण स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर खेमाराम कुमावत और अग्निवीर दानिश आलम री मौत वे की। हादसा री ठौड़ सर्वाती जांच सागे जरूरी कार्रवाई करी जा रही है। ब्रिक्स देशां रा कृषि मंत्रियां रा इंदौर माए राखी जिया सम्मेलन माए बीजां री प्रणालियां रा बारा माए ग्लोबल फोरम और फार्मर साइट्स इन सीड सिस्टम बनावन री मंजूरी दी रीची है। भारत री सदारत माए वे आई सम्मेलन माए ब्रिक्स रा सदस्य देश कृषि नेटवर्क और कृषि पारिस्थितिकी सारू एक्सीलेंस सेंटर बनावन रोही फैसलो कीनो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो के देश रा 87% किसान नाना और सीमांत है जाने मजबूत बना रही देश रे खाद्य सुरक्षा तय करी जा सके है।
2: भारत खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल कृषि समाधानों तथा कृषि क्षेत्र को अधिक सुदृढ़, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बनाने से जुड़े विषयों पर सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा

0: पोषण, आजीविका, कृषि व्यापार, नवाचार, निवेश तथा जलवायु सहिष्णु एवं सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसांख्यिकी माय बदलाव रेठा करणसार वणाइचिया आयोग ने सरहदी जिला माय आबादी रा बदलाव री जानकारी करण बाबत कहो है। वह आज इंबारा माय राखी जी मीटिंग माय बोल रहा है। गृह मंत्री आयोग सरहदी हलका महानगर और औद्योगिक शहरान रो दौरो कर हालात रो जायजो लेवन सारू कहो। ध्यान जोग है कि केंद्र सरकार घुसपैठ और दूजा कारणों आबादी माय बदलाव न रोकने रा उपाय सुझावन सारू आला दर्जा री समिति बनाई है। देश माय लारला 10 साल माय जन्म री बगत हर 1000 लड़का ने मुकाबले लड़कियां री तादाद 918 बेधर 929 वेगी है। स्कूला माय माध्यमिक स्तर माथे टाबनिया री तादाद 75 बेधर 80% रे करीब वेगी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय रे मुजब केंद्र सरकार री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर माय टाबनिया ने मजबूत बनावन रो मोटो अभियान बन रही है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मत है AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए देश माए हर हलका माए तरक्की भी है। वे आज जयपुर माए खबर नवीसा सागे बातचीत कर रहा है। केंद्र माए एनडीए सरकार रा 12 साल री उपलब्धियां रो जिक्र करता थकन श्री शर्मा कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रथम री सोच सागे नियमा माए साफ गोई और नीतियां माए आगे री सोच सागे देश ने विकास रा गेला मत आगे बधायो है।
2: आत्मनिर्भर के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रेरणा से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान की गई। आज भारत रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा जैसे अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में जितनी तेजी से भारत का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है वो आप अपने आप में एक मिसाल है।
1: श्री शर्मा कहो कि प्रदेश में आई प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है। पहली 8 प्रति व्यक्ति आय 69,000 रुपया सालाना ही जो अब बेधर 2,00,000 रुपये बत्ती वे की है। मुख्यमंत्री कहो कि राज्य रा 26 जिला माए किसाना ने दिन माई बिजली दी जा रही है। जिलाना प्रभारी मंत्री प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार री उपलब्धियां री जानकारी दीनी। इस आगे प्रदर्शनियां रे जरिए केंद्र और राज्य सरकार का नियम चलाई जा रही जनता रा भलारी योजनावां री जानकारी लोगां ने दी जा रही है। प्रदेश में चल रहा ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर के जरिए जनता की समस्याओं मौके निपटार वाने सरकार का नियम चलाई जा रही जनता रा भलारी योजनावां जोड़ी जा रही है। जैसलमेर रा पशुपालक गणपत कुमार बतायो कि वाने ग्रामीण सेवा शिविर में मंगला पशु बीमा योजना रो फायदो मिलियो।
3: मैंने मंगला पशु बीमा योजना के तहत 2 गायों का बीमा करवाया था जिसमें गाय की डेथ होने के बाद मुझे 18,000 रुपए क्लेम मंगला पशु बीमा योजना के तहत मिल चुका है। और ग्रामीण सेवा क्षेत्र जैसे अमर सागर से हूँ मैं और मैं अभी नरेंद्र मोदी जी और सीएम भजनलाल जी का तहे दिल से स्वागत धन्यवाद करता हूँ।
1: पालीरा गुढ़ा एंदला माई लगाई चाह ग्रामीण सेवा शिविर माई टीबी री बीमारी रमनीजा ने निक्षय पोषण किट दिया चिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग सहायक खनिज अभियंता भर्ती 2024 रा 3 उम्मीदवार का ने ऑनलाइन तरीकों दाखिल करी जी अर्जियां भर्ती पोर्टल माय सेंध मारी रे जरिए पाछी ले लेवन रा मामला माय अजमेर पुलिस माय FIR दर्ज कराई है। आयोग रा सचिव बतायो कि कोई अनजान मिनख दूजा उम्मीदवार न फायदो देरावन रा मकसद सोची समझी साजिश रा तेत ई पोर्टल माय गैर कानूनी तौर सेंध लगार 3 उम्मीदवार री अर्जियां हटा देनी ही। अरब मौसम प्रदेश रा 5 संभागा माए आज अंधड़ और गरज सागे बरसात सारू चेताई चियो है। इस दौरान कठे कठे 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार उम्बाई रोबाजन री शंका है। इन विचे लाडला 24 घंटा माए कई थोड़ा बिखा भी सबू बत्तो 5 सेंटीमीटर पानी सीकर जिला रा दांता

0: रामगढ़ माए बरसियो। श्री गंगानगर चूरू और सीकर माए ओला पड़िया, जिणो तापमान माए 8 डिग्री सेल्सियस ताई री कमी आई। राजधानी जयपुर में आई मोड़ी रात शुरू हुई बारिश रो दौर रुक रुक कर आज सवेरे ताई चालतो रहो। भीलवाड़ा में आई आज सुबह हल्की बरसात हुई। राज्य में अंधड़ और बरसात रो सिलसिलो आवता 3-4 दिन ताई चालतो रहवण री संभावना है। दूजिकानी जैसलमेर माए जोरदार गर्मी और लू बीच पारो 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर क्यों वठे आंधी चालन री संभावना है। मौसम विभाग किसाना ने शाखा री कटाई अरवाने भेड़ीकरण का काम माए सावचेती राखण सारू कहो है। 21 जून ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावण सारू आखी दुनिया माए तैयारियां चाल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौके करीब 190 देशा माए भांत भांत रा कार्यक्रम रख्या जावेला। इस साल योग दिवस रो मुद्दो योग फॉर हेल्दी एजिंग राखी चियो है। इनरो मकसद बढ़ती उम्र माए लोगां ने स्वस्थ और सक्रिय जिंदगी जीवन री सीख देवनो है। इस सिलसिला माए प्रदेश माए कई ठोणा योग शिविर लगाया जा रहा है। इस बीच अहमदाबाद माए भी पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप माए सोनारा 2 तमगा जीतन वाला पाली जिला रा अर्जुन परमार जनताओं योग जुड़वारी अरज कीनी है।
1: भारत में हुई विश्व स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, एक आर्टिस्टिक सिंगल और एक आर्टिस्टिक ग्रुप में प्राप्त किया। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कहना चाहता हूँ कि योग केवल एक शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सभी लोगों के लिए कार्य करता है। मैं विशेष रूप से युवाओं का आग्रह करना चाहूंगा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
0: जयपुर फौजी स्टेशन माए शिक्षा और समाज कल्याण जुड़िया काम आगे बढ़ावन सारू एक खास कार्यक्रम राखी चियो। इन माए फौज और सिविल सोसाइटी बीच मदद बढ़ावन माथे जोर दियो चियो। फौज रा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन बतायो कि इन दौरान वीर नारियां रोमान करी चियो और फौजियां रा बच्चा ने टैबलेट दिया चिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 153वीं कड़ी फैला। इसारो आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नंबर ओजू सुन लिराओ सा 1800117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया रा 6 दिन रा सरकारी दौरा सारू रवाना भया। रणनीतिक माली और सांस्कृतिक निजरू ओ दौरो खास मान्यो चाचियो है। इरा पहला दौर माए काल श्री मोदी फ्रांस रा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सागे भारत इनोवेट सम्मेलन रो उद्घाटन करेला। दूजा दौर माए वे काले स्लोवाकिया सारू रवाना भेजा वेला। स्लोवाकिया रा दौरा पाछे वे फ्रांस रा एवियन माए 16-17 जून ने भेवन वाला G7 शिखर सम्मेलन माए शामिल वेला। श्री मोदी 18 जून ने फ्रांस माए विवाटेक सम्मेलन माए शिरकत करेला। आखिर माए खास समाचार एक और फेरू सुन ली रहो। इंडियन मिलिट्री एकेडमी री पासिंग आउट परेड माए पहली दफा 9 महिला कैडेट शामिल। महिलावारी अगुवाई माए विकास रे दिशा माए खास कदम। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ आगला सेना प्रमुख वेला। 30 जून न जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिठौर लेवेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो केंद्र री एनडीए सरकार री नियमा माए साफ गोई और नीतियां माए आगे री सोच देश बरकत रा गेला माथा चाल रियो है। हर प्रदेश माए कई ठोणा आंधी बारिश रो सिलसिलो। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
2: FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 kHz पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप हमारा यह प्रसारण प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ोन AIR पर भी सुन रहे हैं। और अब प्रस्तुत है किसान भाइयों का अपना लोकप्रिय कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुन बड़ा सभी किसान भाई बहना के ताई श्यामू भाई कह दिशो गणी गणी राम राम। किसान भाई बहनाओ असाड़ी को टर्म से बादलो बीजलो भी हो रो छ और गढ़ गाज भी हो रही छ, कई जगह पानी कम भी बरसो छ तो कई जगह ज्यादा भी बरस गयो। हाँ और यो अबारो अपना पास मौको छ किसान भाई बहनो, जहाँ ज्यादा पानी बरस गयो वहाँ कहीं जगह खेता में जो ऊपर ऊपर को मोटो मोटो कुचरो छे ना वो उग्या है, उनका बीज उग गया तो अबारो आपन ऊना बढ़िया हकाई कर देगा ना, तो बाद में अपना खरपतवार कम होगी, कचरो कम होगो फसल में। जहाँ मोटा मोटा देख लिया चा वो थोड़ा अबारो फगड़ गया, तो अबारों की जो अपन यदि हकाई कर दिया ना तो बाद में बुआई के टर्म की हकाई की जरूरत न पड़े किसान भाई बहनों। और अबारों की हकाई कुछ जो अपना छोटा मोटा जो अपना नुकसान पहुंचा बड़ा कीड़ा चे वहां का अंडा रह गया, कोई लार्वा रह गया, तो आल जो तावड़ो पोड़ो जो वो भी मर जा होगा, तो एक तो खरपतवार भी कम होगी और वहां का अंडा भी खत्म हो गया। और ये टर्म की अबारो अपना जो फसल पूरी चे अपना जो खेती च जमीन च वही बड़े हाक जो होता तैयार कर लिया, क्योंकि अबारो नरम होगी तो बड़े हकाई हो जाओगी उनकी, तो असाड़ी की तैयारी अपने करनी चाहिए। किसान भाई बना अपना बड़ा बुढ़ा फली खे गया चे क असाड़ी को चुक्यो किसान और डाल को चुक्यो बांदरो खटी को भी नर, तो अपन अबारो तैयार कर लिया फाने आबा से फली पाल बांध लिया, बीज बजोड़ो सब तैयार कर रखाण लिया। हाँ बीजो उपचार कर फसल कताए जरूर बावा, तो बीज उपचार करवा की जो दवाया चे वहां भी अपन लेर मल लिया, जब भी मौको मिला तुरंत बीज उपचार करो रहती वहां तो अपन बुआई करते, क्योंकि खज किसान भाई बनो असाड़ी में ज्यादा टाइम बुआई को न मिल जो लगातार फाने बरस गो तो फिर असाड़ी न जमा अपने, तो इनको बराबर ध्यान रखाणो जो टर्म को विशेष ध्यान रखा उन्हें जो किसान भाई बनो। हाँ उन्हीं का साथ ही पानी बरसोगो भर खट जाओगो, तो आपने भर न खटबा देना फल कह गया अपना बड़ा बुढ़ा का गांव को पानी गांव मर खेत को पानी खेत में रहने छाए, तो आपने जल संरक्षण भी करना चाहे फाचे के लेकर भी पानी छाओ चाहे पानी कम बरसियो तो फिर आप आगे की फसल खाए से लेंगा। बहुत सारी योजना सरकार की भी चाल रही है, अपन फार्म पौंड भी बना लिया चाह खेत लड़ाई भी बनावा चाह टाको भी बना लिया चाह फाणी खेटो करवा कर लेकर, लेकिन आपने यहाँ नहर की सुविधा चे फाणी बढ़िया चे टूबे ना चे ज्यादा गहराए में कोई ना, तो यह न समझागा आपने यहाँ तो खूब चे आबाड़ा समय में यो खत्म हो जाओ, तो आपने जल संरक्षण भी करना चाहिए, छोटा छोटा डैम बना लिया जो अपने खाना नाड़िया में बर पानी आओ चे वो अखेटो जाओगो थोड़ा दिन जमीन में नीचे बढ़ जाओगो तो आपने जो पानी की गहराई चाह कम हो जाएगी वाटर लेवल खज ना वो ऊपर आ जाओगे, तो किसान भाई बनाओ जल संरक्षण भी करना चाहिए टर्म पर खेती बाड़ी भी करनी चाहिए। और आबाड़ा समय में जून में योग दिवस भी आओगो किसान भाई बन आपन सब स्वस्थ रहा कर लेकर योग कराए जा, लेकिन विशेषकर महिलाओं के लिए भी योग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पुरुष तो सब करे लेकिन महिलाओं के लिए क्योंकि आजकल स्वास्थ्य तो वो सब कुछ पुरुष को भी चाहे तो महिला को भी चाहे किसान बना कर लेके भी तो योग छाई जन वहां भी तो काम करनी पड़े छे, आप पहले तो गट्टे पीछे जी छाज बलो ची सुबह सुबह बेको उठे जा तो उनसे सारो योग हो जाओ जो दूसरा योग करवा की जरूरत ही न पड़े जी, पर अब आजकल वो काम तो हो गया बंद, एसी कूलर में दिन भर सो जाए रात में मोड़ा सो और तड़के मोड़ा उठे, तो किसान भाई बनाओ आपनो खान पान आपने जो दिनचर्या जो उनसे आपनो शरीर पर नुकसान, तो इन सब बचवा कर लेकर अपने हल्को फुल्को योग भी करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान रखाना चाहिए। और ध्यान की बात और से किसान भाई बहनों आज शनिवार और शनिवार के दिन अपन आकाशवाणी गांव के तहत कोई ना कोई गांव में जरूर चलना चाह, तो आज भी चलना चाह ऐसे गांव में जहाँ की लोगों से बातचीत करना चाह वहाँ की खेती बाड़ी वहाँ का जो संस्कृति है वहाँ को जो इतिहास है उनका बारे में अपन जाना चाह। किसान भाई बहनों आज आकाशवाणी गांव के तहत अपन आया चा गांव बगतरी तहसील दिगो जिला कोटा का गांव में, तो जैसे ही गांव में घुसरटी फाचे की तरफ आया तो एक भाई साहब बैठे हुए थे यहां से भी अपन बातचीत करा था। राम राम साहब।
1: राम राम साहब। राम राम।
0: काय सुम नाम चा आपको?
1: बद्रीलाल।
0: कितनी उम्र होगी आप?
1: 60 में थोड़ा घटो
0: 60।

0: आपने यहाँ देखी और खेती बाड़ी भी आप करो ही कितनी जमीन छे जी भाई आप
1: 25 बीघा
0: जो आपने देखा था तो कुछ समय पाचे जावा था साहब तो उन जमीन में आज की जमीन में कहीं कहीं अंतर देखो का आपने
1: अंतर तो ये देखो मारा अगर देखो पहले तो बना खर्चा की जमीन छी पहले तो सोयाबीन ले जाओ जा वो रिया चार कहीं न छाओ जो काट पेट गन्ने ले आओ और अब जे अब खर्चा की रहेगी खेती
0: खर्चो हो गयो तो पैदावार भी बड़ी थोड़ी
1: पैदावार भी बड़ी जे पण को लगाओ जे बैलेंस जे बराबर ही आ रिया
0: जे अच्छा तो ये जमीन में फर्क आयो काई काई भाई पहले से अपना बलकुले से आंख चा आगे जाओ जी अबार आंख बचाओ तो कह न कर
1: मतलब बलकुली नहीं रिया तो बण फाजे काई तो फाबरो भी न जान के फाबरो काई हो जे कूलो काई हो जे कुल मिला रे काम करबो ने छ के मशीनरी को काम रह गयो
0: मतलब
1: काय जे के पहले देखो डालो जाओ जो बस को उमक पानी को गुड़ो जाओ जो और रोटियां जाओ जी तड़का हो के 4 बजे उठिया हो जी पीस जी पहले चक्किया खा जी
0: ना कोई ना
1: अब तो जना देखो चक्की भी गर्म नाल भी गर्म टी ब्या कर ना खेत को काम तो जार देखियो फाजे के दिया भी आप लोग खेत कहाँ से
0: मशीन होगी ट्रैक्टर सर थ्रेसर सर सारो काम हो जाओ
1: सारो काम है
0: कहीं ना कहीं देखो परिवर्तन तो आयो जो फले से और अब ये आपने भी देखी होगी कि भाई फले तो मन के गुम हो पर जो काम कर रहे तो बीमार कम रहे
1: बीमार कम रहे
0: आज की स्थिति में
1: तो यह गर्भवती तो मतलब कान का चालू ही रहे
0: ऐसी ऐसी बीमार है जो पहले कभी नाम भी न सुना चाह आज वो अभी गाँव में देख पा
1: मल रही
0: है
1: जाने न जाना टेक न जाना चाह कहीं ने बुखार ही न जाने जा बुखार आ जाओ जी तो जना 5 किलो गार बांध और कुड़ी के रजा जी में बुखार भाग जाओ जो
0: क्योंकि मरे बुखार ही भाग
1: रहे बुखार ही आगे आगे बुखार भाग जो पाजे मन चाल तो रहे कहीं भी न जाना जा
0: तो ऊट हम को देखो स्वास्थ्य में खान पीन मर आज का मन नरो अंतर है
1: गणो
0: ये कहीं ना कहीं आपने जो आपने यूरिया डीएपी ये दवाएं छिड़का यहाँ कोई भी कारण है
1: यहाँ कोई भी कारण है यहाँ कोई कारण है सारे दवाएं को फली को शौक तो खानो रियो ना शुद्ध आज ने घर में जने दूध ओट रहे जन तो 12 खटर जाओ जो जी सुगंध आ जाओ जी गाड़ी ने रहो कण में
0: पहले को अन्न में जो कण पा दो ना वो आज का अन्न में
1: पहले का तो जार की रोटियां खाओ जाना जो भी कोई स्वाद लागे जी
0: अच्छा बद्रीलाल जी जो आपको गाँव से लगभग लगभग कतनो पुराण हो जी भाई
1: पुराण मारा मान तो देखियो को नहीं तो बुढ़ संभाल जनाड़ा कोई जे राजा महाराजा के टाइम कोई जे हो
0: ऊं टाइम कोई बसे हो तो यहाँ आस पास कोई ऐसा बावड़ी को चिन्ह कहीं कहीं छे रजवाड़ा का टाइम
1: छे रजवाड़ा के टाइम को यो बुढ़ो को लागे जो
0: तो बद्री लाल जी जैसा यो आपको गाँव छे तो इनको नाम कसा कहीं पड़ो कहीं कहीं ध्यान हो आप बताए
1: का नाम तो उसे पड़ियो जो को भाई महाप्रभु जी की माफी में जे करतो गयो जे करतो मतलब वहाँ का बागाई बनिया जा ठाकुर जी महाराज का जब भगतरी नाम पाड़े जो
0: अच्छा अच्छा तो वो टर्म से भगतरी नाम से इनको तो कागजाम भी हुई
1: कागजाम भी हुई
0: अच्छा तो ये आपका पंचायत वगैरह किसी
1: पंचायत जालमपुरा लागे छे मुख्यालय तो जालमपुर हुई रोड न जुड़ रही हो यो 3 किलोमीटर पड़े जी यहाँ से 3.5 किलोमीटर
0: जालमपुरा
1: जालमपुरा में
0: अच्छा
1: मुख्यालय से न जुड़ रहे
0: मतलब पंचायत मुख्यालय से न जुड़ रहे और अटी सुल्तानपुर से जुड़े
1: सुल्तानपुर से जुड़े हुए जे पर मां का परेशानी कणी आ रही जी मैं कोटा जावा मैं यहां मां यो वो जाओ ना तो बढ़िया रे यहाँ से मतलब बरसात बरसी और जूतियां भी हाथ में लेनी पड़े माल में जाबा खान
0: अच्छा कतुंग बड़ो गाँव छे जी भाई यो
1: अब ये टाइम तो अगर वो होगा 150-200 कर मान लो
0: नरो बड़ो गांव छे जी भाई अच्छा पीवा का पानी की बात करा तो आपको यहाँ
1: पानी में तो मारा माँ का जना जी गांव को तो खराब कटे छे घर लारी तो मोटर लाग रही छे पण वो ना वो दो वही छे पीवा को पानी सुल्तान पर सो आ रियो छे यहाँ टंकिया बन रही छे एक तो ठाकुर जी ने बन रही 5000 लीटर की एक 5000 लीटर की बालाजी ने बन रही छे तो आधो गाँव तो ऊँसू पी ले जे आधो गाँव ऐसी पी ले
0: मतलब पीवा का पानी को तो सुल्तानपुर से आओ जो मीठो पानी तो यहाँ फ्लोराइड ज्यादा अच्छा अब सिंचाई के साधन की आपन बात करा तो सिंचाई का साधन कहाँ जी भाई यहाँ
1: सिंचाई का साधन तो नहर से आ रही है और आधो माल ट्यूबवेला से पीए छे जिसे गोकुलपुरा को माल जमा को उमन नहर को पानी पल्ला को ना तो वहाँ तो खेत ला रही बोरिंग लाग रही
0: तो ये बोरिंग आम कतनो घर आए को पानी जी भाई
1: हाँ कोई को 150 छे कोई को 200 उतर रही है पर्याप्त पानी
0: अच्छा मतलब लगभग लगभग ठीक ठाक पानी जो ज्यादा घर आए तो 150-200 के आसपास में पानी जर बाकी नगर से पूर्ति हो जाओ बहुत ही बढ़िया है जी भाई आपको गांव भी बहुत बढ़िया है गारो खिचड़ भी खटी भी गांव में कोई ना बढ़िया व्यवस्था हो यहाँ पर तो बहुत ही बढ़िया बात है बद्रीलाल जी आपने बताई है बहुत बहुत धन्यवाद राम राम
1: राम राम साहब राम राम
0: किसान भाई बहनों पास में एक भाई साहब और बैठा है यहाँ से भी बातचीत करा था राम राम साहब
2: राम राम साहब
0: का नाम था आपको
2: राम प्रसाद से मरना
0: राम प्रसाद जी कितनी उम्र होगी आपकी
2: हमारी 53 साल हो।
0: पढ़ाई लिखाई कर रहा है?

0: ये तो कहाँ कहाँ
1: पांच होते हैं प्रोड्यूसर पास कर सिटी में चल गए जो सिटी वो पहले टेस्ट दियो जी के बाद में छोड़ दी फिर
0: तो वो जो कहाँ कारण रो
1: छोड़ भागो तो ये रो नफट बाया खेती में लागे ट्रैक्टर ट्रैक्टर ले जाए मांग पिताजी उन्हें भी ट्रैक्टर ट्रैक्टर चला बला गया
0: तो ऊँट आम से ट्रैक्टर ले आए अच्छा काफी पुराना ट्रैक्टर हो गया
1: तीसरा नंबर को ट्रैक्टर जो
0: अच्छा राम प्रसाद जी अपन देख रहे थे भाई फली की जमीन में रबारू की जमीन में नरो अंतर आ गयो जी भाई फली जो बड़कुली से भी आ कचा फिर उनके बाद में वो दो सिलेंडर का ट्रैक्टर आओ जा 24-25 हॉर्स पावर का से भी आ कचा खूब
1: चल जा बढ़िया चल जा
0: अब उनके बाद में फिर ये 35 हॉर्स पावर का अब तो ये 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर वाला
1: ये भी आज क्या खबर आ गया
0: तो इनका पद काय कारण रियो सो
1: इनको खाद कहे आड होती जा रही है जमीन
0: कड़क होगी
1: कड़क होगी 3-4 बार तो ये इनकी खरपतवार नाशक छिड़क वाला आ गया कीटनाशक छिड़क वाला आ गया पहले तो डीएपी तो यूं मामूली करा जा उपयोग में ना कतना तो करे को ना पहले तो कहा 25 किलो आप अब तो कट्टो भी कोई दर्रा भला ज्यादा से ज्यादा आड हो गया
0: यूरिया डीएपी भी ज्यादा काम में ले रहे थे आपने खेती की लागत भी ज्यादा बढ़ गई मांगो यारो जो कम तो आने रखो ना और उनके अलावा जमीन भी आपने धीरे धीरे खराब होती जा रही पहले तो आपने रेवड़िया का खाद भी पट गया
1: घना पट गया यहाँ से न ठेठ बुढ़ा जी तक रेवड़िया लाओ था ट्रोलिया बरबर खेता में पट गया था
0: और अब तो कटी में खाद भी
1: अगर की रेवड़िया नहीं पट गया पट गया
0: हो गया अच्छा थोड़ा घना दिन पाचा पानी बरस बाल
1: तैयारी चाह रही
0: कहीं कहीं तैयारी कर जी भाई
1: मानो कहीं से कहीं जुताई कर दी बढ़िया पाटो लगा रहा हाँ दी बीज जे उपचारित भी कर लिया घर लोग बगान उपचारित कर बर तो दर दियो अब जब पानी पड़ोगे तो और देगा
0: पानी पड़ता है और बाकी दिए
1: और बाकी दिए
0: अच्छा तो राम प्रसाद जी जो आपको जमाना में आपने टर्म की खेती करी होगी जो इतनी दवाया तो आओ
1: ना ना ना ना हो
0: चुका टर्म की भी कोई उपचारित करा जाएगा
1: न करा जा काहे न करा जा
0: फिर भी
1: बढ़िया हो जो है ना मतलब मन 5 क्विंटल बिकता है को सोयाबीन खाड़ी और ये दो आड़े जाओ जब मांग ले रहा जे वो आगा को फका दे जाओ 5 ट्रैक्टर वहां दे जो जिनमें बढ़िया सोयाबीन हो जो
0: और आज अपन उपचारित भी कर
1: उपचारित भी कर
0: दवाया भी
1: छिड़का फिर भी पैदावार घट रही कोई 50 किलो बीघा उखटे जाए बढ़िया से बढ़िया टॉप 2 बोरी बीघो यो आ गयो ये फसल फरती फसल करा था एक साल सरसों कर लेता तो फिर सोयाबीन कर ले जा उनाड़ू रखाना था एक खेती आज साड़ू फसल कर जा आदि उनाड़ू कुछ कर जा तो आदि में सरसों कर ले जा आदि में सोयाबीन कर ले जा अगला साल उमा जा ना सोयाबीन कर जा तो हम कचरा भी कम हो जा
0: पाई फरती फसल भी बाव चा
1: खाना चा तो सोयाबीन गम
0: एक फसल
1: एक फरती फसल कर जा तो उमा पैदावार भी बढ़िया खटे जी
0: बहुत ही बढ़िया बात आपने बताया थे जो किसान भाई बना आपकी बातचीत सुन रहा था यहाँ के तय काई कब छो तो
1: ये कहंगा भाई बीज उपचार करी और जो बड़ा समय के अनुसार तो ये तुम को तो खबर
0: हो बीज उपचार कर रहा हम सब उराय कर दिया राम राम
1: राम राम साहब
0: किसान भाई बनाओ जैसे अपन गांव मटी आ गया तो एक भाई साहब बैठे हुए थे यहाँ से भी बातचीत करा था राम राम साहब
2: राम राम साहब
0: आपको शुभ नाम भाई साहब
2: सुरेंद्र मीणा
0: सुरेंद्र जी कितनी उम्र होगी जी भाई आप
2: 37-38 साल का आसपास
0: तो अबारो काम धाम काम करो छो
2: अब खेती करे साहब
0: अच्छा खेती कर छो अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहा है कहीं कहीं
2: पढ़ाई कर दस्यू तय
0: आग कशा न फटवा को चार बने जो भाई थोड़ा सा
2: भाई आगे पढ़ाई को कुछ मन कौन जो खेती में घर में काम कर बड़ा कौन जाऊँ हिसाब से फिर अच्छा। खेती में ला के काम करूँ जो घर को भी
0: तो अबारो कितने खेती करो जो भाई आप
2: 20 बीघा जमीन करो सर
0: तो आपने देख रहे था सुरेंद्र जी अबारो तो बस आड़ी जमा हम लाग रहे थे देखो तो आपने भी कहीं कहीं तैयारी कर रहा है जब अबारो
2: अपन सोयाबीन की तैयारी करिए साहब ग्रेडिंग कर लियो दवाई वाई मिला रख ली जमीन का काई जुताई कर दी
0: अच्छा
2: बारिश होगी थोड़ी सी नमी कम होगी उनके बाद में उराई चालू कर देंगे 25 जून के बाद 5-6 जुलाई तक लगभग करीब सोयाबीन टाइम
0: साड़ी को समय से बड़ा बुढ़ा कह गया भाई पानी आबा सा पल्ली पाड़ बांध लो
2: पाड़ बांध वो
0: तो आपने बीज बदलो सब तैयार
2: पाड़ बांध सब आप सबसे फ्री है
0: बिल्कुल और यूँ कहते हैं कि भाई आसाड़ी को चुके करसाना डाल को चुके बांध दो खटे को भी
2: नहीं पाचों नाव पे रुक दी अगले साल देखनी पड़ेगा पर अब मैंने अपनी
0: इंतजार करने यो तो जो एक बार चू गयो ना तो फिर उस समय खट गयो तो तैयारी तो आपने पूरी बार करनी चाहिए जैसे मौको मिलो तुरंत बुआई
2: बुआई करनी है
0: बिल्कुल बिल्कुल साहब
2: फिर लास्ट में भी फिर टाइम कम रहे बारिश भाग जाओ 95 सोयाबीन चाल गई, क्योंकि के लेके पानी भी की भी आगे देखनी पड़े, आगे अगर पानी न रही हो तो सोयाबीन पाक न सके, पचानो शेयर करनी पड़े। हाँ,
0: हाँ।
2: तो थोड़ा गांव तो बानी पड़े।
0: अबारो टर्म से बा जाओगे तो टर्म की टर्म से
2: टर्म से पक जाओगे, वहां तक पानी को नतारा जाओ।
0: तो सुरेंद्र जैसे आषाढ़ी की बात

0: करना चाह और कोई किसान भाई से सुनी कि भाई सूखा में भी सोयाबीन बुआई हो जाओ
1: तो अगर सूखा में सोयाबीन जब और सको जब नमी बिल्कुल न होनी चाहो खेत में दो तीन बार का जुताई कर दो पानी की संभावना हो कि दो चार दिन में पानी आ जाएगा
0: जी
1: तो उससे पहले आप सूखे में बुआई कर सकते हो कुछ नहीं बिगड़े 8 दिन भी अगर सोयाबीन रुक रह जाएगा उसमें बीज रह जाएगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका
0: अच्छा।
1: ये मैं गारंटी दे रहा हूँ क्योंकि तो, मैंने 2 साल पहले मैंने करके ट्राई की थी कुछ भी नहीं बिगड़ा जब पानी गिरा तो बहुत अच्छा सोयाबीन निकला वो।
0: अच्छा अब जैसे ज्यादा पानी न बरसो और हल्को पानी बरस रहेगा तो बीज बीज खराब होगा की सब
1: नमी आर पास सूख गया आलो गर्मी आएगी तो सोयाबीन वहाँ खराब हो सकता है। रेगुलर पानी हो 2 या 4 दिन रेगुलर पानी होना चाहिए।
0: अच्छा मतलब लगातार पानी बरस और बढ़िया उरा है जैसे पानी बरस गया तो कोई नुकसान
1: को ना रेगुलर 2-4 दिन का पानी पड़ गया और दास मतलब 12 कटिया तो फिर कोई नुकसान।
0: अच्छा बिल्कुल भाई दबड़ा बागी संभावना भी न रहो
1: दबड़ा बागी पानी तो यूं जगह एकदम पड़ गया और फिर 8 दिन तक पानी नहीं आया फिर
0: तो वो तो अपना गीला में बुआई करा था जब भी संभावना
1: हो तो जब वो संभावना जब भी अपना वो रह गया पानी पड़ गया तो फिर भी सड़बा की संभावना रिक्स तो 1 दिन लेनी पड़ेगी।
0: बिल्कुल
1: जब आपने करके बाहर कट गया तो रिक्स तो चालू है।
0: बिल्कुल
1: के बाद पानी पड़ गया तो भी नुकसान तो
0: बिल्कुल बिल्कुल अटे तो 12,000 से पानी पड़
1: रहा है तो प्रकृति मौसमी खेती जब तो शेम हो
0: तो सुरेंद्र जी आपने की भाई बीज तैयार कर रहा है कुछ और मिला मिलो रूप तरह कुछ मलायो का
1: दो तीन तरह की साल्ट आओ में एफ आई आर आओ जिसमें दूंगा नाम तो ध्यान कोई ना तीन तरह की दुआई आती है उनको टाइम मिलाऊंगा एक तो फंगी साइड से बचोगे एक को तो गड़बा सड़बा से बचोगे दूसरों से पौधा में एक ताकत रहेगी तो ज्यादा विकसित होगो तो पैदावार भी ज्यादा देगो।
0: पहले तो फंगी साइड से बीजोपचार करो
1: बस फंगी साइड
0: जो इंसेक्टिसाइड उपचार करो
1: एक और आता है वो
0: और एक राइजोबियम कल्चर हो
1: ना ये नाम
0: तो उसे उपचार करो तो एफ आई आर को मतलब तो भाई पहले तो फंगीसाइड फिर इंसेक्टिसाइड और फिर राइजोबियम कल्चर बहुत ही बढ़िया बता सुरेंद्र जी आपने बताया छे। अब खेती बाड़ी में साधन छे ट्रैक्टर छे बकल छे सीडिल छे जो भी मशीन आ जाए एंड टाइम पर संभाल छे कहीं कब चाहो छे मन क्या
1: टाइम आ कर अपना संभालागा तो सब तो और अगर आप बटे रहेंगे वो सके 2-3 घंटा को गैप अगर लागू बारिश आएगी तो सोयाबीन रुको 2 घंटा लागू तो आपने मारो तो ऊंडो ओढ़ दू ऐसी ओढ़ दू की गलती को ना गलती तो आपने क्योंकि आपने बीज भी सब तैयार रखानो साधन तैयार रखानो अपन सब का तेल पानी सब ट्रैक्टर सब कंप्लीट कर रखे आप कोई तो मिस्त्री का लेट जा रही हो कोई खा लेट जा रही हो इतना देना बटेगा किसान पाच रहेगा समय पर करनी पड़ेगा बाद में कहीं ना फिर घंटा 2 घंटा में बहुत अंतर पड़ जाओ वैसा भी 1 घंटा में और 11 कर एक ही दिन हो रही है 1 घंटा का अंतर भी सोयाबीन रुक सके पानी पड़ जाओ
0: वो कहना जी की बड़े आषाढ़ी जमगी वो जीत में
1: रह गई
0: वो जीत में जब वो जब टर्म से काम करोगे तरीका से काम करोगे और समझदारी
1: से काम करो जब बचोगे सोयाबीन साफ न करे आपने बोल रहे 35 किलो भी हो तो 35 किलो भी हो सोयाबीन न होना
0: अपने तो सियांगना को भी फर्क पड़े
1: हाँ कोई फर्क बढ़िया दाना से तो 20-25 के बीच में आप और सको जो ज्यादा कर तो 25-30 के बीच में और सको अगर आप अगर कोई बीच है थोड़ा दागी वागी
0: बहुत सारी बात है छोटी छोटी जहाँ को ध्यान रखाना तो ज्यादा फायदा अपन देखो ले
1: फायदा में रहेगा सोयाबीन में जब खरपतवार की दुआई करा जा तो गणा 15 दिन को जब करेंगा तो आपने 10-13-15 के बीच में आपने दुआई करनी पड़ेगी क्योंकि जब कचरो बड़ो जाओगे तो मार बखान दुआई ज्यादा छाओगी सोयाबीन पर भी अटैक करेगी 10-15 के बीच में 12-13 दिन के बीच में आपने दुआई कर देनी
0: मतलब 15-20 दिन को इंतजार
1: बस जब कचरो बड़ो जाओ सोयाबीन फसल भी बड़ी हो जाओगी तो आधी दुआई तो पत्ता पे रुक जाओगी नीचे ताई दुआई नहीं जा पाओगी।
0: बहुत ही बढ़िया बात है सुरेंद्र जी आपने बताया जाए बहुत बहुत धन्यवाद राम राम
1: राम राम साहब राम राम
0: किसान भाई बनाओ जैसे एटी मंदिर की आईडी आया तो एक भाई साहब और बैठा था यहाँ से भी बातचीत करा था राम राम
2: साहब राम राम साहब राम
0: का शुभ नाम भाई साहब आपको
2: सुरेश कुमार मीणा
0: बाबा देख रहे थे साड़ी की फसल अपने बाबा की तैयारी में चल रहे जा और कर रहा था कि इस साल तो मानसून जल्दी आ जाओ तो कहीं तैयारी आपने कर रखी थी जी भाई
2: जी मैं ना अगर जोत कम्प्लीट कर दी बीज उपचार कर दे दियो कोई के पास कोई नहीं तो कोई ला रही हो 11,000 रुपया कुंटल में
0: अच्छा
2: और वो लार कर रही हो कोई गंदा पटे तो ना तो कोई उड़ते भी और को
0: मतलब बीज बदलो सारो तैयार कर मल रहा को बीज उपचार भी कर दियो आपने सारी व्यवस्था कर तो बीज उपचार का काय फायदा रहे जी भाई
2: बीज उपचार को मान नहीं करियो जो उपचार को तो बीज उग गया अब अगर उपचार को बीज 2-5 दाने उग गया तो वो सड़ गयो
0: गार
2: देख लियो मान कर नहीं तो वो तो सड़ गयो उपचार वाला पूरे उग गया
0: पूरा उग गया
2: 2-3 दाने
0: मतलब एक तो एक एक बीज उग गया बाद में रोग भी कम लागत
2: रोग भी कम लागत
0: आप फल चेक कर लो भाई बीज उगो न उगो सारी बात
2: तोल पाड़ देना
0: तोल पाड़ लो तो मतलब अब और बीज उपचार कर आपने मर दो तो अब वो सब और पाचो बढ़ दो तो अब खराब न हो फल तो कहें थे बना खर्चा को सोयाबीन हो जो जब बड़ा फायदा हो जाओ जमीन भी कमजोर होगी
2: मन त्या लगा पड़ा हो जा अब कुनड़ा या पड़ा रहा कोई जाओ कोई ना अब तो डायरेक्ट दुआया बस डबल साठ चढ़ गया एक ना तो डबल दियो
1: आपको देखता देखता ही।

0: क्या स्थिति होगी जमीन में, तो ये 20-25 साल का अंतर में अच्छे की जमीन
1: होगी।
0: अब ये कितना दिन और उम्मीद मानो जो
1: जाओगे 10-5 साल 20 साल मान लो खत्म, मतलब या उपचार काय भी करो या गांव भी बंद कर देगी
0: ना,
1: जमीन ही खत्म। 5 क्विंटल बीघा गेहूं खटिया
0: कहते ना कि भाई पत्थर पर अपन फसल न उगा सका तो ऐसा पत्थर की तरफ पट हो जाओगे,
1: हो जाओगे ऐसा
0: हो जाओगे ना, जाओ तो यही कर लेकर आपने काय करने पड़ोगे जी भाई, आपने यही
1: करनी पड़ेगी यही खा ये तो प्रति साग करो या सस्यू करो, दुआई न चाहो मतलब सुपर में भी और जो खाद की भी जरूरत कोई
0: पर दी फसल एक न एक दिन आपने जो पुरानी पद्धति जी ना आपने ऊपर आनी पड़ेगा, आज आपने ये दवाया का खाद का खर्चा कम करनी पड़ेगा। अति बढ़िया बात आपने बताया राम प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम किसान भाई बहनाओं जैसे हेटी अपन गांव में आया तो यहाँ जो सरपंच साहब थे वो भी गांव में यहाँ बैठे मिल गया आपका था, यहाँ से भी बातचीत कर रहा था। राम राम साहब।
2: राम राम जी। राम राम सर।
0: आपको शुभ नाम?
2: चंपा भाई।
0: आप यहाँ का सरपंच साहब जो जो आपको गांव से भगत रही तो इनकी पंचायत कैसी लागे थे भाई आपका?
2: ग्राम पंचायत जालमपुरा।
0: कितना समय आपका यहाँ पता है वो को पंचायत देखता?
2: पंचायती राज हो गया साहब मारो 7 साल कार्यकाल चल रहे।
0: अच्छा सरपंच साहब मैं ये बताओ भाई, ये जो अब 7 साल आप बताए हो गया यहाँ देखता हूँ यार,
2: 2 साल तो लॉकडाउन में कट गयो और पेजे के बाद में अपन 3 साल जनता की सेवा करी, जहाँ कीचड़ में वहाँ काम वाम भी करवाई हो, जहाँ स्कूल में समस्या ची बच्चा बच्चिया की तो आपने स्कूल का सुन और बाहरी को करवाई, स्कूल खेल निकले में भी बाहरी को करवाई, जो जनता को रास्ता की दिक्कत ची परेशानी ची तो देखो सुल्तानपुर सुमर बगदरी ताई रोड पास करवाए तो उमर डम्बर रोड हो गयो, खेल निकले में भी डम्बर रोड हो गयो, अटे सोपरा में भी JCB लगवा कर वहाँ भी देखो बढ़िया रोड करवाए ना, तो आम जनता खेती बाड़ी में फसल लाउची तो बहुत परेशान हो। अब ये 2 साल से प्रशासन की सील दे मरी तो अपन तो पूरी पास में जनता की सेवा कर रहा था।
0: अच्छा
2: हॉस्पिटल भी बनवायो छ बणो यहां।
0: अच्छा हां
2: काम चाल रहो छ
0: बारो जो सारो काम छ तो फिर प्रशासन ही देख रहो जो आपको कोई काम कोई न हो,
2: चिकित्सा बा काउंटर में छ बणो हॉस्पिटल को मामलो, अपन तो जनता की सेवा में खड़ा था और काम करा रहा था।
0: देखो बहुत बड़ा विकास का रहे आपका समय मोयो छ, अबारो में पूरा गांव में फर रहा है तो कहाँ गिरो कचड़ कहाँ भी कोई न, बड़ा नाला बने हुए छ, CC छ, ईंटा जुड़ी हुई छ, पूरा
2: जनता से मतलब कोई खिलाफ न चल रहा, सबसे प्रेम व्यवहार बढ़ा चल रहा था।
0: बिल्कुल बिल्कुल एक तरह से पूरी जिम्मेदारी जनता ने आपने ताय दे दी कि भाई अब यो जो गांव को विकास है पंचायत को विकास है वो आपका आदमी जी की जिम्मेदारी आप संभालो,
2: आप संभालो तो जिसे अपन जनता ने अपनी संभाले तो अपन वो लोड उठा के
0: भाई वहाँ की सेवा भी पूरी पूरी करी जाए,
2: वहाँ की पूरी पूरी सेवा करी जाए
0: और घर घर शौचालय बनाबा के अभियान चाले हो तो उम्मीद है लगभग लगभग हर घर में शौचालय बन गयो, यहाँ
2: बन गया साहब बन गया। हमारा आवास का मकान भी जहाँ कल लिस्ट में नाम आया था वहाँ का सबाई आवास दिया था, कोई सो आपने भेदभाव न करो, सब आपने ये खंड को मणियो गणर चले सब भाई बनाना, जैसे आपने पंचायती में 6 गांव लागे छे तो 6 गांव ने आपन एक समाधान से चुना सब न परिवार गणर चले।
0: आज अपन बात करा देखो आप यहाँ पर महिला सरपंच छो और सारो काम आप खुद देखो छो, बहुत सी जगह देखा था सरपंच तो महिला रह छे और वहाँ को काम या तो वहाँ का बेटा बेटी देखे छे या वहाँ का पति देखे छे,
2: खुद न मना क्या जार खड़ी रह
0: बिल्कुल
2: और काम कराए जन मन खुद न जिम्मेदारी संभाले
0: बिल्कुल। आज बालिका शिक्षा की अपन बात करा तो हालांकि जागरूकता तो आई छे फिर भी घना किसान भाई बना चाहे जो इतना जागरूक न हो पाया गाँव में जितना होनी चाहिए, तो भाई कहते ना कि आपने यहाँ तो एक बेटी पटेगी 7 पीढ़ी तरहगी, अच्छा जो किसान भाई बहन थे जो हाल भी ध्यान न दे पा रहा छोटी उम्र में शादी कर दे बच्चा बच्चिया की तो वहाँ कहते हैं काई खबो
2: छोटी उम्र में शादी नहीं चाहिए, 18-19 साल की 20 साल की लड़की होता है और देखो पढ़ाई लिखाई आजकल तो सब जागरूकता हो गया, तो पहले तो माता पिता भेदभाव करे था लड़की में लड़का में, छोरिया न पढ़ावा जी छोरिया दूसरा को चूल्हो फूकेगी छोरा नहीं पढ़ाता, और आज के समय में तो देखो बच्चा न और छोरिया ने एक सम्मान गणत है सब लड़का ने लड़का ने सब ने पढ़ा रहा है,
0: अब बना भेदभाव कर पढ़ानी चाहिए, आज आप जो आप महिला सरपंचो खुद जिम्मेदारी उठा रहे थे तो आगे देश का विकास में भी आपने महिलाएं बच्चे कहाँ भी फाचे कोई ना, आज सेना में भी भर्ती हो रही
2: है देखो मार सारे दोत्यान पोत्यान सब पढ़ रही लिख रही आगे बढ़ रही है, माँ यही कहा था बेटा माँ की 2-3 क्लास पूरी पढ़ाई है तो माँ थोड़ा पीछे रह गया, कहा था आगे बढ़ो आगे पढ़ेगी आगे बढ़ेगी तो माता पिता का नाम रोशन करेगी गांव का नाम रोशन करेगी,
0: पढ़ाई हर जगह काम आओ सर बंसा, अपन घर परिवार भी संभाला तो वहाँ भी चाहे बाहर जावा तो वहाँ भी चाहे, अब खेती बाड़ी में भी पढ़ाई बहुत जरूरी होगी क्योंकि नई नई तकनीक आ रही है
2: खेती में भी राखण अपना माता पिता का खेती से, तो देखो खेती में भी दिमाग राखण पढ़ाई में भी दिमाग राखण और अच्छा संस्कार ले।

0: के आगे बच्चा बच्ची को, अपना बाया को, अपनी छोटी बहन को आगे बढ़ाना चाहते।
1: बिल्कुल, पर देख रहे हैं चाचा सरपंच साहब, धीरे धीरे जमीन तो छोटी होती जा रही है और इनके साथ साथ ही खर्चो जमीन में उबड़ तो जा रही है।
0: पहले की खेती का, रात की खेती का तो गुणो रात दिन को अंतर पड़ गयो। पहले का बड़ा बुजुर्ग लोग थे ना, जेरे उड़े का खात मंगाओ था ढूंगरा में, और आज कहीं से आ तो यूरिया कर, डी पी कर, ये कणा कसो कसो खात आ रहा, तो जी के पीछे पड़ रही है, तो जमीन उतर देती जा रही है, फसल न बज न पा रही, फसल बढ़ न पा रही, जमीन पटपड़ो होती जा रही है,
1: पटपड़ो होती जा रही है, और फिर लागत बढ़ गई। पहले इतना खर्चा कोई न था, जमीन में खर्चा बढ़ गया, पहले खुद मंद करा था, बल कुले सा आग ले तो खर्चो न लागत हो,
0: घर पति गाड़ी बोल सा तो बोला सो आ कर जोता था, अब आ तो घर पति ट्रैक्टर हो गया, खर्चा बढ़ गया। पहले लोग माता पर डालो लेर माल में जाओ जी, रात में आग जाओ जो खेती बन जो छो, सब स्वस्थ रहता, बढ़िया नाच पानी खाओ था, कम खाद मुत को खाओ था, तो मैं दम भी थी, और हर फसल में कचरो हो गयो तो दवाई छिड़क दे जाए। आज मन क्या सो कचरो पड़ा हुआ अपन मन क्या लाने पड़े जो गुंदाई भी हो जाए, तो देखो मन नमज भी बटे जाए।
1: बिल्कुल
0: है ना, तो आ तो लोग हर चीज की दवाई, हर चीज की दवाई तो जमीन दवाई सो पत्थर होती जाए, अपन जी फीडी पर चाल रहता है। ये तो फिर भी अपन थोड़ी बहुत खेती में फसल उठा लेगा,
1: बिल्कुल
0: पाचे की फीडी में वो फसल भी नकाट पाओ,
1: नकाट पाओ। अब ये स्थिति से तो ये बचवा के लेकर अपने काई करनी पड़ेगा जी भाई।
0: देखो ये मैं तो पब्लिक से ना पता वही मुकाम पाओगा, सरकार बता रही थे भाई खड्डो खोदो और उमे गोबर डालो
1: डालो,
0: और वो गोबर ना अपना खेत में डालो।
1: बिल्कुल,
0: पर पब्लिक करा कहाँ था, मन तो न करना आ तो मन
1: भाई मन न कर बचाओ। बहुत ही बढ़िया बात है सरपंच साहब आपने बताया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम जी। राम राम साहब। राम

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो करसान भाई बहनों आज अपन घूमे गांव बगतरी में वहाँ का लोगों से बातचीत करी बहुत ही बढ़िया वहाँ से लागो अपने ते आगे भी कोई न कोई गांव में जरूर चलेंगे। ये कार्यक्रम की प्रस्तुति तेजरा मीणा प्रस्तुति सहयोग महेंद्र कुमार नाग। तो करसान भाई बहनों आप चौपाल में टर्म पूरा हो रहा है। आप एक छोटी सी बात बता दूंगा आपने जो सरकार से प्रधानमंत्री जो वहाँ एक कृषक को लेकर एक योजना चालू करी है प्रधानमंत्री कृषक मानधन योजना। तो बहुत ही बड़ा योजना है किसान आकता है जो छोटा किसान है वहाँ का आर्थिक सुरक्षा देवा के लेकर यह योजना है जिसमें कम से भी कम 3,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन है और 55 रुपया से लेकर 200 रुपया प्रतिमाह को आपको योगदान है। तो इन योजना को लाभ उठावा ज्यादा जानकारी चाहो तो अपना आस पास का जो ई मित्र केंद्र है वहाँ पर अपन जा सका था। और तापमान की जो तक बात है किसान भाई बनाओ मौसम आप देख रहा छो आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम 28 डिग्री आर्द्रता 55% थोड़ी सी आंधी तूफान आवे की संभावना छ। तो अब चौपाल को टर्म पूरा हो रहा है तो आपका साथी सामू भाई कताए भी दियो अनुमति पर यह छ मौसम देख कर अपनी खेती बाड़ी करनी छ। राम राम साहब।

अभी किसान भाई सुन रहे थे उनका पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। कुछ ही देर में हम उपस्थित होंगे लेकर लोक संगीत।

FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। श्रोताओं, प्रस्तुत है लोक संगीत, और लोक संगीत में पहला जो लोक गीत हमने लिया है बिरधी लाल वर्मा की आवाज में, ये

FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz पर। साथ ही प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप सुन सकते हैं हमारा प्रसारण। श्रोता, प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। आज रात्रि 9 बजे देश भर में लोकप्रिय फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी प्रस्तुत किया जाएगा, तो सुनना ना भूलिएगा हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। इस समय आप आनंद ले रहे हैं लोक संगीत का, और आइए सुनते हैं बनारसी लाल वर्मा की आवाज में ये अगला लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे चंचल काबरा की आवाज में ये लोक संगीत। लीजिए सुनिए चुन्नी लाल मारवाड़ी की आवाज में ये अगला लोकगीत।

और भगवान दास महावर की आवाज में गाए इस लोक संगीत के साथ लोकगीत के साथ लोक संगीत यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत तो आप सुनेंगे ही, क्यों ना उससे पहले आपको कार्यक्रम संबंधी सूचना दे दें। हाँ, हम आपको याद दिला दें, जो देश भर में लोकप्रिय फोन कार्यक्रम है हेलो आकाशवाणी, जो आपको बहुत पसंद भी है, वो आज रात्रि 9 बजे प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप सुनना ना भूलिएगा हमारा ये विशेष कार्यक्रम।

0: और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश भी आप तक पहुंचा देते हैं।
1: श्रोताओं, ऑनलाइन योग सत्र का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करने और यूट्यूब लिंक के माध्यम से योग सत्र को ज्वाइन करने के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप से मिस कॉल दीजिए। नंबर है 1800-315-7001। नंबर एक बार फिर से सुनिए, 1800-315-7008। याद रखिए, आपको केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही इस नंबर पर मिस कॉल देनी है। इसके बाद तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से आए व्हाट्सएप संदेश को खोलें और चैट बॉक्स में विवरण भरकर अपना पंजीकरण पूरा करें और इसके बाद 14 जून को प्राप्त लिंक से अपने फोन पर लाइव आएं। दिनांक याद रखिए, 14 जून सवेरे 6:15 से 7:35 तक लाइव यूट्यूब योग सत्र से जुड़ने का सुनहरा अवसर। एक विश्व एक योग एक रिकॉर्ड, करोड़ों लोग एक उद्देश्य।

FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz पर। साथ ही प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप ये प्रसारण सुन रहे हैं। और अब प्रस्तुत चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म आखिर क्यों। इसमें आवाज है मोहम्मद अजीज की, गीत लिखा इंदिवर ने और संगीत से सजाया राजेश रोशन ने।

0: दीवाना।
1: एक दीवाना शहर में,
0: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर। साथ ही प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप हमारा ये प्रसारण सुन पा रहे हैं। इस समय श्रोता आनंद ले रहे हैं कृष्णा के साथ फिल्म संगीत का, चित्रपट संगीत का। और चित्रपट संगीत का ये अगला नगमा हमने लिया है फिल्म आवारगी से। लता मंगेशकर की आवाज है, मोहम्मद अजीज का साथ है, गीत आनंद बख्शी का, संगीत अनु मलिक का।

ये सच है कि मोहब्बत में उदास हो जाता है दिल जब फिराक का सामना होता है, मगर हर उदासी का सबब मोहब्बत नहीं होता, कुछ मसले दुनियादारी के भी हुआ करते हैं साहब। आइए सुनते हैं ये अगला गीत, फिल्म आंखें, लता मंगेशकर की आवाज, गीत साहिर लुधियानवी का और संगीत रवि का।

फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए अगला गीत धर्मात्मा फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज, गीत इंदिवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

और आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल में भी कुछ जादू है जो हमारे श्रोताओं का दिल लुभाता है। और आगे हम आपको ले चलते हैं फिल्म आंधी की ओर, जहां से आप सुन रहे हैं किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में गुलजार का लिखा गीत, जिसे आर डी बर्मन ने अपने संगीत से सजाया है।

श्रोताओं, अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी चित्रपट संगीत में गीत बाकी हैं जो आपको सुनवाने हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz पर, साथ ही साथ न्यू जोन AIR ऐप पर भी। और लीजिए सुनते हैं ये अगला गीत, फिल्म अमर प्रेम से किशोर कुमार की आवाज, गीत आनंद बख्शी का, संगीत RD बर्मन का।

0: भीमराव जानकी इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चम्बल चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या का आज का अंक आप सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों

0: संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायु सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व

0: का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश

0: मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीनो के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 KHz पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: सभी सुनने वालों को राम नारायण मीणा का प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोताओं, आप जुड़ गए हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। जी हाँ, ये वही प्रोग्राम है जिसमें देश भर के श्रोता फोन करते हैं और आप सबकी फोन कॉल्स ने, आप सबके प्यार ने और आप सबकी मोहब्बतों ने इस प्रोग्राम को देश भर में खासा चर्चित और लोकप्रिय बना दिया है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जब आप इस प्रोग्राम को पूरा सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे देश के हर प्रांत से इस प्रोग्राम में श्रोता फोन करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। बहरहाल, आज देखते हैं कि किन श्रोताओं की फोन कॉल्स लग पाती हैं। और आज आपसे बहुत ज्यादा बातें करने का समय नहीं है, क्योंकि आप सबकी फोन कॉल्स शामिल करनी है और आपको जितना हिस्से में आता है उतना गाना भी सुनवाना है। तो सुनते हैं आज के प्रोग्राम की ये पहली कॉल। हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप और कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी, मैं बढ़िया हूँ। ग्राम तनोतिया, जिला गुना
0: जी,
1: मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल।

0: बोल रहा हूँ सर जी।
1: हाँ मांगीलाल जी, ये बताइए कि अब ये जो 90 सालों का सफर है, इसमें आप अपने आप को कैसे देखते हैं एक रेडियो श्रोता के रूप में?
0: जी सर जी, मैं ये 90 साल बिल्कुल ऐसे गुजर गए और रेडियो से हम इस तरह जुड़ते रहे और हमको रेडियो ने सब कुछ सिखाया और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है रेडियो
1: जी।
0: रेडियो तो एक ऐसा माध्यम है सर जी कि हम सबको इतना बढ़िया ज्ञान वर्धक जानकारी देता रहा है और देता रहेगा। सन 1980 से मैं रेडियो सुनता आ रहा हूँ
1: जी।
0: रेडियो तो बहुत अच्छा साथी है इंसान का। मैंने आकाशवाणी भोपाल और इंदौर से बहुत कार्यक्रम सुने हैं, वो मुझको आज भी याद है। एक दर्पण कार्यक्रम परिवार कल्याण पर आधारित एक कार्यक्रम था दर्पण कार्यक्रम, अब भी नहीं है आप जो मान लीजिए।
1: अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमेशा अच्छा लगता है। अब बताइए कि आज के कार्यक्रम में कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: सर जी, फिल्म का नाम है संगम और गाने के बोल है ओ महबूबा मेरे दिल के पास तेरी मंजिल।

0: हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते
1: प्रणाम करता हूँ सर आपको। मैं संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से। जी
0: जी। संतोष कुमार जी, ये बताइए कि अभी हमने आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए हमारे देश में आकाशवाणी प्रसारण के, है ना?
1: सर, जी सर।
0: आप क्या कहना चाहते हैं इस ऐतिहासिक अवसर पर?
1: जी सर, रेडियो की बात की जाए तो सर सबसे पहला हमारे मुख में एक ही चीज आती है, वो है रामचरित मानस के गान।
0: अच्छा।
1: जी, और फिर इसके बाद में आता है चिंतन, जो हमें चिंतन करने भी पर भी मजबूर करता है। और तो साथ में बताएं, आकाशवाणी कोटा से जो हेलो डॉक्टर कार्यक्रम आता है, इसमें हमारे जो रोग होते हैं, खास करके हमारे अंदर होते हैं रोगों का निवारण होता है, उसका समस्या का समाधान भी किया जाता है इस फोन कॉल के माध्यम से। सर, फोन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से स्पष्ट और साफ पहुँचता है हमारे।
0: अच्छा, बहुत सुंदर सुनाई देता है।
1: जी बिल्कुल सर।
0: चलिए, तो हम अपने जो हमारे इंजीनियर साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपकी तरफ से कि हमारा न्यूज ऑन AIR का प्रसारण पूरे देश में श्रोताओं तक बहुत अच्छा पहुंच रहा है।
1: जी सर,
0: तकनीकी जो टीम है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी बिल्कुल सर। यदि यदि तकनीक नहीं होता तो प्रसारण हम तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, खास करके आप जैसे एंकर को, एक वरिष्ठ और सम्मानीय उद्घोषक हैं आप।
0: जी
1: इस प्रकार से

0: शैली होती है, आपकी विचार धारणाएं होती है, वो कार्यक्रम में बिल्कुल चार चांद लगाती है। और इसी प्रकार से हमारे जो इंजीनियर की टीम है पूरी तन्मयता से कार्यक्रमों का निर्माण भी करता है सर।
1: अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा। देखो संतोष जी, आपने बहुत हमारे सभी मित्रों को, वो जो काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं अच्छी तरह से, उनका परिणाम आप तक पहुंच रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ना।
0: जो प्रसारण आते हैं सभी स्पष्ट और साफ हम तक पहुंच पाते हैं।
1: अब बताओ कौन सा गाना सुनेंगे आप?
0: एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, शायद आपको पसंद है और सभी श्रोताओं को भी पसंद आने वाला है। मूवी का नाम है आहूति।
1: अच्छा ठीक है।
0: नौकरी 100 की 1000 की कीमत नहीं होती प्यार की, प्यार अनमोल है ये दो मीठा बोल है, मीठी मीठी बातें यार की।

0: हेलो।
1: हाँ सर जी नमस्कार, मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा हूँ।
0: जी अशोक जी कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मौसम कैसा है?
0: सब अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, सूरज आंधी बारिश पानी सब अपने काम पर लगे हुए हैं।
1: सर हम भी अपने हिसाब से मौसम का मजा ले रहे हैं।
0: अच्छा ये बताइए सर, जब तक आप रेडियो के श्रोता बने आपके जीवन में किस तरह परिवर्तन आया रेडियो प्रसारण से?
1: हमारा रेडियो प्रसारण बहुत कुछ रहा है। जब पहले तो जमाने में चलता था सेल वगैरह से रेडियो बजाते थे, फिर धीरे धीरे सर और भी अब विकास टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो अब तो आज से लेकर मोबाइल से कहीं भी जाकर किसी भी दुनिया में जुड़ सकते हैं।
0: तो कौन कौन मित्र हैं आपके जिनका नाम लेना चाहेंगे आज आप इस कार्यक्रम में?
1: मित्र सर तो आप हो।

0: और नारायण सिंह हैं और के मनोज केवट हैं और
1: अच्छा
0: मनोज यादव हैं
1: अच्छा
0: और राजीव यादव हैं।
1: हाँ
0: जी सभी हैं सर मित्र।
1: अच्छा अच्छा, तो अपने रेडियो श्रोता मित्रों को इस मौसम में क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
0: पर्यावरण को सुरक्षित रखें, अपनी साफ सफाई रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं।
1: हाँ।
0: लगाना ही नहीं है, उसकी देखभाल ही करना है, बड़ा करना है।
1: अरे वाह, बहुत सच्चा संदेश है आपका तो। अच्छा, आपके आयु कितनी हो गई सर अभी?
0: मेरी 63 होने वाली है जुलाई।
1: तो आपने जीवन में कितने पेड़ लगाकर बड़े कर दिए, आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, सभी श्रोताओं को।
0: हमने भी लगाए थे, जब मैं इधर आया था तो मैंने 2005 से लगाए थे, नीम के, आम के और इधर।
1: अच्छा, आम के पेड़, आम के लगाए थे तो उनमें आम आए, कैरी आ गई?
0: आम आए, बहुत फलने लगे, 2009 से फलने लगे।
1: अच्छा
0: जी,
1: कितने पौधे लगाए आपने आम के?
0: 4-5 थे, उसमें 3-4 बचे थे।
1: अच्छा अच्छा, तो बड़े हो गए वो काफी अब?
0: हाँ जी।
1: तो अपने हाथों से लगाए गए पेड़ों के फल तोड़ना और उनको खाना, परिवार वालों को खिलाना, कैसा ये आपको सुख देता है?
0: बहुत अच्छा लगता है। ये तो पहले बचपन में तो बाग बगीचे में जाके, यूपी का रहने वाला हूँ, बहुत बाग बगीचे देखे हैं और गांव का रहने वाला, इसलिए सब कुछ देखा हुआ है।
1: वाह,
0: जब अपने हाथों से लगाया तो और अच्छा लगता था, ऊपर छत से चढ़ के आम मिल जाते थे खाने के।
1: अब बताइए, आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: सुनवा दीजिए जानी दुश्मन का, सारे रिश्ते नाते मैं तोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते
1: घर छोड़ के आ गई।

0: हेलो
1: हेलो सर, नमस्कार
0: नमस्ते नमस्ते।
1: जी। मैं श्रीपाल गोयल, बहादुरगढ़ हरियाणा से। जी
0: हाँ श्रीपाल जी, 90 सालों का सफर हो गया आकाशवाणी का।
1: जी बिल्कुल हो गया जी। काफी खुशी है हमको कि हम काफी जुड़े हुए हैं आकाशवाणी से।
0: तो आप बताइए, आपके अनुभव क्या कहते हैं, कुछ संस्मरण बताइए कि रेडियो ने आपके जीवन में किस तरह का रोल निभाया, आपके सामान्य ज्ञान में और आपके करियर है उसमें क्या रोल मानते हैं आप रेडियो का।
1: सर, रेडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। काफी ज्ञानवर्धक शो आते हैं। जैसे किसान की बात आता है, उसमें
0: जी
1: जो खेती की जो तकनीक होती है नई नई, वो सीखने को मिलती है। और जो डॉक्टर के शो आते हैं, तो डॉक्टर हमें जानकारी देते हैं जो बीमारियां होती हैं हमारी अलग अलग, कैसे बचें, कैसे उनका रोकथाम करें। तो काफी कुछ सीखने को मिला है। और संगीत तो है ही, संगीत तो सभी अंधवाचों आता है, तो हमारा काफी इससे मनोरंजन होता है। तो बहुत महत्व है रेडियो का। तो रेडियो है तो हम
0: मुझे लगता है कि रेडियो का अगर एक एक घंटे का कार्यक्रम भी है तो लोग सुनना शुरू करते हैं तो छोड़ते नहीं है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप।
1: सर, कारण ये है कि इसमें जो काम भी करते रहो, सुनते भी रहो, इसमें जो काम जो हमारा रुकता नहीं है। अब टीवी को देख लो, टीवी को देखने बैठेंगे तो हमारा काम छोड़ के बसना पड़ेगा हमको। हाँ जी, देखिए रेडियो में सर ये है, अपना काम भी करते रहो, सुनते भी रहो, इसमें हमारा काम रुकता नहीं है। सबसे बढ़िया है रेडियो।
0: आप बताइए कौन सा गीत सुनाए आज आपको।
1: सर, फिल्म राम का नीचे है टूट गई आज।

0: हेलो
1: यार, और सत्कार वर नमस्कार जी।
0: हाँ नमस्ते नमस्ते, बहुत स्वागत आपका जी।
1: सोम दत्त बोल रहा हूँ जी, पंजाब जिला पटियाला नाभा से जी।
0: नाभा? हाँ, नाभा नाम सुना, नाभा का।
1: नाभा का बहुत बड़ा इतिहास है जी।
0: अच्छा, तो थोड़ा हमें भी बताइए सर।
1: देखो, जो हमारा नाभा शहर है, ये राजो महाराजों का शहर है जी।
0: जी जी जी,
1: महाराजा हीरा सिंह जी हुए हैं यहाँ नाभा में जी। महाराजा हीरा सिंह जी हुए हैं तो उनकी नगरी है जी। यहाँ पे बहुत ज्यादा आस्था है, खंड पाठ वगैरह होता रहता है यहाँ पे जी। रिहासती शहर है जी ये, इसमें अच्छा। 5 गेट लगते थे पहले जी, रिहासत के टाइम।
0: अरे वाह वाह, क्या बात। वाह,
1: पूरे शहर को कवर कर लेते थे गेट, वो 5 गेट लगते थे। महस गेट हो गया, महस गेट हो गया, बोड़ा गेट हो गया जी, अलौरा गेट हो गया, पटियाला गेट हो गया जी।
0: अच्छा,
1: और दुलद्दी गेट हो गया।
0: वाह वाह वाह वाह, तो ये तो बहुत ऐतिहासिक बात हो गई शहर की भाई, है ना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत अच्छा शहर है, बहुत घूमने लायक शहर है।

0: नाभा
1: बिल्कुल जी, इसको मिनी काशी भी कहते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
1: जितने मंदिर काशी में है उसके बाद ये कहीं पे मंदिर है तो वो नाभा में है शिव जी जी के।
0: क्या बात है। तो अच्छा आपने कहा कि भाई छोटी काशी भी कहते हैं इसको, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ राजस्थान में भी दो जगह ऐसी हैं जिन्हें छोटी काशी कहते हैं, मैं बता देता हूँ आपको।
1: बिल्कुल जी।
0: एक तो बांसवाड़ा, ठीक है,
1: ठीक है जी,
0: नाम सुना होगा आपने बांसवाड़ा,
1: हाँ जी।
0: गुजरात से, गुजरात की सीमा से मिलता है, राजस्थान के दक्षिण में है, और एक है बूंदी, है ना,
1: बूंदी
0: जो कोटा के बिल्कुल नजदीक है, है ना,
1: बिल्कुल जी।
0: तो ये तीसरी जो मिनी काशी आपने बताई ये आपके नाभा हो गया।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: अब हमारे श्रोता बताएंगे कि और कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जिनको भी छोटी काशी कहते हैं, है कि नहीं?
1: हाँ।
0: तो सोमदत्त जी बताइए और क्या क्या रुचियां हैं आपकी।
1: एफएम रेडियो तो हम दिन भर सुनते रहते हैं जितना भी टाइम मिलता है हमको।
0: अच्छा।
1: टेंट कैटरिंग का काम करते हैं उसके साथ साथ रेडियो सुनते रहते हैं जी।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: मेरे हिसाब से मेरे रिकॉर्ड में होगा मैं 25 से 30 चैनलों को फोन लगा चुका हूँ अभी तक।
0: हाँ ना, बहुत अच्छी बात है ये तो। क्या बात,
1: खत भी डालते हैं, ईमेल भी करते हैं जी।
0: तो कौन सा गाना सुनाए बताइए आप।
1: मैं आज सुनेंगे गाना है जो बॉर्डर फिल्म का गाना है जी, घर कब आओगे।
0: हाय हाय हाय हाय,
1: बॉर्डर फिल्म का गीत सुनेंगे।
0: बहुत ही अद्भुत गाना है।
1: और हमारे आपका चैनल सुनने वाले और भी श्रोता बहुत है पंजाब में, रमन वर्मा, अमन वर्मा जी हैं यहाँ पे।
0: अच्छा जी,
1: बुर्ज हनुमानगढ़ में। बहुत प्रोग्राम सुनते हैं वो भी आपके जी।
0: तो चलिए सोमदत्त जी, आप तो बहुत ही दीवाने श्रोता निकले और बहुत जानकारी आपके पास है, तो आपसे बात होती रहेगी हमारी, है ना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
0: जी सुनाते हैं आपकी पसंद पर बॉर्डर फिल्म का ये गीत। बहुत शुक्रिया आपका।

और श्रोताओं, अब पहुंच गए हैं हम इस कार्यक्रम के मध्यांतर में, और मध्यांतर में बहुत सारे श्रोताओं की जिज्ञासा होगी भाई कि ये प्रोग्राम किस तरह है, इस प्रोग्राम में कैसे कॉल कर सकते हैं।

0: तो वही हम आपको बता दें कि प्रोग्राम में गुरुवार को सवेरे 11 बजे से 12 बजे तक हम आपकी फोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं और उसका नंबर है 2941142294112। इससे पहले एसटीडी कोड आपको मिलाना होता है 0744, मगर अभी फोन नहीं करना है, आपको फोन करना है आने वाले गुरुवार को सवेरे 11 बजे से 12 बजे तक। इस सूचना के साथ ही चलिए अगले कॉलर बहुत बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो उनकी बात सुनते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ नमस्ते,
1: आपको बहुत बहुत हमारा नमस्कार।
0: और आपकी आवाज सुन के मतलब मैं बहुत खुश हो गया, बहुत सुंदर आवाज है आपकी भाई।
1: मैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब,
0: हाँ,
1: बाजार रोड मुंगिशापुर, जिला कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश, अनाउंसर और लिसनर जो ऐसे पहलू हैं
0: जी
1: जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है।
0: हाँ ये बात तो है, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अगर हमसे आप है और आपसे हम है।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना?
0: हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा सेतु है हमारा, आवाजों का जो सेतु है
1: जी,
0: ये बहुत पवित्र सेतु होता है,
1: बहुत पवित्र सेतु होता है
0: ना। इसमें न तो हम आपकी शक्ल देखते है न आपके चेहरे की भाव भंगिमाएं देखते, इसमें केवल आवाज के जरिए एक सेतु बनता है जो बहुत निश्चल होता है, बहुत पवित्र होता है ना
1: जी। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके
0: जी। तो आपके जीवन में रेडियो का रोल किस तरह मानते हैं, कि आपके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें पैदा की रेडियो ने जो आपको पूरे जीवन भर उसका लाभ मिला?
1: रेडियो ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है। पहली बात तो मैं
0: जी
1: पढ़ा नहीं हूँ,
0: अच्छा,
1: फिर भी मुझे रेडियो ने पूरा नाम दिया हुआ है।
0: अच्छा,
1: मैं 1995 से रेडियो से जुड़ा हूँ।
0: वाह।
1: और लगभग समस्त जितनी भी आकाशवाणी केंद्र है सभी फरमाइशें लिखता हूँ, और पहले तो लेटर लिखा करता था, अब इस वक्त व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक इससे भाग लेता हूँ, और काफी अच्छा लगता है। आकाशवाणी छत्रपुर में मुझे बुलाया भी गया था।
0: अच्छा,
1: रूबरी मेरी बात भी हुई थी। आकाशवाणी कानपुर में होके आया हूँ, और फोन के माध्यम से रेडियो जर्मनी हमारी बात हो चुकी है।
0: अच्छा अच्छा,
1: और रेडियो सीलोन से बराबर जुड़ा हुआ हूँ जी। और सुनने की बात करें तो 1986 से मैं रेडियो सुन रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: जिस समय अमीन साहनी साहब है रेडियो सिलोन में गीत माला प्रोग्राम, बिना का गीत माला प्रोग्राम होता था
0: जी जी जी,
1: उसको उपयोग करते थे। रेडियो ने बहुत कुछ दिया है हमको
0: जी जी,
1: खुशी होती है। ढेर सारे श्रोता मिले हमको, ढेर सारे अनाउंसर भाई मिले हमको, हाँ, और सबका प्यार मिलता है। और मैं कुछ परिवार के नाम शामिल कर लूँ?
0: हाँ जी बताएं।
1: मेरी बेगम साहिबा कमरुन्निसा, बेटी सविता है, दामाद जी नसीम मंसूरी, और पलट लुबना मेरा बेटा यश मंसूरी।
0: वाह वाह वाह, तो आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज हमको फिल्म ये रात फिरना है कि सुना दीजिए, मेरा प्यार वो है जी, मर कर भी तुमको
0: जुदा अपनी बाहों से
1: होते नहीं देगा।
0: महेंद्र कपूर साहब
1: जी, बहुत ही अच्छा गाना है,
0: बहुत अद्भुत गाना।

0: हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत सर आपका।
1: जी आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं सर। मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ सर। और इधर गर्मी बहुत ज्यादा है।
0: गर्मी तो है लेकिन अपनेपन की नरमी भी है साथ में।
1: बिल्कुल सर, सही बोला आपने, अपनेपन की नरमी है।
0: है क्या? नहीं,
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: अच्छा ये बताइए गर्ग साहब, आप तो मुझे ये बताइए कि अभी 8 जून को हमने आकाशवाणी के 90 सालों का एक जश्न मनाया, तो आप जो ये 90 साल हैं, इनमें से जितने सालों तक आपने रेडियो सुना उसको किस तरह से परिभाषित करना चाहेंगे? आपके जीवन में किस तरह परिवर्तन आया रेडियो के प्रसारण से?
1: मैंने 1955 से रेडियो सुनना शुरू किया था
0: जी,
1: जब से मैंने होश संभाला था। तो तब से ही हम इसके जैसे कहते हैं ना गुलाम हो गए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो हमें रेडियो ने कील लिया था, तो हम तब से आज तक इसका पूरा भरपूर आनंद लेते रहे और गीत सुनते रहे और जानकारियां और ये तो सब मिलता ही मिलता है
0: जी।
1: तो तब तो खबरों का भी साधन सिर्फ रेडियो ही होता था। तो हम कितना इसको प्यार करते थे, कैसे संभाल संभाल के रखते थे इसको, बार बार इसके ऊपर मिट्टी भी नहीं पड़ती थी रेडियो पे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
1: हमें ऐसे लगता था कि अगर इस पे मिट्टी पड़ गई तो ये इसका सम्मान कम हो जाएगा। हमारे मन में इतना सम्मान था रेडियो का।
0: अच्छा, पहले तो सारे रेडियो हमारे बैटरी सेल से ही चलते थे, है ना?
1: हाँ बिल्कुल सर, उस वक्त हमें बैटरी ला के रखनी पड़ती थी साथ में। फिर जब आ गया साइलेंट वाले रेडियो तो हमें लगा कि ये तो बहुत बढ़िया हो गया।
0: सेल आ गए,
1: इतनी बड़ी बैटरी कहाँ रखें, कैसे रखें, अब छुटकारा मिल गया बैटरी से। उसके बाद तो बड़े छोटे छोटे रेडियो आते रहे, जेब में डालने वाले भी आते रहे। और रेडियो पे जब कमेंट्री सुनते थे तो उसको साथ में ले जाते थे कहीं भी, तो एक ही साधन था कमेंट्री सुनने का रेडियो
0: जी।
1: तो बड़े युग देखे हमने। उसके बाद देखो छोटे छोटे एफएम चैनल आए। उसके बाद अब तो जैसे जब ऐप आ गई है
0: जी,
1: तब से तो जैसे कमाल ही हो।
0: पहले तो एक तरफा प्रसारण था, केवल उद्घोषक बोलते थे या प्रस्तुतकर्ता इधर से ही बोलते थे, है ना?
1: और अब हम उनके साथ बातें करते हैं जैसे अब कर रहे हैं।
0: ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रेडियो प्रसारण की,
1: बहुत बड़ी। टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा कमाल है कि हम जैसे कभी सपना भी नहीं लेते थे, कभी कल्पना भी नहीं कर पाते थे, वो उन्होंने सच कर दिखाया। हम उनको सलाम करते हैं। पहले क्या था कि हम पत्र लिखते थे तो एक हफ्ता के बाद उसका जवाब आना, जहाँ ना आना तो एक हफ्ता और इंतजार करना।
0: कई हफ्ते लग जाते थे क्योंकि इतने पत्र होते थे। तो बहुत अच्छे संस्मरण आपने सुनाए। अब बताइए कौन सा गाना सुनाए आज आपको कार्यक्रम में?
1: सर आज मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्यारा सा गीत आया है, बहुत ही प्यारा सा,
0: सुनाइए।
1: किशोर कुमार जी की आवाज है, दूर गगन की छांव में फिल्म का नाम है। थोड़ा सा मैं उसको गुनगुना के बताऊंगा सर।
0: हाँ तो मैं तो इंतजार करता रहता हूँ कि आपका फोन आएगा और आप सुनाएंगे। जी
1: बिल्कुल,
0: बहुत अच्छा गाते हैं आप जी, सुनाएं।
1: चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक है

0: हेलो
1: हेलो सर, नमस्ते। जी
0: नमस्ते नमस्ते। आकाशवाणी कोटा के हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर।
1: सर, बहुत खुशी हो रही है सर, पहली बार फोन लगा सर हमारा।
0: अच्छा। अरे तो फिर नाम बताएं आप अपना।
1: सर दूल्हे सिंह यादव बोल रहा हूँ सर, ग्राम बापचा आगर मालवा से। हाँ,
0: अच्छा आगर से बोल रहे हैं।
1: आगर के पास गांव है सर हमारा, छोटा सा
0: हाँ।
1: बापचा,
0: अच्छा,
1: वहां से बोल रहा हूँ सर।
0: वाह वाह वाह। तो वाकई में आपकी तो आवाज और आपका नाम पहली बार सुना मैंने। हाँ
1: अच्छा सर। हाँ सर, एक बार हेलो डॉक्टर में लगा चुका हूँ मैं फोन सर।
0: अच्छा। मेरे ख्याल से आगर में आकाशवाणी
1: हाँ
0: इंदौर के कार्यक्रम आपके यहाँ काफी स्पष्ट सुनाई देते होंगे।
1: हाँ सुनाई दे सर, इंदौर और ये उज्जैन भी खुल गया आकाशवाणी केंद्र।
0: हाँ, है ना। तो
1: सर
0: अच्छा आकाशवाणी इंदौर से वो अभी वो लोकगीत बजता है क्या, ठंडा लीमड़ा की छाया?
1: बचता है सर, कई कई बार बचता है।
0: अच्छा बजता है।
1: हाँ
0: हाँ वो मैंने बचपन में अपने गांव में वो रेडियो पे मैं सुनता था उसको, बहुत सुंदर गाना है वो।
1: आज भी बचते हैं वो लोकगीत, आते हैं
0: हाँ
1: 9 बजे से लेकर आते हैं सर लोकगीत। और मैं ये जो कोटा का चंबल चैनल भी सुनता हूँ सर, रात को 1 घंटा डेली सुनता हूँ सर।
0: अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
1: सर आप मीणा जी बोल रहे क्या?
0: हाँ हाँ राम नारायण मीणा बोल रहा हूँ।
1: सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा कॉल उठाया आपने सर।
0: तो जितने भी आपके एमपी के जितने भी श्रोता हैं, प्यारे प्यारे श्रोता हैं सभी, आप लोग उनको सबको हमारा राम राम कहना जी।
1: बिल्कुल सर,
0: और मालवा तो हमारे दिल में बसता है कि नहीं?
1: हाँ बसता है सर।
0: हाड़ौती और मालवा दोनों मिलीजुली संस्कृतियां हैं हमारी, है कि नहीं?
1: हाँ सर।
0: हाँ तो बताओ
1: सर,
0: आप।
1: आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती सर।
0: अच्छा,
1: बहुत प्यारी सर।
0: अच्छा, सभी की आवाजें सुंदर होती हैं, सुनने का मन
1: हाँ
0: अच्छा हो
1: सर,
0: ना, हमारा हमारा मन अच्छा होता है तब तो सब आवाजें अच्छी लगती है। तो आप इतने प्यारे प्यारे श्रोताएं फोन करते हैं, फिर 2 दिन तक इंतजार करते हैं, बहुत सम्मान है आप लोगों का हमारी दृष्टि में। बताएं अब आज के कार्यक्रम में कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना ये दिलन आदान फिल्म का है, और चांदनी रात में एक बार
0: एक
1: कुछ
0: बार।
1: तो देखा
0: हाय हाय क्या बात है, बहुत जबरदस्त गाना चुना भाई आप।
1: किशोर कुमार लता जी का गाना है सर।
0: तो सुनते हैं आपकी पसंद प्रिय गाना, बहुत शुक्रिया आपका।

0: हेलो,
1: हाँ हेलो।
0: नमस्ते नमस्ते।
1: हाँ जी नमस्कार सर जी, नमस्कार।
0: हाँ भाई, कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं जी। मैं जलंधर सिटी पंजाब से सोनू बात कर रहा हूँ जी।
0: सोनू जी।
1: बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मेरी कॉल को आज रिसीव किया वहां पर।
0: अरे क्या बताऊं आपको, मैं भी आपकी हंसी सुनने के लिए कितने दिनों से तरस रहा
1: मैं भी बताऊं, जब से मुझे
0: था।
1: मालूम चला कि गुरुवार को रिकॉर्डिंग होने लगी, तब
0: हाँ
1: से मैं मतलब कि हर हफ्ते में ट्राई करता रहा, तो फोन लगता ही नहीं। आज बड़ी मुश्किल से लगा।
0: तो लग गया आज तो, मतलब सारे कॉल्स के बीच में से रास्ता बना के आपका कॉल आ गया इधर, है ना?
1: जी सर, जी सर, जी जी जी
0: तो कैसा महसूस कर रहे हैं?
1: बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आपसे बात हो रही है। आप इतने अच्छे सुरीली आवाज के मालिक हैं आप,
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: आपकी आवाज जब हम रेडियो में सुनते हैं तो अच्छा लगता है ना, मन मुग्ध हो जाता
0: अच्छा,
1: है। क्योंकि
0: अरे वाह।
1: कि आकाशवाणी मेरा मनोरंजन का साधन ही नहीं, वो ज्ञान वर्धक ये रेडियो है, जो मुझे हर एक चीज की नॉलेज मिलती है रेडियो के जरिए। जी सर, तो
0: अच्छा, जब ये
1: मैं
0: प्रोग्राम आप सुनते रहते हैं तो सारे काम दाम छोड़ देते होंगे आप फिर घर पे थोड़ा?
1: नहीं जी, नहीं, काम काम मेरा चलता ही रहता
0: अच्छा
1: है और
0: अच्छा
1: रेडियो भी चलता रहता है। और मैं तो आपको ऐप के जरिए सुनता हूँ,
0: हाँ,
1: क्योंकि आपका
0: ऐप के
1: सिग्नल यहाँ तक आता नहीं पंजाब
0: बिल्कुल
1: तक।
0: बिल्कुल, ज्यादातर आप लोग सब ऐप पर ही सुनते हैं हमारे
1: जी
0: प्रोग्राम।
1: जी ऐप पर ही सुनते हैं
0: तो अच्छा, ये बताइए कि जो अभी हमने 90 साल पूरे कर लिए, तो रेडियो श्रोता सब अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं 90 सालों पर, तो आप इस अवसर पर अपने मन की बात क्या कहना चाहते हो?
1: मैं तो ये कहूंगा कि आकाशवाणी जो है ना, बेशक 90 साल पूरे हो गए हैं, यानी कि मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो मैं रेडियो को सुन रहा हूँ। पहले
0: वाह।
1: मेरे जो दादाजी थे, हमारे ग्रैंड फादर, वो बहुत सुना करते थे। उसके बाद फिर मेरे डैडी यानी कि मेरे पापा वो सुना करते थे। अब तीसरे नंबर में मेरा नंबर आता है, उसके बाद मेरे बच्चों का नंबर आता है। तो
0: वाह।
1: आकाशवाणी जो ना हमारे जीवन जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो आकाशवाणी को तो जब तक शरीर में जान है तब तक आकाशवाणी से आज जुड़े ही रहेंगे।
0: तो
1: और मैं
0: जब हम इसकी सेंचुरी मनाएंगे, शतक
1: जी
0: मनाएंगे, जब आपके बच्चे श्रोता बन जाएंगे अच्छे, जहां तक मुझे पता है ना?
1: जी जी जी जी जी
0: है ना? तो जब वो बात करेंगे फिर हमसे, हमारे प्रस्तुतकर्ताओं से, है ना?
1: जी, सही बात है सर।
0: बताओ कौन सा गाना सुनेंगे आज के प्रोग्राम में?
1: मैंने सर ये है ना अनिरुद्ध मूवी का गाना,
0: हाँ।
1: आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से, ये वाला गाना मैंने सुना
0: वाह,
1: किशोर दाजी की आवाज में।
0: बहुत ही प्यारा गाना है, क्या बात है, मजा आ गया।

0: हेलो
1: जी सर, मैं आकाशवाणी एकता रेडियो बजाज से आपका अपना रेडियो साथी गुजरात भावनगर से अफजल वार्तालाप दोस्ताना बात कर रहा हूँ।
0: तो भावनगर से अफजल जी का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी कोटा बूंदी के इस प्रोग्राम में।
1: शुक्रिया, धन्यवाद।
0: तो बताइए, आप आज इस कार्यक्रम में क्या कहना चाहते हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल सर,
0: जी?
1: मैं तकरीबन बचपन से रेडियो सुनता आ रहा हूँ, मगर पक्का खास तौर पर 2009 से हूँ और उनसे भी पक्का श्रोता 2021 से हूँ। मगर मेरी खास तो मेरे में बदलाव आया है तो वाणी में आया है, दूसरा व्यवहार में आया है।
0: वाह।
1: अभी 1 महीने पहले ही मेरे परिवार से झगड़ा हो गया था और कह सकते हैं कि 12 लोगों से मेरी अनबन हो गई थी।
0: अच्छा।
1: तो मैंने एक दिन में ही सुझाव ला दिया था कि भाई ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। बाकी गलती सामने वाले की ही थी तो भी मैंने अपनी गलती मान ली, क्योंकि रिश्ता बढ़ाना है। अगर मैं उन लोगों से रिश्ता तोड़ूंगा तो साथ में जो मेरा परिवार है, हम जो 5 लोग हैं, उनका भी रिश्ता खराब होगा। तो खास रेडियो के माध्यम से मेरी भाषा में बदलाव आया है और खास तौर पर किस तरह से परिवार रहना चाहिए, दोस्तों के साथ रहना चाहिए, ये खास रेडियो के माध्यम से जानने को मिला है। तो मेरा ये मानना है कि परिवार के साथ जुड़े रहिए। तो ये मानना है कि रेडियो
0: तो
1: के
0: मतलब
1: माध्यम
0: ये जो
1: से
0: आपके अंदर जो इस तरह की जो दार्शनिक भावना आई है, ये आकाशवाणी सुनने से आपके मन में आई, कहना ये चाहते हैं आप,
1: जी बिल्कुल।
0: है ना?
1: और दूसरी बात, मेरे में ईमानदारी आई है।
0: अच्छा,
1: आज
0: वाह।
1: कोई भी व्यक्ति मेरे घर के मेंबर को कहे कि अफजल भाई मेरे से झूठ बोले तो मेरे घर का व्यक्ति कोई नहीं मानेगा, वो सब यही कहेंगे कि अफजल भाई सच ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं।
0: अच्छा।
1: और हमारे गुजरात के जो श्रोता है ना, वो आकाशवाणी कोटा को बहुत चाहते हैं।
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: जितना गुजरात जैसे मैं

0: ही बात करूं कि मैंने तकरीबन 6 महीने से गुजरात का कोई रेडियो स्टेशन ऑन नहीं किया, सिर्फ सूरत FM किया है। ताकि बहुत से सारे रेडियो स्टेशन है, तो आकाशवाणी कोटा है वो गुजरात के श्रोताओं की पहली पसंद है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे हम हेलो डॉक्टर के लिए अलार्म रखते हैं, बरोबर है, वैसे फोन इन प्रोग्राम के लिए भी आप हफ्ते में 3 बार रखो तो क्या है कि हम अलार्म रखे, चाहे महीने में 1 कॉल हमारा शामिल करो, मगर हफ्ते में 3 बार तो हम सुने। वैसे बहुत से सारे राज्य के श्रोता है, उसकी पसंद खास तौर पर आकाशवाणी कोटा है।
1: जी जी जी, तो अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप रेडियो कोटा के प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं अफजल भाई, और आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से ही हम कुछ बोल पाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। अब गाना बताएं, कौन सा गाना सुनेंगे प्रोग्राम में?
0: फिल्म का नाम है दोस्ताना, और गाने के बोल रहे बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।

और वही श्रोताओं, अब तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं बचा हमारे पास में, लेकिन आपको इतना जरूर बताएंगे कि जो भी श्रोता इस कार्यक्रम में हमें कॉल करना चाहते हैं और गाना सुनना चाहते हैं, उनके लिए नंबर है 2941142 और आपको हमें फोन करना है

आने वाले गुरुवार के दिन सवेरे 11 बजे से 12 बजे के बीच। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 2941142 एसटीडी कोड 0744। और एक जरूरी बात, जिन श्रोताओं की फोन कॉल्स आज के प्रोग्राम में शामिल हो गई हैं, वे कृपया अब हमें 2 महीने के बाद भी कॉल करें। इस कार्यक्रम में निर्देशन तेजराम मीणा का। तो भाई अब इन जानकारियों के साथ ही अपने रेडियो साथी रामनारायण मीणा को आज के हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे देशभर में लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई सेवा के कार्यक्रम।

आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। तुम्हारी आंखों में कुछ तो बात है जो दिल के अंदर चली जाती है। तुम्हें देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। अच्छा जी, और तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं हर सांस में महसूस करती हूँ। हर सुबह तुमसे बातें करना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना दिन अधूरा सा लगता है। तुम्हारे साथ गुजरा हर पल एक नई कहानी लिखता है। तुम मेरी जिंदगी का वो गीत हो जो कभी खत्म नहीं होता।

जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर हो। तेरे प्यार ने मेरी जिंदगी को मायने दिए। तुम्हारे बिना हर खुशी अधूरी है। तेरी आंखों में डूब कर मैंने जिंदगी का मतलब जाना। तेरे बगैर कोई मौसम नहीं, कोई रंग नहीं। मेरे हर लफ्ज में तेरा असर है। मेरी जिंदगी की मुस्कुराहट हो तुम। तेरा नाम लेते ही दिल मुस्कुराता है। ये प्यार नहीं तो क्या है? तेरे बिना जिंदगी कुछ यूं अधूरी लगती है जैसे सुर बिना सरगम। मेरी रूह का सुकून है तू। मुझे अपनी सांसों में महसूस कर लेना। मैं तेरा ख्वाब नहीं, हकीकत हूं। सुनो, दिल की बात कही तुझसे और लगा कि दुनिया मिल गई।

तुमसे मिली तो जिंदगी मुझे अच्छी लगी, वरना तो हर सुबह हर शाम अधूरी थी। ये प्यार भी अजीब सा नशा है, हर लम्हा तेरा हो जाता है जब तू मेरी आंखों में आ जाता है। मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं होती, ये रूह की जरूरत होती है। सच, तेरे नाम से शुरू होती है मेरी सुबह और तेरे ख्याल में रात ढलती है। उसके अलावा मैं क्या मांगू उस खुदा से, उसके अलावा मैं क्या मांगू उस खुदा से, और किसी चीज का तलबगार वो भी

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। इतनी दिलकशी थी कहां जिंदगी में, हमने जब तक आपको चाहा न था। जी चाहता है तू साथ चले तो आहट भी ना आए अपनी, दरमियां हम भी ना हो, यूं तुझे तन्हा चाहें। सुनो ना, खिड़कियां जागती आंखों की खुली रहें, मेरे दिल में महताब उतरता है इसी जीने से। अगर होता है इत्तेफाक तो यूं क्यों नहीं होता।

पता है अपने दिल को कैसे हमने शाद किया? दिन में तुम्हारे ख्वाब सजाए, शब भर तुमको याद किया। किताबें जिंदगी का हर पन्ना महकता है, कुछ में आपकी आरजू है, कुछ में आपका ख्याल है। देखने के लिए तो सारा आलम भी कम है, चाहने के लिए एक चेहरा ही बहुत। किसी पाबंदे मोहब्बत से पूछना, वही बतलाएगा एक दीवाने का जंजीर से रिश्ता क्या है।

जुल्फें भीगा आंचल, आंखों में नींद हो चांदनी रात हो, सर्द हवाएं हाथों में हाथ हो, महके हुए दिन रात हो, तुम मेरे साथ हो। प्यार की दस्तक दिल पे सुनाई दे, चांद सी सूरत ख्वाब में दिखाई दे, मेरी पलकों पे तितलियों के पर रखते कोई, अपनी आहट भी देर तक सुनाई दे। काश के तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छुआए, अपनी हर सांस से मुझको तेरी खुशबू आए। घंटियां बजने लगे हिजर के सन्नाटे से, गुनगुनाता हुआ ऐसे में अगर तू आए। आकर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, आकर मेरे ख्यालों में बाकी जहां बेख्याल कर जाते हो, हमें भी सिखा दो हुनर कैसे ये कमाल कर जाते हो।

0: साथियों, आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: यह है

हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार होंगे। श्रोताओं, उसके बाद आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोहराट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा

0: और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 बजे से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his 2-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico in Bratislava. After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the eastern part of the country in Auvergne on the 16th and 17th of this month. The White House today said US President Donald Trump will meet Prime Minister Modi on Wednesday during the G7 summit. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. The 5-day BRICS Agriculture Conference concluded at Indore in Madhya Pradesh today. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration outlines key decisions on food security, farmers' welfare, climate-friendly farming, agricultural trade and use of smart technology in farming. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said that BRICS nations represent nearly half the world's population and contribute around 42% of global agricultural output. He said, Indore Declaration is not just a document of agreement but a symbol of the collective will and shared responsibility of BRICS nations. Union Home Minister Amit Shah today directed the High-Level Committee on Demographic Change to study the shift in population structure in border districts. Chairing the meeting of the committee, Mr. Shah also asked the panel to visit border areas, metro cities and industrial towns for an assessment of changes because of illegal migration and other unnatural causes. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning during a routine sortie, claiming the lives of 5 air warriors. The Indian Air Force IAF has expressed grief at the loss of the lives. The IAF said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. Defence Minister Rajnath Singh has also expressed grief at the loss of 5 air warriors. The government

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
1: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कंप्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव गांव तक पहुंचती है और सिर्फ बात नहीं क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं। जी हाँ, हर घर जल और नल ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
2: नमस्कार।
1: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
2: देखो, 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आश है जो अपेक्षा है वो पूरी करना और बार बार जीतना और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी वो सब लड़ते थे इलेक्शन, उस टाइम कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है, उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने। लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए, एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं कि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है।
1: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कम्प्लीट कर लिया?
2: देखिए, हमारा कहते ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा

0: देंगे, सरकार बना लेंगे। मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है। और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज़ के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
1: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
0: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा समझते थे। आज एक आम आदमी में से एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है, अपने बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है। आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
1: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुँचाया है?
0: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है। वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
1: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना, मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांव में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में, और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
0: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी ही रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह से टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया, हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और वो भी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने के बाद थी। 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुँचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुँचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हो, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम मोदी साहब ने किया है।
1: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया था, आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल

0: संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है? मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
1: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्म भूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था। हमने अचीव किया, 27,50,000 पर हम पहुँच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं मगर वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको डिसिल्टिंग करना था। उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है। और सिर्फ सोच नहीं, उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखें, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए। मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां तालाब सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया। वो पहला रिवर लिंकिंग था। केन बेतवा दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में। 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने पीकेसी की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1,00,000 करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहाँ तक पहुँचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम, इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहाँ की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
0: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं। आपको लगता है यही वो वजह है?
1: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको वो बैठ जाते थे और फिर उसके पास बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं रहा। वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की, आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया। और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में वहाँ जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में

0: 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी एक मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है। और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुँच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए। सबमरीन भी नई नई बनाई और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे। आज वो बात नहीं रही, ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती है, वो पूरी वो देखते भी है।
1: गुजरात का कई सारे वहाँ के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से और दूसरा हर बात की बारीकी में डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहाँ पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता। और वो जो सुनते सबकी है पर करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम ला के देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी। तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवाडांग में उनका कार्यक्रम था और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसा लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा, मैंने कहा सॉरी सर। उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला, मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके और मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ये सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना, जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए। उनसे सीखे हैं, यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं। तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखी है, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जांपल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने 2 शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
0: नहीं नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूंगा, 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहाँ के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी आईएएस अधिकारी और सभी एमपी सबको स्पाउस के साथ बुलाया था हम, और वहाँ उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ।

0: काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है। कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा, यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा, मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया। मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
1: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
0: वो एक चीज नहीं है, मैंने कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, दुमनों से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को। और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे, पर घर में नहीं बताते थे, आंसू लेके नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने अपने बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन दे देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों का हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कोई पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि यह आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए, तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, 2 देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे, हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है, पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊंगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में, डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है, तो सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है। और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं उनके पास, उनको खानदानी ये सीट उनकी है, ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है, और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड PM ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: नहीं, मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया CR पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए

0: बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे हैं, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबीक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने दो बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी। सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबीक्विक के फाउंडर और CEO विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें, तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
3: पहले तो शिशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। और मोबीक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2014 में ही मोबीक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी और उसके बाद मोबीक्विक ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर्स से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबीक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और UPI से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से 1 भारतीय या 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबीक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो UPI का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबीक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
2: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें, वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं 3 प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसी कौन सी 3 बड़ी नीतियां थी जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
3: तो इनमें काफी नीतियां थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करे। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंडर

0: एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल डीपीआई कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता, तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता, और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
1: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की, हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात किया, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते, बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने।
0: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए, जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना, वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं खुल
1: सकता,
0: तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहां पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था, और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खोले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से, और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया, इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से?
0: देखिए, डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है,

0: और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है, वरना हमारे देश में जहाँ पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी, और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने DBT बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरे डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
1: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की, आपका आभार, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण

0: एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
1: विपिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की, आपका आभार, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन ए आई आर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन ए आई आर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:45 और 11 सेकंड हो रहे हैं। अब हमारी आज की यह अंतिम सभा यहीं पर समाप्त होती है। कल प्रातः 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।